मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। आज वीरवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 11 जून 2026। समय प्रातः के 5:58 और 40 सेकंड हुए हैं। अब प्रारंभ होते हैं हमारे आज के प्रसारण।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर और FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रातः के 6 बजने को हैं, अब हिंदी समाचार प्रसारित होंगे। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के ठीक बाद FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रमों का रिले।
1: आकाशवाणी समाचार

0: साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने पर उन्हें बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोफिया में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुलतारांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि के साथ वर्षा हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है चिंतन। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी आप सुन रहे थे चिंतन। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जब हम भक्ति पथ पर चलते हैं तो वो भक्ति हमारे मन के सभी रोगों को नष्ट कर देती है, हमारे सभी विकार मिटा देती है और हम अपने प्रभु के समीप पहुंच जाते हैं। वही है जो इस आपत्ति रूपी समुद्र से हमारा उद्धार कर सकते हैं, उद्धार कर पाते हैं।

जब हमें प्रभु नाम की लगन लग जाती है, उन पर पूर्ण विश्वास होता है, तब हर पल हमारा मन बस यही कहता है कि मेरी आस्था भी तू, मेरा विश्वास भी तू, मेरी हर उलझन का रास्ता भी तू।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग।

चित्रकूट के पशु पक्षियों, पेड़ पौधों तथा चर अचर प्राणियों के भाग्य से देवताओं को ईर्ष्या तो होती है, किंतु वे उनका जय जयकार करते हैं, उन्हें धन्य मानते हैं। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां श्री राम और सीता जी लक्ष्मण के साथ आकर रहे, उस स्थल की शोभा का बखान तो हजार मुंह वाले भी नहीं कर सकते। फिर भला कवि की वाणी की क्या बिसात। चित्रकूट प्रवास में श्री राम का स्नेह पाकर लक्ष्मण को अन्य आत्मियों की स्वप्न में भी याद नहीं आती। सीता जी भी घर द्वार भूलकर बहुत सुखी हैं, मानो राम रूपी चंद्रमा को देख देख कर चकोरी का प्रेम दिन दूना बढ़ता जा रहा है। पर्कुटी प्रिय लगती है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान से आज का प्रसंग, प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाइयों, राम राम। कृषि की बातों में जिक्र करेंगे गन्ना फसल की देखभाल। किसान भाइयों, गन्ना फसल में एक तो सिंचाई लगातार अपनी करते रहें और जो खरपतवार है वो निकालते रहेंगे। और एक बात और है, जो नाइट्रोजन की तीसरी किस्त रह रही है, जो आखिरी किस्त रह रही है, वह भी इस महीने आकर तक हमने दे देनी है, नहीं तो आगे ऐसा होगा वह बरसात शुरू हो जाएगी। बरसात शुरू हो जाएगी तो खरपतवार हो जाए ज़्यादा, और फिर जो नाइट्रोजन की हम मात्रा देंगे खाद की, वो सारी की सारी खरपतवार ले जाएंगे और हमारी मुख्य फसल का नहीं लागेंगे। और इसका देने का तरीका जिस तरह आपने ये सहा कि वह या तो नाचिंदराई गुडाई करके न फिर पानी लगा कर न जब बत्तर आ जाए जब दे दें अपने, या फिर पहले अच्छी निराई गुडाई करके न और फिर खाद लगा दें और उसके बाद पानी लगा दें, वो आपके अनुसार है भाई। और इसमें 45 किलो जो यूरिया है वो लगेगा, और जब मोटी फसल है तो उसमें हमने 60 किलो यूरिया लेना है इसके लिए। हाँ, इसमें एक बात का और ध्यान रखना भाई हमने कि जो कांगियारी का प्रकोप है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसके लिए तरीका हमने ये अपनाना है कि वह जो जिन पौधे कांगियारी का असर है उनके ऊपर या तो को पॉलीथीन लेकर ने या को बोरी बारी लेकर ऊपर रख कर ने और फिर उसने पौधे ने काट लें और फिर एक नौ ले जाकर या तो उन्हें जला दें या नीचा ज़मीन में दबा दें अच्छी तरह। और उसके बाद जो रोगी पौधे हैं उनको भी अपने जड़ से निकालना है और दूर ले जाकर उन्हें नष्ट कर देना है, बात ये। और वैसे तो इसने जो कांगियार युक्त जो दुम है हमने उनको जो बोरी में भरे हैं उसने उबलते हुए पानी में रखकर कांगियारी के जो बीजाणुओं को नष्ट कर दिया जा सके। और यूँ है ना कार्यक्रम जो कांगियारी को ख़त्म करने का है, हमने एक अभियान के तौर पर लेना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई एक भाई ने कराया और वो उसको निकाल दिया और उसको ख़त्म कर दिया, ये नहीं होगा। हमने पूरे इलाके में एक अभियान के तौर पर लेना कांगियारी को, जो भी ख़त्म कराया जा सके। हाँ, मोटी फसल में कंसुआ प्रकोप हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, इसकी रोकथाम के लिए 2.5 लीटर क्लोरोपायरीफॉस 20% ताकत की दवाई है, और जो हमें फसल में सिंचाई कराना उसका साथ हमने ये देनी है। काली कीड़ी का भी आक्रमण बहुत ज़्यादा हो गया है और काफ़ी नुकसान कर दिया, इसकी रोकथाम के लिए हमने 400 मिलीलीटर क्लोरोपायरीफॉस 20% ताकत की दवाई है ये लेनी है भाई, और 400 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। हाँ, एक यू अड़ या चेपा है, इसके बीज मारे मारने प्रकोप हो जाए ईख में, तो उसके लिए जो परजीवी हैं वो ले आने चाहिए हमने, उसकी रोकथाम हो जाए बहुत बढ़िया तरीके से करनी। और जब परजीवी ना मिले तो फिर उस अवस्था में हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियन दवाई है 50% ताकत की, और ये 400 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। और एक बात तो ये रखें कि अगर जब मान लिया आपने परजीवी मिल जाए तो सबसे बढ़िया है, अगर जब नहीं मिले तो फिर उसके लिए हमने मेलाथियन दवाई है इसका प्रयोग करना है उसमें। हाँ, एक ये माइट या स्पदी है, इसका भी ज़्यादा प्रकोप हो जाए, इसकी रोकथाम के लिए 600 मिलीलीटर हमने रोगोर देनी है 30% ताकत की दवाई है, 250 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर छिड़काव कर देना है। और कुछ इलाके में हमने ये देखा वह जो चोटी बेद या टॉप बोरर है ये भी काफ़ी नुकसान कर दे है, इसके लिए जून का आखिरी सप्ताह में हमने 13 किलोग्राम कार्बोफ्यूरान है 3G के नाम तक जानी जाए है या कीटनाशक दवाई है, और यह 1 एकड़ के हिसाब से हमने यह छिड़काव करना है और उसके तुरंत बाद हमने सिंचाई कर देनी है। और उन खेतों में जरूर डालें जिनमें अप्रैल मई में 5% से अधिक कीटग्रस्त यू पौधे हो रहे हों, तो उसमें ज़रूर डाल देंगे। तो इस तरह हमने भाइयों ये देखना कि भाई अपना एक तो पानी समय पर लगाऊँ, एक अच्छी निराई गुडाई करके, क्योंकि इसका जून का महीना में हमने उसके जो खरपतवार वो सारे निकाल देने, फिर तो बरसात शुरू हो जाए, बरसात आने के बाद में खरपतवार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और जो खाद अगर हमने नहीं दिया तो सारा खाद उनका लग जाएगा। तो इन मोटी मोटी बातें भाइयों हम ध्यान रखेंगे, गन्ना फसल की देखभाल करके अच्छी पैदावार ले लेंगे।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। हमारा अगला कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदेहल्याः राष्ट्रपति भवनस्य सांस्कृतिक केन्द्रे नीति आयोगस्य एकादशे शासी परिषदोपवेशने अध्यक्षतां विधास्यति। विकसित भारताय प्रधानमन्त्रिणः टीम इंडिया इति संकल्पानुगुणम् अस्य वर्षस्य मुख्य विषयो विकसित भारतम् @2047 इत्यस्य कृते समावेशी मानव विकासः इन्क्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047 इति अस्ति। विषयोयम् आयु क्षेत्र लिंग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमिकायाः भेदं विनैव प्रत्येकं भारतीयस्य कल्याणाय विकासाय च केन्द्रीकृतो वर्तते। उपवेशने अस्मिन् अस्य लक्ष्यस्य प्राप्तये दृष्टिं समेत्य देशस्य प्रत्येकं नागरिकं प्रति अस्य सुदृढ मापनयोग्य परिणामेषु परिवर्तनस्य विषये गभीरं मन्थनं भविष्यति। अस्मिन् महत्वपूर्णे उपवेशने समावेशी मानव विकास प्रारूपस्य विषये चर्चां कर्तुं सर्वे मुख्यमन्त्रिणः केन्द्रशासित प्रदेशानाम् उपराज्यपालाः च एकत्रिताः भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् यत् देशस्य 44,00,000 नागरिकाणाम् आकांक्षाः निश्चप्रचं पूरयिष्यन्ते। तेन समुदीरितं यत् राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधन दलं सदैव राष्ट्रस्य विश्वासं सुदृढं कृतवत् अस्ति। अत्रावधेयं यत् श्रीमोदी गतरात्रौ नवदेहल्याः भारत मण्डपे आयोजितं एनडीए सम्मेलनं संबोधितवान्। प्रधानमन्त्रिणा भणितं यत् देशस्य प्रत्येकमपि नागरिकः विकसित भारतस्य स्वप्नेन पूरितो वर्तते। एषः स्वप्नः इदानीं कस्यापि एकस्य व्यक्तिविशेषस्य प्रशासनस्य वा राजनीतिकदलस्य परिधौ सीमितो नैवास्ति।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: अस्मिन् अवसरे एनडीए घटक दलैः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः ऐतिहासिक उपलब्धेः श्लाघनाय एकः संकल्प प्रस्तावः स्वीकृतः। एतदन्तरं सम्पूर्ण विश्वतः प्रधानमन्त्रिणे अभिनन्दन सन्देशाः आगच्छन्तः सन्ति। अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्पः, यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन, इटली देशस्य प्रधानमन्त्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी देशस्य चांसलर फेडरिक मर्ज, इजराइल देशस्य प्रधानमन्त्री बेंजामिन नेतन्याहू, कनाडा देशस्य प्रधानमन्त्री मार्क कॉर्नी सहैव दक्षिण कोरिया देशस्य राष्ट्रपतिः ली जे म्यूंग इत्यादयः प्रमुख वैश्विक नेतारः श्रीमोदिनं प्रति वर्धापनं प्रेषितवन्तः। संस्कृति मन्त्रालयेन गतवर्षस्य कृते संगीत नाटक अकादमी पुरस्काराः अथ च उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्काराः घोषिताः। अकादमी संघस्य सामान्य परिषदा संगीत नृत्य रंगमंच पारंपरिक लोक जनजातीय कला वैविध्येभ्यः कलामंचं यावत् विविध क्षेत्रेभ्यः 88 प्रसिद्धाः कलाकाराः 24,000 अथ च 25,000 अकादमी पुरस्कारार्थं चिताः। एते चिताः पुरस्कार विजेतारः अशेषस्य हि देशस्य प्रतिनिधित्वं कुर्वन्ति। ये विभिन्न राज्येभ्यः केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः च सम्बद्धाः सन्ति। बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां सिडनी नगरे प्रचल्यमानायाः ऑस्ट्रेलियन ओपन स्पर्धायाः महिलानां वर्गे पीवी सिंधु तन्वी शर्मा च सफलताम् अवाप्य द्वितीय चक्रं प्रति प्रविष्टवत्यौ। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने देश के भरोसे को सदैव मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है और अब देश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई भी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
2: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस दौरान डॉ. जयशंकर ने भारत और बुल्गारिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों तथा बदलती वैश्विक परिस्थितियों में आपसी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। डॉ. जयशंकर आज फिनलैंड जाएंगे। इस दौरान वे कुल्ता रांता वार्ता के 14वें संस्करण में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

रात 10 बजे सुनेगा शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। 9:30 बजे रात को कार्यक्रम कंट्री वाइड और 9:45 बजे कार्यक्रम इनसाइट प्रसारित किया जाएगा। 7:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला साइंस एंड टेक। वार्ताकार होंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। ये सभी कार्यक्रम हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

अब से थोड़ी देर बाद सुबह 7:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आपको सुनवाएंगे दीपेंद्र देसवाल के साथ हमारी खेल परंपरा विषय पर एक भेंट वार्ता।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर किसान भाई सुनेंगे डॉक्टर दिलबाग अहलावत से थनैला रोग कारण उपचार व बचाव विषय पर बातचीत।

0: सुगम संगीत, ये कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 8:25 पर। सुबह 8:30 पर कार्यक्रम लोक संगीत में गायक कलाकार होंगे सूरज भान सांगी और साथी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे हमारी पहली प्रसारण सभा में सुबह 9:00 फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक में। दोपहर 1:10 पर हमारी दूसरी प्रसारण सभा में कार्यक्रम चित्रपट संगीत के तहत। शाम 7:30 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत में और रात 9:15 कार्यक्रम एक फिल्म से अंतर्गत हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आप सुनेंगे दीपेंद्र देसवाल से हमारी खेल परंपरा विषय पर एक भेंट वार्ता।
1: श्रोताओं, हमारी खेल परंपरा आज इस विषय पर बात करेंगे और विषय को विस्तार देने के लिए आज स्टूडियो में आए हैं दीपेंद्र देसवाल जी। आप वरिष्ठ संवाददाता हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और आपने कई जगह पर काम किया है। इसके साथ साथ में आप द ट्रिब्यून से जुड़े हुए हैं स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट के तौर पे, और अन्य कई विषय जिस प्रकार से हम खेल की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, या फिर पर्यावरण की बात करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, उन पर आपने काफी सारे लेख लिखे हैं, काफी कुछ काम किया है, और खेल से तो आपका बहुत नजदीकी नाता है। वरिष्ठ खेल पत्रकार रहे हैं आप, तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
2: धन्यवाद जी।
1: जी, तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी खेल परंपरा, जैसा कि हमारा आज का विषय भी है, तो हरियाणा प्रदेश में जब खेल परंपरा की बात करते हैं, आप कहाँ तक देख पाते हैं पीछे इसको?
2: जी, एक तो आकाशवाणी रोहतक ने बड़ा अच्छा टॉपिक ये सुना है, उसके लिए बड़ा धन्यवाद। और मैं इस बात पे हम ये कहना चाहेंगे कि हरियाणा जो है एक रूरल बैकग्राउंड है, हरियाणा का बहुत बड़ा रूरल बैकग्राउंड है, ग्रामीण परिवेश ही हरियाणा मुख्य हरियाणा है, और गांव में खेलों की परंपरा बहुत पुरानी है। हम क्योंकि पहले बहुत बड़े बड़े गांव थे, बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं होती थी, गांव में जो एंटरटेनमेंट के साधन थे वो खेल मुख्य रूप से लोग सुनते थे, जिसमें पुराने समय में कुश्ती, कबड्डी, भागदौड़, इस तरह ये खेल जो है वो उनके लिए बड़े आसान भी थे और सभी लोग इसमें भाग भी लेते थे, बगैर कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेज उसके लिए जनरेट करने की जरूरत नहीं होती थी।
1: जी, आप सही कह रहे हैं। जिस प्रकार आजकल बात कर रहे हैं, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये ऐसे खेल है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, आधारभूत ढांचे की जरूरत होती है, और कुछ ऐसे रिसोर्स की जरूरत होती है जिनके बगैर ये खेल खेला नहीं जा सकता। अगर फुटबॉल नहीं होगी तो फुटबॉल नहीं खेल सकते हम। तो लेकिन कबड्डी की बात करें और कुश्ती की बात करें, यहाँ पे विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, अगर परंपरागत तरीके से देखें तो।
2: जी, बिल्कुल, इसीलिए हम इनको परंपरागत खेल ये हमारे लोगों ने बड़ी जल्दी अडॉप्ट कर लिए थे, क्योंकि हमारा खान पान बहुत अच्छा था, क्योंकि दूध दही का खाना हरियाणा में कहते थे, तो वो खाना जो है हमें प्रेरित करता था ज्यादा काम करने के लिए, ज्यादा शारीरिक श्रम करने के लिए। तो शारीरिक श्रम तो होता ही था, उसके साथ हम खेल भी करते थे, तो कुश्ती हमारे यहाँ पे पूरे हरियाणा के ग्रामीण प्रवेश में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही है, और उसके साथ साथ कबड्डी, खासकर कबड्डी में सर्कल कबड्डी हरियाणा में एक समय पे बहुत ज्यादा जानी जाती थी और खेली जाती थी। और इसके साथ साथ हमें जो विशेष रूप से उस टाइम आयोजन होते थे, कुछ ओकेजन्स के ऊपर, अलग अलग गांव में 14-15 गांव का एक क्लस्टर हो गया, उसके ऊपर मेले लगते थे, और उन मेलों पे विशेषकर खेलों के आयोजन मेले के साथ साथ होते थे, और वहां पे

0: दूसरा खेल जिसका देशवाल जी आपकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो स्कूल स्तर पर भी काफी आगे तक प्रसिद्ध हुआ, खो-खो।
1: हाँ बहुत ही
0: जी
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आप,
0: हाँ
1: क्योंकि हम थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो खो खो गांव में खासकर स्कूलों में बहुत ज्यादा पॉपुलर था एक समय में,
0: हाँ
1: क्योंकि एक वो एक अलग तरह का ही गेम था जिसमें ना केवल शारीरिक श्रम और ना केवल बहुत ज्यादा फुर्ती की जरूरत थी,
0: हाँ
1: तो बहुत एक मजे से खेला जाने वाला खेल था,
0: जी
1: जो खासकर जो छोटे बच्चे थे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो स्कूलों में जो बच्चे होते थे
0: हाँ
1: और बहुत मजे से उसको खेलते थे,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: एक समय पे बहुत पॉपुलर हो गया था वो।
0: हाँ
1: और आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि काफी लोग स्कूलों में गांव के स्तर पे अभी भी उस खेल को खेलते हैं।
0: जी। तो आपने हमारी जो पुरानी खेल परंपरा जो प्राचीन समय से आ रही है खासकर हरियाणा प्रदेश में, उसकी बात की है, तो इसमें एक घटक और है।
1: जी
0: क्या हरियाणा प्रदेश या फिर इसके जो आसपास के जितना भी क्षेत्र है, इसका जो क्लाइमेट है, इसकी जो जलवायु है, क्या वो भी हमें खेलों के लिए प्रोत्साहन करती है?
1: इसमें देखो सबसे पहले हम कहेंगे जो ओवरऑल जो हमारी कंडीशनिंग है, हमारा ओवरऑल वातावरण है, माहौल है,
0: जी
1: उसमें सबसे जरूरी एक एलिमेंट है हमारे खान पान का,
0: जी
1: क्योंकि दूध दही का खाना है तो वो हमें जो भी उसको लेने वाला है खाने वाला है
0: हाँ
1: उसको शारीरिक श्रम की बड़ी जरूरत होती है,
0: जी बिल्कुल
1: तो वो खाना हमें प्रेरित करता था खेलों के लिए।
0: जी
1: दूसरा हमारे जो क्योंकि हम खेती पर निर्भर ही हमारी आर्थिक व्यवस्था रही है,
0: हाँ खेती
1: तो
0: पर निर्भर रही
1: खेती
0: है
1: में खरीफ की फसल और रबी की फसल का जो बीच का जो समय होता था
0: हाँ
1: वो हमें थोड़ा सा समय देता था हमारे गांव में युवाओं को कि वो कोई और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सके,
0: जी
1: तो उन और एक्टिविटीज को इन्वॉल्व होने के लिए या तो मेन मुख्य रूप से खेल ही था, उसके
0: हाँ
1: अलावा रागनी कंपटीशन वगैरह वो भी थोड़ा सा था एंटरटेनमेंट के लिए,
0: जी
1: लेकिन मुख्य रूप से जो हमें एक्स्ट्रा समय मिलता था पूरे सीजन में पूरे साल में
0: हाँ
1: वो हम खेलों की तरफ, और वो उस दौरान मौसम भी अच्छा होता था,
0: मौसम भी
1: यानी
0: ऐसा होता था, लेकिन क्या जैसे जलवायु हमारी अब ऐसी होती है कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी है, सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ रही है, कठोर जलवायु है, तो क्या ये भी शारीरिक तौर पर तैयार करती है खिलाड़ी को,
1: हाँ
0: क्योंकि
1: हाँ ये बिल्कुल
0: सहन
1: ये
0: शक्ति बढ़ाती है।
1: सहन शक्ति बढ़ाती है
0: हाँ
1: गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी। आप देखते हैं कि मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा
0: हाँ
1: कि खासकर जो होली के आसपास के जो दिन होते हैं
0: हाँ
1: वो बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती
0: हाँ
1: और बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं होती, तो
0: जी
1: ज्यादातर मेले और ज्यादातर कुश्ती प्रतियोगिताएं और कबड्डी प्रतियोगिता होली के आसपास होती थी
0: जी
1: हमारे हमारे ग्रामीण परिवेश में, तो वो इसीलिए वो समय सुना गया था कि उस टाइम क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी में भी नहीं खेल सकते, लोग आएंगे भी नहीं देखने, तो वो एक बहुत नॉर्मल वातावरण होता था, नॉर्मल टेम्परेचर होता था, उस दौरान बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन होते थे।
0: जी तो ये खेल संस्कृति है जो पुराने समय से चली आ रही है, ये आगे कैसे बढ़ी अब तक?
1: ये हमारी कुश्ती और कबड्डी मुख्य रूप से धीरे धीरे धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, हमने इनको कभी भी नहीं छोड़ा, गांव के लोगों ने ग्रामीण युवाओं ने कुश्ती कबड्डी और दौड़ इसको
0: हाँ
1: कभी नहीं छोड़ा।
0: जी
1: सर दौड़ का तो क्या था कि हम यहाँ से फौज और पुलिस की भर्तियां बहुत ज्यादा होती हैं हरियाणा से,
0: हाँ
1: तो उनके लिए एक ये मैंडेटरी एक्सरसाइज मानो कि हमारा युवा दौड़ करता ही करता था,
0: जी
1: तो वो एक खेल के रूप में भी अडॉप्ट कर लेते थे
0: हाँ
1: और वो कुछ और आर्मी और पुलिस की तैयारी के लिए भी करते थे।
0: इसमें एक और घटक है, इसमें फैक्टर जोड़ देते हैं देशपाल
1: जी
0: जी, क्योंकि जब गांव होते थे ना, गांव कई कई कोस पे होते थे, एक गांव से दूसरा गांव कई कोस पे होता था,
1: जी
0: और बीच में जो खेती की जमीन होती थी ना, अब घर से खेत 4 किलोमीटर दूर है,
1: हाँ हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: खेत
1: सही
0: में हो
1: कह
0: सकता है आपको 2 बार आना जाना पड़
1: रहे
0: जाए
1: हैं। हाँ
0: दिन
1: जी
0: में,
1: हाँ जी हाँ
0: तो
1: जी
0: वो जो चलने की शक्ति है या फिर वो जो भाग दौड़ करने की जो ताकत है, वो वहीं से बचपन से ही आ जाती है
1: हाँ
0: उसमें।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल ये भी वो खेत में आना जाना वो
0: हाँ
1: सामान लेके जाना वो सर पे ढोना
0: हाँ
1: वो मतलब भैंसों के लिए चारा लेके आना पशुओं के लिए
0: हाँ
1: वो सारी एक हमें शारीरिक रूप से मजबूती बनाती थी।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: उसके बाद हम जो बात कर रहे थे कि ये हमारे परंपरागत खेल आगे कैसे बढ़े और आज के दिन क्या हालात है,
0: हाँ
1: आप ये देखो कि धीरे धीरे सरकारों ने इन चीजों को प्रेरित करना शुरू कर दिया,
0: जी
1: प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया,
0: जी
1: उसके बाद लोग जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने लग गए।
0: इसमें कई बार ऐसी भी बात होती है देशपाल जी की, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, और आपने इस विषय की ओर ध्यान दिलाया कि फौज में और पुलिस में यहाँ से बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, वो सैनिक भी जाते हैं, सिपाही भी जाते हैं, और उनमें कई लोग खिलाड़ी होते हैं, बचपन से खिलाड़ी होते हैं, और वहां भी

0: प्रतियोगिताएं होती हैं, तो प्रतियोगिताओं में वो अपना नाम लेके आते हैं आगे सामने, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहां से भी ये पता चलता है कि हरियाणा या इसके आसपास के क्षेत्र के लोग कम से कम खेल में बहुत आगे हैं।
1: बिल्कुल
0: जी,
1: बिल्कुल।
0: शारीरिक शक्ति के मामले में
1: बहुत, बहुत।
0: तो क्या वहां से ये पता चलना शुरू हुआ धीरे धीरे कि यहाँ के लोग खेल के लिए काफी कॉम्पिटेंट है?
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही ये बात उठाई। मैंने खुद एक रिपोर्ट करी है अभी पीछे, भिवानी के कुछ गांव हैं जहां पे वॉलीबॉल बहुत फेमस है, और जो आप कह रहे हैं वो सही वही बात है कि वहां से कुछ लोग शायद 1960-70 के दशक में आर्मी में गए, तो उन्होंने देखा वो यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे वॉलीबॉल की, वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो उनकी टीमें थी आर्मी की वो बहुत कमजोर थी, तो एक रिटायर्ड आर्मी के अफसर थे गांव में, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने हमारे जो सीओ जो उस टाइम इंचार्ज थे वहाँ के उनको कहा कि सर ये टीम तो बहुत कमजोर है और हमारे गांव से अगर प्लेयर लेके आए या हमारे गांव के आसपास से बोले तो हमारी बहुत अच्छी टीम हो सकती है। आज के दिन आप यकीन करो कि आर्मी की जो टीमें हैं वो अपने इंटरनल कॉम्पिटिशन में प्रैक्टिस के लिए उस गांव में आते हैं
0: जी।
1: उस भिवानी के उस गांव में मैंने देखा कि वहां पे वॉलीबॉल एक गांव में वॉलीबॉल का इतना क्रेज है, वो कह रहे हैं कि वॉलीबॉल से हमारे गांव की दशा ही बदल गई
0: जी।
1: हर घर में वॉलीबॉल खेल के वहां नौकरियां लगी और आर्थिक समृद्धि आई, और आज के दिन आर्मी की टीमें उस गांव में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं क्योंकि उस गांव में प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, कोच बहुत अच्छे हैं।
0: बिल्कुल, ये आपने केस स्टडी की बात की।
1: हाँ,
0: लेकिन वापस लौटते हैं वहीं उसी जगह पे, जब हम परंपरा से बाहर निकलते हैं जो हमारी खेल संस्कृति में पहले से ही व्याप्त थी, अब लेकिन जब यहाँ पे आ गए हम आधुनिक समय में आ गए और इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मजबूत हुआ है, तो अब खेलों की दशा और दिशा क्या है?
1: अभी खेलों की दशा और दिशा का एक छोटा सा उदाहरण है कि अभी हरियाणा अभी हमारी नेशनल जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने एशियाड के लिए जो अभी इसी साल एशियाड होना है अक्टूबर में एशियाड होना है जापान में, उसके लिए कुश्ती की टीम सेलेक्ट हुई है, कुश्ती ग्रीको रोमन में, कुश्ती फ्री स्टाइल में और कुश्ती की टीम जो महिलाओं की टीम है
0: जी।
1: तो 18 वेट हैं अलग अलग, 6 ग्रीको रोमन के, 6 फ्री स्टाइल के और 6 महिलाओं के, 18 की 18 प्लेयर हरियाणा से हैं
0: जी।
1: पूरे देश के उन्होंने अभी पीछे ट्रायल्स हुए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हरियाणा के लिए। तो इसमें क्या है कि जैसा उस टाइम हमारा परंपरा थी कुश्ती की, वो अब इस रूप में आ गई है कि न केवल मेडल बल्कि हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है अब हरियाणा के जो प्लेयर्स हैं।
0: हाँ।
1: और नौकरियां भी मिल रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी एक्सपोजर मिल गया उनको, तो यहाँ पे सरकारों ने यहाँ पे सुविधाएं भी दी, कोचेज भी दिए।
0: हाँ।
1: तो उसका परिणाम ये रहा कि आज के दिन हम प्रोफेशनल रूप में हम खिलाड़ी बन गए हैं, हम सिर्फ परंपरागत रूप से एंटरटेनमेंट के लिए शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए खेल को नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, आज के दिन हम प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल्स लेके आ रहे हैं, देश का नाम रोशन कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, तो इसमें हम खेल संस्कृति में जब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो एक जो आधारभूत ढांचा होता है, क्योंकि पहले जब हम शुरुआत में बात की थी पहले सुविधाएं नहीं होती थी, तो आप खेल पत्रकार हो, आप लंबे समय से जुड़े रहे हो, अब सुविधाओं को किस प्रकार से देख रहे हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का खेल हो, चाहे वो कुश्ती हो, कबड्डी हो, खो खो हो या फिर अन्य कोई भी वॉलीबॉल या फुटबॉल के तरह का खेल हो, आधारभूत ढांचा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो खेल के लिए काम आएगा उसको हरियाणा प्रदेश में किस तरह से आप देख पा रहे हो?
1: देखो, जिस तरह का हरियाणा में खेल को हमने मॉडर्न रूप में प्रोफेशनल तरीके में अपना लिया है, ना केवल कुश्ती कबड्डी में बल्कि एथलेटिक्स में भी, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, हर जगह पे, तो हमारे यहाँ पे आधारभूत ढांचा जैसे हमने शुरुआत में बात की कि कुश्ती और कबड्डी में बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं थी, धीरे धीरे वो बढ़ता चला गया
0: जी।
1: तो लेकिन अब कोचिज की तो उसमें जरूरत है।
0: हाँ।
1: अच्छा, हॉकी इवन आज के दिन कुश्ती में भी मैट्स वगैरह चाहिए।
0: हाँ।
1: तो सरकारों ने इस आधारभूत ढांचे को आगे बढ़ाया है, इसमें कोई शक नहीं है
0: जी।
1: लेकिन जिस तरह का क्रेज पूरे अब हरियाणा में है और खेलों के प्रति भी, बॉक्सिंग से लेके, फुटबॉल से लेके, वॉलीबॉल से लेके, इवन तीरंदाजी तक, यहाँ पे जिस तरह से युवा इन खेलों के प्रति आकर्षित हो रहा है और रिजल्ट दे रहा है, हमारी सरकारों को भी उनके आकर्षण के अनुरूप ही इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की भी जरूरत है
0: जी।
1: इसमें कोई शक नहीं, चाहे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के कोर्ट्स का पीछे बातें चली, तो उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बढ़ाने की जरूरत है, वहां पे कोचेज लेके आने की जरूरत है। और क्योंकि हम अब उसको तकनीकी स्तर पे अगर हम खेलों को आगे लेके जाएंगे, तो हमें लगता है कि हरियाणा आज जिस लेवल पे है खेलों में, देश का नाम रोशन कर रहा है, उससे बहुत आगे भी कर सकता है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि अगर खिलाड़ी की अपनी मेहनत एक तरफ है, तो उसके साथ में कहीं ना कहीं जो तकनीक है, तकनीक का भी सही होना जरूरी है, और वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रतिस्पर्धा करने लायक तकनीक
1: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल
0: उसका होना बहुत जरूरी
1: बिल्कुल,
0: है
1: बिल्कुल,
0: जी जिसका बढ़ावा मिलना चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, जिस तरह आज इंटरनेशनल लेवल पे जो प्लेयर्स हैं बहुत ज्यादा तकनीक का सहारा लेते हैं, चाहे डाइट है, इवन चाहे मेंटल टफनेस है, मानसिक रूप से मजबूत होने के लिए भी वो अलग से कोचेज रखते हैं
0: जी,
1: और डाइट का तो रोल है ही
0: जी।
1: तो हमें भी अपनी डाइट को अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन करने के लिए हमें अपनी डाइट में भी चेंजेस लाने की जरूरत है
0: जी।
1: और कोचिंग तो इंटीग्रल पार्ट है ही किसी भी स्पोर्ट्स का।
0: हाँ।
1: लेकिन उस सब के लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा होना बहुत ही जरूरी है।
0: आधारभूत ढांचा तो है, लेकिन इसको और मजबूत करना,
1: और मजबूत करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, तो ये आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण दे रहे हैं। जब नए खेलों की बात करते हैं, तो कुछ ऐसे खेलों का आपने जिक्र किया है कि जो हरियाणा प्रदेश में आए हैं, जिस प्रकार से हम तीरंदाजी की बात करते हैं, और भी कई प्रकार के खेल हैं, हालांकि जैसे राइफल का खेल है जिसमें निशानेबाजी का काम है, पिस्टल का है, वो कोई बहुत नई बात नहीं है, वो तो पहले से ही चलते आ रहे हैं, क्योंकि फौज और पुलिस में बहुत जवान जाते हैं, आपने बात की है। तीरंदाजी की आप बता रहे, और कौन कौन से खेल हैं जो हरियाणा प्रदेश में आ रहे हैं और खिलाड़ियों का इनके प्रति रुझान है?
1: विशेष तौर पर इसमें एथलेटिक्स में जो है वो कई खेल आ रहे हैं।
0: हाँ।
1: उसके अलावा तीरंदाजी हरियाणा के लिए वैसे बिल्कुल नया खेल है।
0: आपको प्रोग्राम क्या जिम्नास्टिक में भी कुछ हुआ है?
1: जिम्नास्टिक में बहुत ज्यादा अभी हरियाणा का योगदान नहीं है
0: जी, बिल्कुल।
1: हाँ, एथलेटिक्स के और है, जैसे जेवलिन थ्रो में हमारा जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है
0: नीरज चोपड़ा।
1: और लेकिन उनके साथ ही एक फतेहाबाद जिले का गांव है जहां पे जेवलिन थ्रो में लड़कियों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अचीवमेंट्स रही है। अभी फतेहाबाद में प्रशासन भी वहां पे जेवलिन थ्रो के लिए वहां इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है उस गांव में उन लड़कियों के लिए।
0: आप तीरंदाजी की बात कर रहे हैं?
1: तीरंदाजी में उमरा गांव है हिसार में, हांसी के पास। उमरा गांव में बहुत ही अच्छा एक तीरंदाजी का सेंटर, वहां पे मिस्टर मलिक हैं, उन्होंने पता नहीं कुछ साल पहले किस सोच से वहां पे तीरंदाजी का सेंटर शुरू किया। वहां से तीरंदाजी के लिए बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं तीरंदाजी में। वो मेरी उनसे बात भी हुई, उन्होंने बताया कि तीरंदाजी बिल्कुल नया खेल है हरियाणा के लिए, लेकिन यहाँ जो खासकर लड़कियां भी और लड़के भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके उसमें परफॉर्मेंस के दम पर नौकरियां भी हासिल कर रहे हैं
0: जी। बिल्कुल, तो इसके साथ साथ में एक बात और गौर करने लायक है दीपेंद्र देशपाल जी, कि हरियाणा प्रदेश में सरकार तो काफी सहायता कर ही रही है खेलों के बारे में, लेकिन इसमें जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, अगर हम उसमें बात करें डिसेबिलिटी सेक्शन की, जिसमें जो विकलांग लोग हैं उनके लिए पैरालंपिक होते हैं, तो उसमें भी हम हर बार जब भी देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश का काफी बड़ा योगदान।
1: बिल्कुल,
0: तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
1: बिल्कुल, देखो पैरालंपिक गेम्स का अगर हम पिछला कुछ रिकॉर्ड उठा के देखें, तो हमें पता लगेगा कि जो भी इंडिया का जिस तरह जो भी रिप्रेजेंटेशन है इन गेम्स में, उसमें हरियाणा का काफी बड़ा हिस्सा है, और उसमें ही यहाँ के प्लेयर्स इवन मेडल भी लेके आए हैं। मैं एकता भयान का इसमें जिक्र करना चाहूंगा, जो हिसार में रोजगार अधिकारी हैं।
0: हाँ।
1: और वो पैरा ओलंपिक में मेडल भी हासिल उन्होंने किया है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा वर्ल्ड पैरा गेम्स में भी उनकी अचीवमेंट्स हैं। तो वो गोला फेंक एक इवेंट होता है उसमें, उसके अलावा सोनीपत में एक अच्छा सेंटर है जहाँ पे पैरा ओलंपिक के काफी प्लेयर्स प्रैक्टिस करते हैं और उनकी अचीवमेंट्स भी है
0: जी। बिल्कुल, तो इन खेलों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि ये आगे के लिए एक नई राह खोलते हैं, क्योंकि नए खेल आएंगे उनके प्रति भी युवाओं का रुझान रहेगा, और इससे खेलों के प्रति एक नई राह और नई दशा और दिशा तय।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल।
0: तो दीपेंद्र देशपाल जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और आपने खेलों पर अपने विचार हमसे साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, जिसमें आपने सुने दीपेंद्र देसवाल के साथ हमारी खेल परंपरा विषय पर एक भेंट वार्ता। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुबह सवेरे।

श्रोताओं, आसपास जब हरी भरी घास हो, पेड़ पौधे हों और उन पर बोलते चहचहाते पक्षी हों, तो वो हमारे मन को वो सुकून देते हैं जो आधुनिक सुविधाएं हमें नहीं दे पाती। गर्मी के मौसम में तो ये हरियाली, ये पेड़ पौधे हमें और भी अधिक सहायता और राहत देते हैं, हमें गर्मी से बचाते हैं। आजकल गर्मी का मौसम चरम पर है। इस तरह की स्थिति एल नैनो नामक एक खतरनाक स्थिति से मिलती जुलती है। एल नैनो प्रशांत महासागर में पानी के असामान्य रूप से गर्म हो जाने से पूरी दुनिया में हवा के प्रभाव के बदलने से होती है। इस समय इतनी तेज गर्मी पड़ रही है कि लोगों के स्वास्थ्य तक इससे प्रभावित हो रहे हैं। हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ रहा है, जिससे जान की हानि तक की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हीट स्ट्रोक के लक्षण होते हैं जैसे अचानक से तेज सिर दर्द हो जाना, बेहोशी की स्थिति होना, उल्टी, बिना पसीने के सूखी या ड्राई त्वचा हो जाना। ऐसे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में दिखाई दें तो तुरंत व्यक्ति को छायादार जगह पर लेकर जाएं, गीले कपड़े से उसके शरीर को पोंछें और तुरंत नज़दीकी अस्पताल में जाएं। ऐसे मौसम में हम सबको अगर खुद को बीमारियों से बचाना है तो ज़रूरी सतर्कता अपनानी होगी। हर घंटे पानी पीते रहें, बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान दें ताकि वो पर्याप्त मात्रा में पानी दें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा जरूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। दोपहर के समय यानी दोपहर 11 बजे से दिन में 3 बजे तक के बीच सबसे ज्यादा तापमान होता है। सूर्य की किरणें सीधे हमारे शरीर पर पड़ती हैं, तो इस समय कोशिश करें कि घर पर या छायादार जगह पर रहें, ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर जाएं। हल्के रंगों के कपड़े पहनें, मौसमी फल सब्जियों का इस्तेमाल जरूर करें। साथ ही हमें ठंडक देने वाले कूलर, पंखे या एसी का इस्तेमाल करते समय इस बात का विशेष ख्याल रखें कि ज़्यादा लंबे समय तक उन्हें एक बार में ना चलाएं, क्योंकि इससे उनकी मोटर या कंप्रेसर गर्म हो जाता है और इसके कारण उनमें खराबी आने या आग लगने जैसी स्थिति बन सकती है, जो कि भयावनक रूप ले सकती है। समय समय पर उनकी सर्विस जरूर कराएं। इस तरह की बातों का ख्याल रखेंगे तो हम खुद भी गर्मी से बच पाएंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इस भयानक गर्मी से बचा सकेंगे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, स्कूलों में ग्रीष्म अवकाश चल रहा है। गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए आराम करने, नई रुचियों को खोजने, जीवन कौशल विकसित करने और आराम से सीखने का सबसे बढ़िया समय होता है। इस समय पर बच्चे खूब मौज मस्ती कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, शारीरिक गतिविधियों, रचनात्मक पारिवारिक समय का मजा ले सकते हैं, कौशल विकास कर सकते हैं और एक सरल दिनचर्या को संतुलित करके गर्मी की छुट्टियों का भरपूर मजा ले सकते हैं। अभिभावकों के लिए ये समय केवल गर्मियों की छुट्टियों में स्क्रीन टाइम या पढ़ाई के दबाव तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे बढ़िया तरीके से इन छुट्टियों का आनंद उठाएं, साथ ही सक्रिय, जिज्ञासु और आत्मविश्वासी बनें, अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए बढ़िया तैयारी करें। गर्मी की छुट्टियाँ बच्चों को नियमित स्कूल के कार्यों, परीक्षाओं, गृह कार्यों, दैनिक शैक्षणिक दबाव से बेहद ज़रूरी राहत देती है। इसमें उन्हें आराम करने, अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, बाहर खेलने, पाठ्य पुस्तकों से परे अपनी नई रुचियों को खोजने का भी ये बहुत बढ़िया समय होता है। लेकिन लंबे समय तक अगर बच्चे अपनी पढ़ाई से ब्रेक ले लेते हैं या पढ़ने लिखने से दूर हो जाते हैं तो ऐसे में समस्या उत्पन्न हो जाती है, वे अकादमिक अवधारणाओं को भूल जाते हैं। ऐसी स्थिति को अक्सर ग्रीष्मकालीन अवकाश में सीखने की हानि या ग्रीष्मकालीन स्लाइड कहा जाता है। शोध में पता चला है कि सीखने की हानि कक्षा विषय और घर के माहौल के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन अगर समय को सही तरह से संयमित किया जाए तो इस समय पर सीखने का सबसे बढ़िया अवसर भी ये बच्चों को देती है। अगर इस समय पर उनकी दिनचर्या को सही तरीके से बनाया जाए और उसके अनुसार अगर बच्चे काम करें तो इस समय का भरपूर आनंद वो ले सकते हैं, शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, पढ़ने लिखने के समय को निर्धारित करके उस समय पर पढ़कर वो अपने पाठ्यक्रम को पूरी तरह से सीख पाते हैं, नई रचनात्मक और कौशल कार्यों का भागीदारी भी वो बन सकते हैं, साथ ही घरेलू काम में भी अपने माता पिता अभिभावकों का साथ दे सकते हैं। ऐसे में वो इन छुट्टियों का भरपूर आनंद लेंगे और गीली मिट्टी जैसे कोमल इन बच्चों को हम इस समय पर सही तरीके से अगर संयमित करें तो उन्हें नई दिशा दे सकते हैं, उनके भविष्य को बढ़िया बना सकते हैं।

श्रोताओं, सोशल मीडिया पर सहज उपलब्ध सामग्री से जहां कई क्षेत्रों में सुविधा उपलब्ध कराई है, वहीं कुछ लोग तथ्यहीन भ्रामक विचारों का संप्रेषण कर गलत जानकारी फैलाने का काम भी करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया जहां एक तरफ वरदान है, वहीं दूसरी तरफ अभिशाप भी है। यानी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय हमें अत्यंत सजग और जागरूक रहना चाहिए। सोशल मीडिया बेहतर उपयोग अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सही और गलत को पहचानने की क्षमता को अपने अंदर उत्पन्न करना होगा। ये सर्वविदित है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न उत्पाद बेचने वाली कंपनियां और धार्मिक विचारधाराओं के प्रचारित और प्रसारित करने वाले लोग बखूबी भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पर जो सामग्री है उसका उद्देश्य और लक्ष्य समझने में हम भलीभांति सक्षम हो, तभी हम सही सामग्री का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे और हानि से अपने आप को बचा सकेंगे। श्रोताओं, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बेहद ज़रूरी है, पर उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हम सतर्क हों, जागरूक हों। अगर हम सही दिशा में काम करते हैं, सही समय पर करते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते को नहीं रोक पाती है और इन जानकारियों का सही इस्तेमाल करके हम अपने उद्देश्यों को पा लेते हैं।

ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो के

हाथों में हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गज।

नहीं आया मौसम बहार का, रख ले दिल बेकरार का मेरे हाथों तुम तुम में हाथ डाल। ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है। ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा, जा।

इसी गीत के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम सुबह सवेरे। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रसारित होंगे, पहले हिंदी में, उसके तुरंत बाद 8:15 पर अंग्रेजी में। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: इसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना एनडीए सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। पश्चिम एशिया संघर्ष में तनाव के बीच अमरीकी सेना ने ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की और देश से ओलंपिक के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की बैठक का विषय है, विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। वे समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करेंगे।
2: बैठक में देश भर में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत करने और अस्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इन चर्चाओं में शासन, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, अभिसरण, साझेदारी और डेटा आधारित प्रणालियों सहित प्रमुख सहायक तत्वों का उपयोग करते हुए एक कार्यान्वयन प्रारूप तैयार करने पर बल दिया जाएगा। इसके साथ ही अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों पर नजर रखने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे जवाबदेही और मापन योग्य प्रभाव सुनिश्चित हो सके। समावेशी मानव विकास पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ राज्य के दृष्टिकोणों को संरक्षित करने पर विशेष बल दिया जाएगा। नीति आयोग की शासी परिषद 26 से 28 दिसंबर 2025 के दौरान आयोजित मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
3: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
3: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्री नवीन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एनडीए नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्व भर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में चर्चा करेंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
5: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है, वो हमारा फैमिली 5 है, जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था, अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
4: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। देश भर में अब तक लगभग 10,82,00,000 लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
6: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है, कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है, कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है, जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
4: पारंपरिक ईंधन जैसे कोयले और लकड़ी के धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की, जिसके तहत अब तक 10,55,00,000 से अधिक महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई PM स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1,12,00,000 से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया, जो जन कल्याण और समावेशी विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय वाणिज्य मंडल ICC ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। एक रिपोर्ट।
2: भारतीय वाणिज्य मंडल ICC के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच नई दिल्ली में हुई बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा की गई। ICC ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आर्थिक गतिविधियों को लेकर नया उत्साह और सकारात्मक माहौल दिखाई दे रहा है। इससे राज्य के आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश के लिए एक आकर्षक केंद्र के रूप में उसकी पहचान और मजबूत होगी। भारतीय वाणिज्य मंडल की स्थापना वर्ष 1925 में उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला और अन्य व्यापारिक नेताओं ने की थी। यह देश के सबसे पुराने उद्योग संगठनों में से एक है। समाचार से कृष्णकांत।
1: पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमरीका ने कल ईरान के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए। अमरीकी सेना ने बताया कि ये हमले ईरान की लगातार आक्रामक गतिविधियों के जवाब में किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमरीकी हमलों का ये दूसरा दिन है। इससे कुछ घंटे पहले ईरान ने बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि बातचीत में गतिरोध के लिए ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि ईरान धमकी और दबाव के बीच किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा। इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने कहा कि ओरमूज जलडमरू मध्य को सभी जहाजों और तेल टैंकरों के लिए बंद कर दिया गया है। संघर्ष के कारण वैश्विक तेल बाजार पर भी असर पड़ा है। कच्चे तेल की कीमत $93 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ वर्षा का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा।
4: फीफा विश्व कप का यह अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीमें भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीमें शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीमें सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेंगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं चिराग झा।
1: और आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी।
5: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने पर आयोजित अभिनंदन बैठक में उनका बयान दिया है। कांग्रेस ने अपनी नाकामियों का ठीकरा हिंदुओं पर फोड़ा। लोकसत्य ने श्री मोदी का बयान दिया है, भारत अब आत्मनिर्भर, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बन रहा है। झटका शीर्षक से हिंदुस्तान लिखता है, मार्च के बाद 20% तक महंगा हुआ जरूरत का सामान, रसोई का खर्च करीब 1,000 रुपए तक बढ़ा। दैनिक भास्कर ने नीट पेपर लीक मामले में NTA अधिकारियों की संसदीय समिति से मुलाकात को सुर्खी बनाया है। संसदीय समिति के सामने NTA ने रखा सुरक्षा प्लान, समिति ने कहा हमें अमेरिका और चीन जैसे देशों से सीखना चाहिए। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में POK की पीड़ा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, इस्लामाबाद ने POK में निर्दोष नागरिकों के साथ जैसी बर्बरता दिखाई है, उससे क्षेत्र की वास्तविक स्थिति फिर से दुनिया के सामने उजागर हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले पाकिस्तान का POK में रवैया उसके दोहरे मापदंडों की ही कलई खोलता है। दैनिक ट्रिब्यून की खबर है 30 साल पहले लापता पर्वतारोही के अवशेष भारत लाएगी आईटीबीपी। माउंट एवरेस्ट पर 1996 के दुर्भाग्यपूर्ण अभियान के दौरान खो गए थे लांस नायक दोर्जे मोरूप। नवभारत टाइम्स ने फीफा विश्व कप को अहमियत दी है। फुटबॉल का महासंग्राम आज से 10 दावेदार 10 सुपरस्टार। राजस्थान पत्रिका ने WHO की रिपोर्ट प्रकाशित की है, खराब खानपान से हर रोज 42 लाख बीमार, 4100 मौत।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना NDA सरकार की सही नीतियों का प्रमाण। भारतीय वाणिज्य मंडल ने पश्चिम बंगाल में 1,00,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई। उत्तर पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र, ओडिशा, केरल और माहे के कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू चेयर 11th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग इन न्यू दिल्ली टुडे। Prime Minister says lifting more than 25 crore people out of poverty during past 12 years of NDA government shows that its policies are correct and moving in right direction. Indian Chamber of Commerce plans to channel investments worth 1 lakh crore rupees into West Bengal. IMD forecasts heavy rainfall in places over northeast, sub-Himalayan West Bengal, Odisha, Kerala and Mahi today. US military strikes multiple targets in Iran in latest escalation of tensions in West Asia. And Prime Minister Modi praises performance of Indian sportspersons and urges the nation to set ambitious targets for Olympics. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The Governing Council meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. A report from our correspondent.
7: Measures for promoting entrepreneurship, enhancing skilling and creating sustainable employment opportunities across the country will also be deliberated upon in the meeting. The discussions will further focus on collectively charting an implementation roadmap that leverages key enablers including governance, digital public infrastructure, convergence, partnerships and data-driven systems alongside a structured mechanism to track short, medium and long-term outcomes ensuring accountability and measurable impact. A key thrust will be on aligning state visions with the national vision on inclusive human development, reinforcing a unified and collaborative approach towards equitable and sustainable growth. The Governing Council of Niti Aayog will also focus on the recommendations of 5th National Conference of Chief Secretaries held during 26th to 28th December last year. With Anupam Misra, Anand Kumar, Akashvani News, Delhi.
6: Prime Minister Narendra Modi has said aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled. He said that National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday evening. He said the rising sun of hope in 2014 has today transformed into a ray of renewed confidence. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, the development also takes place at a rapid pace. Mr. Modi said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
8: NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hain, hamari disha sahi hai. Ye safalta आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
6: In his address, the Prime Minister said that at a time when the economies of major countries around the world are struggling, India has still achieved a growth rate of 7.7% in 2025-26. He said the

0: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें गायक कलाकार हैं सूरज भान सांगी और साथी।
1: आपके सामने किस्सा रहेगा सन्निकर्ण का। रागनी उस मौके की है जब राजा मदन सेन सन्निकर्ण का फोटो देखता है और क्या कहते हैं, भाई चंद किरण की शान देख के रखा कपड़ा तवाला, ए भगवान

से दुनिया में रुका रोला, से दुनिया में रुका रोला, रे सूरज भान गजब का गोला, सूरज भान सांग का गोला, जाब बरान के रेने आला।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: राजा मदन सेन को उनकी बड़ी रानी कंचनपुर जाने से रोकती है और राजा मदन सेन क्या कहते हैं इस मुख्य रागनी।

ਸੀ ਪਸੋਟ ਰਮਾ ਰਮ ਬਿਨ ਖੋਟ ਲਾਗੀ ਫਿਰ

0: राजा मदन सेन चंद्रकण के पास पहुंच जाते हैं और उनसे क्या बातें करते हैं सुनिए इस मौके के राजी।
1: जब मिला

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आज गायक कलाकार थे सूरजवान सांगी और साथी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक।

फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम में आप सभी को किरण का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले आपको बता देते हैं हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2554462554447 2554448। जो श्रोता रोहतक के बाहर या मोबाइल से संपर्क कर रहे हैं तो फ़ोन नंबर से पहले हमारा एसटीडी कोड ज़रूर लगा लें। एसटीडी कोड है 01262 01262। तो जब तक आपके फ़ोन कॉल्स हम तक पहुंच रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं साहिबा फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत आप सब तक।

0: अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में साहिबा फिल्म का गीत आपने सुना। बात करते हैं कार्यक्रम के पहले श्रोता से। हेलो,
1: आदरणीय दीदी को सादर से प्रेम प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बात कर रही हैं?
1: दीदी आगरा उत्तर प्रदेश से राजू लवानिया बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है राजू जी आपका कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और हमारी आकाशवाणी रोहतक टीम कैसी है?
0: बहुत बढ़िया, और आप लोगों से बात होने पर और भी बढ़िया हो जाती है। बताएं कौन सा गीत सुनेंगे?
1: दीदी जवाब हम देंगे
0: जी।
1: हैरान हूं मैं आपकी।
0: तो आपकी पसंद का गीत आप तक पहुंचा दे राजू जी।
1: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। तो आइए सुनते हैं राजू लावण्या जी की पसंद पर जवाब हम देंगे फिल्म का गीत, आवाज़ें शबीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो
0: नमस्कार जी। नाम बता दे, कौन कहाँ से बात कर रहे
1: हेलो,
0: हैं? हेलो,
1: मॉर्निंग एंड शुभ बात दीदी किरण।
0: नमस्कार जी, बहुत स्वागत है आपका। नाम बता दें।
1: मैं जी सीनियर लिसनर सुंदरपाल कौशिक तेलंगा से। थैंक
0: बहुत बहुत स्वागत है सुंदरपाल कौशिक जी आपका कार्यक्रम में।
1: यू दीदी।
0: कौन सा गीत सुनेंगे?
1: गीत है जी, अनीता पिक्चर का गीत है जी, और कोकिला की आवाज में बड़ा मनमोहक मधुर गीत है।
0: जी
1: कैसे करूं प्रेम की मैं बात, ना बाबा बाबा पिछवाड़े बूढ़ा हाथा।
0: जी आपकी पसंद का गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। कार्यक्रम कैसे लग रहे हैं सुंदरपाल जी?
1: बिल्कुल दीदी, मैं तो 50 वर्ष पुराना श्रोता हूँ आकाशवाणी केंद्र का। मैं सभी प्रोग्राम सुनता हूँ क्योंकि
0: जी
1: मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, तो लगभग 10 10 घंटे तो आकाशवाणी रोहतक को तो सुनता ही सुनता हूँ प्रतिदिन।
0: जी बहुत अच्छा लगता है हमें सुनकर।
1: ठीक है दीदी, सुनवा दो गीत, सुनवा
0: जी
1: दो।
0: पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: बात करते हैं कार्यक्रम के अगले श्रोता से। हेलो,
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम जी।
0: गुड मॉर्निंग। कौन कहाँ से बात कर रहे हैं, नाम बता दें।
1: जी मैं गांव जेवरा जिला हिसार से वीरेंद्र बयान बात कर रहा हूँ मैम जी। जी
0: स्वागत है वीरेंद्र जी कार्यक्रम में।
1: मैम जी, आपका शुभ नाम। जी
0: किरण बात कर रही हूँ।
1: मैम जी, और जी कैसे हो, ठीक हो जी? जी
0: हम सब बढ़िया हैं, आप बताएं, आप सभी कुशल होंगे उम्मीद करती
1: मैम
0: हूँ।
1: जी, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है मैम जी। और आपके प्रोग्राम सुन रहे हैं मैम जी,
0: जी तो कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम?
1: बहुत तो अच्छे लग रहे हैं जी। और ये कहना चाहूंगा जी कि अगर व्हाट्सएप का और प्रोग्राम अगर आप चला देते तो बढ़िया था मैम जी।
0: जी जरूर, आपका जो निवेदन है वो नोट कर लिया है। तो गीत के बोल बता दे, कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
1: जी मैम जी, गीत सुनना बरसात मूवी का गीत, कुमार सानू की आवाज में जी, बोल समीर के संगीत रहेगा नदीम शरवण का मैम जी। और गीत के बोल हैं, ये दिल दीवाना है प्यार करेगा।
0: जी तो वीरेंद्र जी पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: जी धन्यवाद मैम जी।

0: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो रोहतक। बात करते हैं कार्यक्रम के अगले श्रोता से। हेलो,
1: जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, नाम बता दें।
1: जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कंठी से आपका भाई पुष्करनाथ शर्मा बात कर रहा हूं। आपको और सभी मेरी दीदियों को माताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, और दीदियों को माताओं को मेरा प्रणाम।
0: बहुत बहुत स्वागत है पुष्कर नाथ जी आपका कार्यक्रम में। कौन सा गीत आज आप सुनेंगे?
1: ये सुनूंगा मैं श्री 420 का मुड़ मुड़ के ना देख लाश भोंसले और साथियों की आवाज में। और आपके कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। आपका ना सबसे ज्यादा मुझे प्रिय भक्ति संगीत लगता है। भक्ति संगीत में शनिवार को शनि देव का भजन एक आता है, शनिश्वर
0: जी
1: तो, और शिव जी भगवान जी का सोमवार को भजन एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आपके आकाशवाणी से
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी अच्छा लगता है, हमारे कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं तो सुनवा
1: और
0: रहे हैं
1: बाकी
0: आप।
1: आपके कार्यक्रम हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हम रेडियो ही सुनते हैं। मैं बोलता हूँ सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा कि रेडियो से नाता जुड़ो और टीवी और मोबाइल से नाता तोड़ो।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, मनोरंजन का बहुत बढ़िया और ज्ञान का साधन है रेडियो।
1: और मैं श्रोताओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि रेडियो रेडियो एक ऐसी चीज है कि रेडियो से हम कुछ सीख भी सकते हैं। और टीवी को हम देखते हैं तो हमारी आंखें खराब होती है, मोबाइल को देखते हैं तो आजकल मोबाइल पे ही देखते हैं लोग, मगर ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो आंखें खराब होती है। ज्यादातर लक्षण यही होते हैं कि किसी के छोटे छोटे बच्चों की आंखों की नजर कम हो जाती है।
0: जी तो आपका सुझाव हमारे श्रोताओं तक पहुंच चुका है, आप पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत आप तक। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय माता।

0: पर है हे।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: आकाशवाणी रोहतक से आप सुन रहे हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। हेलो,
2: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, नाम बता दें।
2: उमेद यादव बोल रहा हूँ, बस सही मैंडेवर्ड से।
1: जी स्वागत है उमेद यादव जी आपका कार्यक्रम में।
2: जी मैम
1: जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
2: बंजारन फिल्म का सुनना था, कब आएगा मेरी बंजारे।
1: जी तो आपकी पसंद का गीत पहुंचा दें आप तक।
2: जी मैं एक हमारे दो चार दोस्त थे, जैसे बागो थे, नरेश जी और केड़ी तलवाना से विजय जी, कई दिनों से काफी दिनों से आ नहीं रही है, वो काफी चल रहे हैं, तो वो सुन रहे होंगे, तो कृपया जल्दी संपर्क करें।
1: जी जरूर, आपका जो संदेश है वो उन तक पहुंच गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का गीत।
2: थैंक यू।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी। नाम बता दें
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से। आज
0: जी। सतीश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन सा गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
1: दिलवाले फिल्म का सुनना चाहता हूँ, जीत तथा जिसके लिए। और आपके इधर उधर का मौसम कैसा है?
0: जी, मौसम ठीक है। आप
1: और क्यों, इस मौसम में भाई गर्मी का मौसम चल रहा है तो मौसमी फल खाना चाहिए, जैसे खरबूजा, कलेली, ककड़ी, खीरा, इनका सेवन करना चाहिए। पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, पक्षियों को पिलाना चाहिए पानी,
0: जी,
1: और पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पर्यावरण
0: बिल्कुल।
1: को स्वच्छ करना चाहिए।
0: पर्यावरण को बनाए रखने के लिए हमें छोटे छोटे जो ये काम है ये ज़रूर करने चाहिए। फिलहाल आपका पसंद का गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी। किरण जी,
0: नमस्कार जी, नाम बता दें।
1: मैं बलवान सिंह बोल रहा हूँ जी, गांव बास, जिला हिसार से। हाँ
0: बलवान सिंह जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी, मैं CID फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ जी, लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू
0: जी
1: नगरी से आया है कोई जादूगर।
0: बलवान सिंह जी, आपकी पसंद का गीत आपको जरूर सुनवाएंगे। तो सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का गीत, शमशेद बेगम और आशा भोसले की आवाज़ों में। बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए।
1: हाँ जी, धन्यवाद जी, आपकी मेहरबानी।

0: আই আই দেখো দেখো আই হাসি আই রে।
1: सीआईडी फिल्म से गीत आपने सुना, आवाज़ें थी शमशाद बेगम, आशा भोसले और साथियों की। इसी गीत के साथ संपन्न होता है फ़ोन इन कार्यक्रम हेलो रोहतक। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 10 बजने को हैं, अब समाचार प्रसारित होंगे। पहले हिंदी में 10:05 पर अंग्रेज़ी में समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष की

0: बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। समावेशी मानव विकास ढांचे पर इस बैठक में चर्चा होगी, जो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए कल उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है। प्रधानमंत्री ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया। एनडीए सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया कि एनडीए सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे कार्यकाल के लिए बधाई देते हुए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 35 राजनीतिक दलों के 75 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री को देश के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने की उपलब्धि पर अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें बधाई दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक शक्तिशाली और महान नेता हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सहित विश्वभर के नेताओं से मिले बधाई संदेशों के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त किया है। भारतीय वाणिज्य मंडल आईसीसी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सदस्य कंपनियों के माध्यम से 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव पर नई दिल्ली में आईसीसी के अध्यक्ष ब्रजभूषण अग्रवाल के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह के बीच बैठक में चर्चा की गई। आईसीसी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में सकारात्मक स्थिति बनी हुई है, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी और निवेश को लेकर राज्य की पहचान मजबूत होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर केंद्र शासित प्रदेश में रेल सेवाओं के विस्तार पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने जम्मू श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस की सराहना करते हुए दक्षिण कश्मीर के लोगों की सुविधा के लिए अनंतनाग में इसका ठहराव देने का अनुरोध किया। संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2024 और 2025 के लिए संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कारों की घोषणा की है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में और हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश सहित जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आंधी और गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना है। फीफा विश्व कप 2026 का आज से आगाज हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला 19 जुलाई को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi today. In line with the Prime Minister's vision of Team India for a Viksit

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30:19 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। लिखते हैं,
2: हर कठिनाई में छुपी होती है सफलता की कुंजी, बस उसे ढूंढना होता है। और असफलता में छुपी होती है एक नई सीख जो हमें और बेहतर बनाती है। सपनों की उड़ान तभी सफल होती है जब हम ज्ञान के पंखों से उड़ते हैं।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेरणादायी संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चांदनी चौक गंडई पंडरिया छत्तीसगढ़ से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की, विकी, नानू, रविंद्र और रौनक सेन जी का।
2: शेरी वडनेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर और अरुणा दामोदर।
1: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन और डिंपल देवांगन।
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, मीठी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अवनी गुर्जर और प्रियांशी।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में।
2: जी
1: श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं दुनिया के प्रसिद्ध पेयों के बारे में और उनकी रोचक जानकारी ले रहे हैं।
2: जी
1: तो विमलेश जी, पिछले दिनों में हमने चर्चा की चाय और कॉफी से जुड़ी सुंदर सामाजिक परंपराओं की।
2: जी
1: ये तो बताइए श्रोताओं को, आज हम किस पेय की चर्चा करने जा रहे हैं?
2: सबसे पहले मैं

0: कहना चाहूंगी कि पेयों से जुड़ी सामाजिक परंपराएं मात्र आवभगत से जुड़ी नहीं हुई हैं, लेकिन ये सामाजिक ताने बाने और सौहार्द को भी मजबूत बनाने का काम करती हैं। आज हम चर्चा करेंगे कोको पेय के बारे में। पर अजीत जी, ये तो बताइए श्रोताओं को कि कोको है क्या?
1: जी विमलेश जी, बताता हूँ। कोको एक पेड़ है जिसके फल को भी कोको कहते हैं।
0: जी,
1: दुनिया में चाय और कॉफी के बाद जो सबसे लोकप्रिय पेय है वो है कोको। ये सिर्फ एक पेय ही नहीं है, इससे चॉकलेट, मिठाइयाँ और कई प्रकार के सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाते हैं।
0: जी,
1: वैज्ञानिक भाषा में इसे काकाओ भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में अर्थ है देवताओं का भोजन। विमलेश जी, अब इस जानकारी को आप आगे बढ़ाइए।
0: श्रोताओं, कोको आर्द्र और गर्म जगहों पर उगता है। ब्राजील और आइवरी कोस्ट इसके सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में भी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में उगाया जाता है। श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से कि कोको का फल कैसा होता है।
1: तो श्रोताओं, कोको के फल के बारे आपको बताना चाहता हूँ कि कोको पेड़ पर बड़े रंगीन फल लगते हैं, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं।
0: जी,
1: किस्मों के अनुसार कच्चा फल हरा, हल्का पीला या बैंगनी होता है। यही पकने पर गहरा पीला हो जाता है
0: जी
1: या नारंगी या लाल भी हो सकता है, किस्मों और स्थान के अनुसार। इसका स्वाद प्रायः आम और लीची जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं। इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी,
1: फिर क्या होता है?
0: फिर ये फल तोड़ा जाता है, बीज निकाले जाते हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में भूनकर पीसा जाता है। इसे कोको पाउडर कहते हैं। इसका स्वाद प्रायः किसी मीठे फल जैसा होता है। इसके हर फल में लगभग 20 से लेकर 60 तक बीज हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कड़वे होते हैं।
1: इन्हीं बीजों से कोको पेय या चॉकलेट भी बनाए जाते हैं।
0: जी
1: तो श्रोताओं, ये तो हुई कोको की जानकारी। इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की पेय पदार्थों की परंपरा की। इतिहास बताता है कि प्राचीन मध्य अमेरिका में माया एक बेहद विकसित सभ्यता थी।
0: इस सभ्यता में कोको को बहुत मूल्यवान समझा जाता था और लोग इसका इस्तेमाल मुद्रा की तरह भी करते थे। एक प्रकार से कोको के बीज वस्तु विनिमय प्रणाली का आधार थे। प्राचीन सभ्यता में कोको पेय सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का हिस्सा रहा है।
1: जी विमलेश जी, एक बात और बता दूं कि प्राचीन सभ्यताओं में विवाह, सामुदायिक सभाओं, राजा द्वारा की गई दावतों में कोको पेय का होना बेहद अनिवार्य माना जाता था।
0: जी
1: जनजातीय युद्धों में जाने से पहले कोको पेय विशेष रूप से जड़ी बूटियों और मसालों को मिलाकर परोसा जाता था। युद्धों में संधि या शांति वार्ता के अवसरों पर दोनों पक्षों को कोको पेय परोसा जाता था।
0: इसे शक्तिवर्धक पेय माना जाता था। आज भी मेक्सिको, स्पेन और इटली में कोको पेय का बहुत अधिक चलन है। पश्चिम अफ्रीका में कोको की खेती बड़े पैमाने पर होती है। आज भी कोको की फसल कटाई के अवसर को सामाजिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि हमारे देश भारत में भी फसलों की कटाई का समय त्योहारों के रूप में मनाया जाता है।
1: जी श्रोताओं, काकाओ की उत्पत्ति का मूल स्थान वैसे तो दक्षिण अमेरिका है, लेकिन जब यूरोपीय यात्री जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस और हेरनोन कॉर्ट्स अमेरिका पहुंचे, तब कोको यूरोप पहुंचा। वहां चीनी और दूध मिलाकर इसका नया रूप विकसित हुआ, जिससे आज की हॉट चॉकलेट और चॉकलेट संस्कृति विकसित हुई, जो पूरी दुनिया में मित्रता का प्रतीक बन चुकी है।
0: कोको पेय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन पेय संस्कृति मानी जाती है। आज भी मेक्सिको, ग्वाटेमाला और लगभग सभी दक्षिणी अमेरिकी देशों में पारंपरिक कोको पेय सामाजिक सद्भाव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। आज भी विशेष अवसरों पर जगह जगह कोको पेय समारोह आयोजित किए जाते हैं और लोगों को आमंत्रित किया जाता है।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी कोको और कोको पेय संस्कृति पर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
0: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कोको या ककाओ की पैदावार सबसे अधिक किस देश में होती है? श्रोताओ, आप भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।
0: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में दुनिया के प्रसिद्ध शिक्षाविद और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के शैक्षिक दर्शन को विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए और कैसी शिक्षण विधियाँ उनके लिए अनुकूल हैं।
2: महर्षि अरविंद, जिन्हें अरविंदो के नाम से भी पुकारा जाता है, एक महान दार्शनिक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी दार्शनिक मान्यताओं को पूरी दुनिया में लोग गंभीरता से लेते हैं। प्रस्तुत है श्री अरविंद का जीवन और उनका शैक्षिक दर्शन।
3: श्री अरविंद का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष चाहते थे कि अरविंद की शिक्षा दीक्षा अंग्रेजी में हो और उनका लालन पालन पाश्चात्य संस्कृति में हो। अरविंद इंग्लैंड गए और उन्होंने ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच एवं अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद 1893 के प्रारंभ में वो भारत वापस आए। यहां बड़ौदा स्टेट की प्रशासकीय एवं शैक्षिक सेवा में काम किया और वहीं के एक कॉलेज में प्राध्यापक हो गए। इस बीच उन्होंने धर्म, इतिहास, राजनीति, साहित्य एवं संस्कृति का अध्ययन किया। उसके बाद श्री अरविंद ने भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा की एक नई परिकल्पना प्रस्तुत की।

1914 में मीरा रिशार नामक फ्रांसीसी महिला पांडिचेरी आई और वो श्री अरविंद की आध्यात्मिक साधना में सहभागी बनी। बाद में 1920 में स्थायी रूप से भारत में बसकर उन्होंने काम करना शुरू किया। 1926 में उन्होंने श्री अरविंद के पांडिचेरी स्थित आश्रम की स्थापना की और उसके अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का संयोजन किया। उनकी निष्ठा एवं सेवा भावना से प्रभावित होकर लोग उन्हें माताजी कहने लगे। पांच दिसंबर 1950 को श्री अरविंद ने समाधि ले ली और उसके बाद माताजी ने आश्रम का पूरा कार्यभार संभाल लिया। मनुष्य के बारे में श्री अरविंद की जो सोच थी उसे माताजी ठोस आकार देना चाहती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1943 में श्री अरविंद अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र की स्थापना पांडिचेरी में की। ये केंद्र शिक्षा जगत में शोध के संस्थान के रूप में आज भी कार्यरत है।

एक दिन राम कृपाल नाम का एक शोध छात्र पांडिचेरी के शिक्षा केंद्र में आता है। वहां उसके ठहरने एवं खाने की पूरी व्यवस्था की जाती है। शोध कार्य में उसको दिशा निर्देश देने के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक श्री सुबोध को राम कृपाल के साथ लगा दिया जाता है। शोध छात्र राम कृपाल आश्रम की व्यवस्था एवं वातावरण से बहुत प्रभावित हो जाता है।

0: आहा, वाकई यहाँ की सुबह भी कितनी मनोहर है। इन दो चार दिनों में ही मुझे यहाँ की हर चीज से लगाव हो गया है।
1: यही तो हमारा उद्देश्य है। हम सब एक ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अमित स्मृतियां लेकर वापस जाए।
0: सुबोध जी, अब तक तो हमने यहाँ के सभी विभागों, शिक्षा के तौर तरीके और व्यवस्था के बारे में काफी कुछ जान लिया है, पर अभी असली काम बाकी है।
1: असली काम? वो क्या है भला राम कृपाल?
0: यही कि मैं जानना चाहता हूँ कि श्री अरविंद का शैक्षिक दर्शन वास्तव में क्या है।
1: राम कृपाल
0: जी,
1: इसे श्री अरविंद का व्यावहारिक दृष्टिकोण ही कहा जाएगा कि उन्होंने अपने शैक्षिक दर्शन में हर पहलू पर ध्यान दिया। वो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, चाहे छात्रों का मनोविज्ञान हो, या फिर शिक्षकों का अपना दायित्व।
0: हाँ,
1: मैं 1945 के आसपास श्री अरविंद के संपर्क में आया।
0: जी,
1: उस समय मैं बहुत छोटा था, यही कोई 14 साल की उम्र रही होगी मेरी।
0: अच्छा,
1: तब ये विद्यालय ऐसा नहीं था, बस छोटा सा आश्रम हुआ करता था। उस समय अंग्रेजों का शासन था और भारतीय छात्र अधिकतर पश्चिमी मूल्यों पर आधारित अंग्रेजी शिक्षा पाते थे। श्री अरविंद के पिता ने उन्हें भी उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेजा।
0: जी,
1: शिक्षा पूरी कर वो अपने देश लौटे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए। बाद में 1908 में वो जेल भी गए। इसके बाद उन्होंने प्रचलित शिक्षा प्रणाली में सुधार का लक्ष्य अपनाया और देश के सामने एक मुक्त, स्वदेशी और उद्देश्यपूर्ण शिक्षा की विचारधारा रखी।
0: वो क्या था सुबोध जी?
1: श्री अरविंद कहा करते थे, जो शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित है, वो शिक्षा शिक्षा नहीं है। ज्ञान तो मनुष्य के भीतर ही है, उसे सिर्फ शिक्षा के द्वारा सामने लाया जाता है।
0: जी,
1: बच्चों का ध्यान उनके अपने ज्ञान के साधनों की ओर खींचना चाहिए। हम जबरदस्ती में कुछ नहीं सिखा सकते, हमें तो सिर्फ उसकी बुद्धि को प्रशिक्षित करना होता है।
0: जी,
1: विद्यार्थी को उसके अपने वातावरण में ही विकसित करना चाहिए, अपने राष्ट्र, समाज और समय के अनुकूल। इसीलिए शिक्षा भी मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तथ्यों की जानकारी देना, डिग्रियां बांट देना ही शिक्षा नहीं, उसे ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वो पूर्ण मानव बन सके। अपनी पसंद का विषय चुने और मंजिल भी खुद तय करे। जिस तरह पशु से मानव का विकास हुआ है, उसी तरह अब मानव से अति मानव का विकास होना है।
0: प्राचीन भारतीय शिक्षा के बारे में वो क्या सोचते थे?
1: मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री अरविंद ने प्राचीन भारतीय शिक्षा की बड़ी प्रशंसा की थी।
0: जी,
1: वो इसे उपयोगी मानते थे, पर पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा को उन्होंने पूरी तरह नकारा नहीं।
0: मैं कुछ समझा नहीं सुबोध जी।
1: सुनो रामकृपाल, बात यह है कि श्री अरविंद ने एक मिलीजुली शिक्षा पद्धति की परिकल्पना की थी।
0: जी,
1: जिसमें समय के साथ जुड़ने वाले विषय भी शामिल हों। श्री अरविंद प्राचीन समय में ऋषियों द्वारा अपनाए गए कई शैक्षिक प्रयोगों के प्रशंसक भी थे। इनमें प्रमुख थी गुरु शिष्य परंपरा और ब्रह्मचर्य का पालन।
0: पर आज के जमाने में गुरु शिष्य परंपरा?
1: हाँ, क्यों नहीं भाई, इस आश्रम में जहाँ बैठे हैं,
0: हाँ?
1: पूरी तरह उसी परंपरा का पालन हो रहा है।
0: और ब्रह्मचर्य?
1: राम कृपाल
0: जी,
1: ब्रह्मचर्य के पालन से विद्यार्थी का मन और शरीर साफ होता है और उसमें शिक्षा को लेकर एकाग्रता आती है।
0: जी,
1: वो ठीक कहते थे कि प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली की सफलता का रहस्य भारतीय शैक्षिक चिंतन ही था।
0: आज तो उबाऊ होती जा रही है हमारी शिक्षा व्यवस्था, ऊपर से बस्ते का बोझ, अध्यापक का गुस्सा और घर के लिए बच्चे को दिया गया काम। अरे हाँ सुबोध जी, पाठ्यक्रम और शिक्षा की पद्धति के बारे में श्री अरविंद क्या कहते थे?
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के दो तरीके या प्रणालियां हैं।
0: जी,
1: पहली प्रणाली है समकालिक और दूसरी क्रमिक। पहली पद्धति जरा आधुनिक है, जिसमें बहुत से विषयों की थोड़ी थोड़ी पढ़ाई एक ही समय में की जाती है।
0: जी हाँ,
1: पर इसका नतीजा ये होता है कि जिस विषय का पूरा ज्ञान एक साल में हो सकता है, वैसा 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाता। जबकि दूसरी यानी क्रमिक प्रणाली ज्यादा अच्छी है, जो प्राचीन समय में लागू थी। इसमें एक दो विषयों की शिक्षा गहराई से पाने के बाद ही बाकी विषय छुए जाते थे। पाठ्यक्रम तय करते वक्त अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो अच्छा होगा।
0: बिल्कुल ठीक।
1: वास्तव में श्री अरविंद चाहते थे कि शिक्षा का कार्य लचीलेपन के साथ हो, ना कि बनावटी या कठिन। वो इससे भी इनकार करते थे कि एक ही विषय ज्यादा पढ़ने से छात्र की दिलचस्पी कम हो जाती है। शायद इसीलिए वो बच्चे की रुचि पहले ही समझकर शिक्षा देने को ठीक मानते थे।
0: जी, अब आप ये बताइए कि श्री अरविंद ने अध्यापकों के कर्तव्य के बारे में क्या कहा?
1: असल बात तो ये है कि उनका शैक्षिक दर्शन अध्यापकों पर ही केंद्रित है। जैसा कि मैंने बताया, शिक्षा बालक की मानसिक क्षमता और वातावरण के अनुरूप ही दी जानी चाहिए।
0: जी,
1: अब सवाल ये है कि शिक्षक ऐसा क्या करे और क्या न करे कि शिक्षा के नतीजे अच्छे आए। श्री अरविंद के मुताबिक हर व्यक्ति में दिव्यता का अंश है, उसकी अपने कुछ शारीरिक और मानसिक खूबियां हैं। बस इन्हें खोजना और प्रयोग में लाने लायक बनाना ही शिक्षक की पहली जिम्मेदारी है। अध्यापक सिखाने वाला ना होकर सहायक और मित्र हो। वो बच्चे में सभी 6 इंद्रियों के ठीक उपयोग की क्षमता विकसित करे।
0: 6 इंद्रियों में? भला ये कैसे हो सकता है, हमारी तो 5 ही इंद्रियां हैं।
1: दरअसल छठी इंद्री से श्री अरविंद का तात्पर्य है बच्चे का मानस। ये 5ों इंद्रियों दृश्य, श्रव्य, ध्यान, स्वाद, स्पर्श के रूप में वस्तुओं को ग्रहण कर उन्हें विचार संवेदना के रूप में परिणत करता है।
0: जी,
1: श्री अरविंद के अनुसार शिक्षक का काम सुझाव देना है, कुछ थोपना या लादना नहीं। वो तो छात्र को बस ये बताए कि उसमें कौन कौन सी दक्षताएं छिपी हुई हैं और इसे बाहर लाने के लिए वो किस तरह का प्रयास करे। शिक्षक को मूर्ति निर्माता की तरह समझना गलत है, बल्कि उसे तो एक ना दिखाई देने वाली चीज अर्थात मन से संबंध बनाना होता है।
0: जी हाँ,
1: उनके शिक्षा सिद्धांत का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि वो विद्यार्थी के संपूर्ण विकास पर जोर देते थे। यानी शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आंतरिक विकास हो सके।
0: जी बिल्कुल।
1: श्री अरविंद के एकीकृत शिक्षा यानी पूर्ण शिक्षा के सिद्धांत में वो सारी बातें शामिल हैं जिसकी ठीक ठीक व्याख्या माताजी करती हैं, जिन्होंने इस पद्धति को व्यावहारिक रूप देने में अपना सारा जीवन लगा दिया।

0: माता जी ने पांडिचेरी के आश्रम में भी श्री अरविंद के विचारों को व्यावहारिक रूप दिया। श्री अरविंद की शिक्षा की जो समग्र दृष्टि थी उसको ठोस व्यावहारिक धरातल पर लाने का काम माताजी ने किया। माताजी ने एक नई दुनिया, नई मानवता, नया समाज और नई चेतना के निर्माण के श्री अरविंद के सपने को साकार किया। इसका आदर्श पूर्ण शिक्षा है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपनी आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए सम्मिलित रूप से प्रयास करता है। श्री अरविंद आश्रम में आध्यात्मिक मूल्यों से अनुप्राणित मनुष्य के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त वातावरण है। इसका लक्ष्य है पूर्ण शिक्षा के द्वारा मानवीय प्रेम और विश्व बंधुत्व का प्रसार। यहाँ किसी भी जाति, भाषा, धर्म या क्षेत्र के लोग प्रवेश ले सकते हैं। इसके अलावा देश के विभिन्न भागों में श्री अरविंद के शैक्षिक दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संस्थाएं कार्य कर रही हैं, परंतु अभी भी काफी कुछ करना शेष है। शैक्षिक दर्शन के आधार पर संस्थाएं काम कर रही हैं। वास्तव में श्री अरविंद के सिद्धांतों के वास्तविक प्रचार प्रसार के लिए अभी काफी कुछ करना शेष है। उधर शोध छात्र राम कृपाल ने श्री अरविंद के बारे में पांडिचेरी से सारी जानकारियां जुटाने के बाद लौटने की तैयारी की और वहां से एक संकल्प के साथ चल पड़ा।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्री अरविंदो का शैक्षिक दर्शन।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं कुछ मजेदार गुदगुदाने वाले और शिक्षा से भरपूर कुछ शिशु गीत।
2: इन गीतों के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य, पर्यावरण और एकता का संदेश दिया गया है और संदेश दिया गया है कि अपने स्वास्थ्य और पर्यावरण का ध्यान रखना हम सबकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है।

सैर तो हो गई इस गीत में, अब हम मिलकर इसे गाएंगे। पहले मैं गीत की एक पंक्ति बोलूंगी, फिर आप सब मिलकर इसे बोलिए। पर एक बात है, सब जोर से गाएंगे और हाँ मिलकर भी।

0: मेले के थे ऐसे ठाट, झूले ठेले सुंदर हाट। तुम्हारे घर के पास मेला लगे तो जरूर जाना। और हाँ, अकेले नहीं, किसी के साथ। और वहां से आकर अपनी मेले की सैर के बारे में अपने साथियों को भी बताना कि क्या देखा वहां।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम शिशु गीत, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रस्तुत प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर। अब समय हो चला है हिंदी समाचारों का, जिन्हें हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे, और उसके बाद 1:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने चंडीगढ़ केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा में शासन, डिजिटल, सार्वजनिक ढांचे और साझेदारी सहित प्रमुख मुद्दों के समुचित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं। किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है, और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा, पोषण और समृद्धि के रीढ़ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहलें न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं, बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
6: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
5: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है। सरकार ने 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को तर्कसंगत और सरल बनाकर 4 व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित किया है। इसका उद्देश्य अनुपालन को सरल बनाना, श्रमिकों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना तथा व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देना है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कल स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही।

0: सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा में भारत में निर्मित पहले एयरबेस C-295 के प्रथम परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि एरोस्पेस विनिर्माण देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी अभियंताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.4% की बढ़त दर्ज हुई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 74,301 और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 23,297 पर था। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 20 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से अधिक लोगों का गरीबी से बाहर आना सरकार की सही नीतियों और सही दिशा का प्रमाण है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना अब देश के हर नागरिक का संकल्प बन चुका है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर हासिल की है।
2: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए ओलंपिक के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में NDA सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ी लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और भारत तेजी से खेलों का प्रमुख वैश्विक केंद्र बनता जा रहा है। उन्होंने ओलंपिक की तैयारियों को विकसित भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताया, साथ ही विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में खेल जगत में भारत की पहचान और मजबूत होगी।
2: भारत दुनिया की बिगेस्ट स्पोर्ट लीग की धरती बनता जा रहा है। आने वाले सालों में हमारी ये ख्याति और बुलंद होगी। ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियां भी भारत की एस्पिरेशन का ही प्रतिबिंब है। हमें छोटा नहीं सोचना है, हमें लक्ष्य ऊंचे रखने हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा देनी है।
1: हरियाणा में सिरसा के थाना डिंग और राजस्थान पुलिस की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 88 किलो 970 ग्राम अफीम बरामद की है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 4,50,00,000 रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में एक ट्रक चालक को गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने ये जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त हरियाणा के संकल्प को साकार करने की दिशा में हरियाणा पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बरामदगी न केवल बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की खेप को बाजार तक पहुंचने से रोकने में सफल रही है, बल्कि अंतर्राज्यीय नशा तस्करी नेटवर्क को भी गहरा झटका पहुंचाने वाली कार्रवाई है। आयुष विभाग द्वारा जींद के ग्राम पंचायत कौंडल गहलव आमरू में योग जागरण यात्रा निकाली गई। जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर हमीदुल्लाह ने बताया,
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ताल्लुक से हमारे यहाँ तैयारियां चल रही हैं और इस सिलसिले में 8 से 10 तक प्रत्येक गांव में योग जागरण यात्राएं निकाली गई हैं। 11, 12, 13 को हमारे यहाँ प्रशिक्षण शिविर चलेगा, जिसमें ब्लॉक लेवल पर भी प्रोग्राम होंगे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी। इसके अलावा 15 जून को योग मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा 16, 17, 18 में अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारियों सभी के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराया जाएगा।
1: आज हरियाणा में कुछ जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कुरुक्षेत्र में सुबह करीब 3 बजे तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम भी सुहावना बना हुआ है। कुरुक्षेत्र में समाचार लिखे जाने तक हल्के बादल छाए हुए थे। अंबाला में भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक तेज हवा के साथ बारिश होने की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कहीं कहीं जैसे कि कुरुक्षेत्र में तेज आंधी के साथ बारिश हुई है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। कुरुक्षेत्र की अगर बात करें तो समाचार लिखे जाने तक हल्के बादल छाए हुए थे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। और कार्यक्रम के आरंभ में आपने ये गीत सुना मुकेश की आवाज़ में, जिसे हमने लिया था कभी कभी फिल्म से। गीत के बोल लिखे थे साहिर ने और संगीत दिया था खयाम ने। और आइए अब सुनते हैं शोर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है मुकेश, लता मंगेशकर और साथियों ने। संतोष आनंद ने गीत को लिखा है और इसकी धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

और आइए आप सुनती हैं मजबूर फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज़ दी है किशोर कुमार ने, संगीत दिया है आनंद बख्शी ने, और क्षमा कीजिए, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुँचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
5: अभी आपने सुना मुकेश की आवाज़ में संबंध फिल्म का ये गीत रचना प्रदीप की थी और संगीत दिया था OP नैयर ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

एक महल हो सपनों का, इस फिल्म का एक गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था साहिर ने और इसकी धुन तैयार की थी रवि ने। और आइए अब सुनते हैं महालक्ष्मी के स्वर में सुर फिल्म से ये गीत, जिसके बोल लिखे हैं निदा फाजली ने और इसकी धुन तैयार की है MM करीम ने।

0: और ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति फिल्म मेरा नाम जोकर से मुकेश की आवाज़ में, गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।
1: QR कोड

0: मेरा नाम जोकर इस फिल्म का एक गीत भी आपने सुना और इसके साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर।
1: गुड आफ्टरनून, अब समय हो चला है आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision. Chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw says government making efforts to strengthen Akashvani and Doordarshan coverage across border regions. Inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. Another TMC MP, Prakash Chikwaraik, resigns from Rajya Sabha. First Maiden India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. Iran announces closure of Strait of Hormuz following US strikes. And sports fans across the globe await month-long football spectacle as FIFA World Cup kicks off in Mexico City tonight. Prime Minister Narendra Modi has said that despite the world passing through a period of uncertainty and instability, India continues to advance on its growth trajectory with confidence and determination. Chairing the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog at Rashtrapati Bhavan in New Delhi, Mr. Modi said, as India progresses towards achieving the vision of Vikasit Bharat, the collective responsibility of the centre and states becomes even greater. The Prime Minister highlighted that creating the right ecosystem for the country's youth through quality education, demand-driven skilling and employment opportunities must remain a priority. He said India has signed free trade agreements with many countries to create new opportunities for growth and exports. The Prime Minister said women-led development is a cornerstone of the vision of Vikasit Bharat. He said, from farming and startups to science and innovation, Nari Shakti is contributing across the domains. The meeting is deliberating on measures to promote entrepreneurship, enhance skilling, and create sustainable employment opportunities across the country. The theme of this year's meeting is Inclusive Human Development for Vikasit Bharat at 2047. The meeting has brought together chief ministers and lieutenant governors from across the country to discuss the inclusive human development framework anchored around four core pillars. These are foundational human capital and future-ready skills, productive employment, entrepreneurship and decentralized growth, health, nutrition and well-being, and equity and dignity for all. Union Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw today virtually inaugurated a 20 kilowatt FM transmitter at Ramgarh in Rajasthan's Jaisalmer district during a program held at the Akashvani premises in Jaipur. With this addition, the total number of FM transmitters in the state has risen to 39. The new transmitter will provide radio coverage within an 80-kilometer radius in border areas, providing people access to a wide range of information, educational content, and entertainment programs. Addressing the gathering, Union Minister Vaishnaw said, special arrangements are being developed to strengthen Akashvani and Doordarshan coverage across the country's border regions from Kashmir to Kutch, with new FM transmitters and broadcasting infrastructure being set up. The minister said the plan is to provide comprehensive coverage across the entire border belt of the country, stretching all the way from Kashmir.
2: Today, our new 20 kilowatt FM transmitter was launched in Jaisalmer, which will cover not only the district but also surrounding regions. About an 80 kilometer radius and nearly 20,000 square kilometers. This is a significant step forward.
3: 20,000 square kilometer ka kshetrafal isse cover hoga.
1: Mr. Vaishnav called for transforming the overall framework of Prasar Bharati, stressing the need for a digital-first and hyper-local approach to keep radio relevant in the technology era. He also underlined the importance of connecting local artists and artisans with broadcasting platforms. The event was attended by Jaipur MP Manju Sharma, Prasar Bharati Chairman Prasoon Joshi and Akashwani Director General Rajiv Kumar Jain, among other senior officials. The government has waived excise duty on certain variants of ethanol-blended petrol. In a notification, the Union Finance Ministry announced that petrol blended with 22%, 25%, 27% and 30% ethanol have been exempted from central excise duty. The ministry said all four fuel grades will now attract a nil rate of excise duty. The move is aimed at strengthening India's ethanol blending program, which seeks to reduce dependence on imported crude oil, cut carbon emissions and enhance demand for domestically produced ethanol. The centre has issued an advisory about the growing threat of cyber criminals using artificial intelligence to bypass security systems and target financial infrastructure. According to the advisory issued by the Indian Cyber Crime Coordination Centre under the Ministry of Home Affairs, cyber criminals are increasingly using AI to create realistic deepfake videos and synthetic identities. These technologies are being exploited to bypass facial authentication, liveness verification, video KYC processes, account recovery systems, and unauthorized access to financial and digital services. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts, and for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back to the Midday News. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu today expressed happiness over the maiden test flight of the first Made in India Airbus C-295 from Vadodara in Gujarat. In a social media post, Mr. Naidu said this is more than just an aircraft taking to the skies. It also reflects the country's growing capabilities in aerospace manufacturing. The Civil Aviation Minister also congratulated Airbus, Tata Advanced Systems, the Indian Air Force and all the engineers, technicians and workers on the achievement. Trinamool Congress MP Prakash Chek Baraik has resigned as a member of the Rajya Sabha. He has sent his resignation letter to Rajya Sabha Chairman C.P. Radhakrishnan. Earlier, Trinamool Congress leaders and Rajya Sabha members Shukendu Shekhar Rai and Sushmita Dev had resigned from both the Rajya Sabha and the party. Prime Minister Narendra Modi has expressed gratitude to his Singaporean counterpart Lawrence Wong, New Zealand counterpart Christopher Luxon, former Japanese Prime Minister Fumio Kishida and Guyana President Dr. Irfan Ali for their wishes and messages on him becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. In a series of social media posts, Mr. Modi said he looks forward to working closely with his Singaporean counterpart to further comprehensive strategic partnership of both nations and take India-Singapore ties to new heights. Thanking Prime Minister Luxon for the wishes, Mr. Modi said the India-New Zealand Free Trade Agreement marks an important step forward in the partnership of both countries. The Central Bureau of Investigation, CBI, has successfully secured the deportation of Ganesh Balasokale from Thailand to India in connection with a cyber crime fraud case. The deportation was carried out in close coordination with the Ministry of External Affairs, the Ministry of Home Affairs and the Embassy of India in Thailand. According to the CBI, the accused allegedly ran a cyber financial fraud network by recruiting unsuspecting individuals into the scam. Victims were lured with offers of online part-time jobs and persuaded to make monetary deposits as investments. The Enforcement Directorate ED is conducting search operations at five premises in Hyderabad, Telangana, in connection with the alleged transport scam involving the Andhra Pradesh State Beverages Corporation Limited. According to ED officials, the accused persons allegedly caused a wrongful loss of more than 195 crore rupees to the government exchequer while deriving corresponding unlawful gains for themselves and their associates. In a landmark judgment that is set to give more recognition to household work, the Supreme Court today said that homemakers deserve to be recognized as nation builders for their role in shaping families and future generations. The Apex Court ruled that unpaid domestic work must be monetized at a minimum of 30,000 rupees per month while calculating compensation for their deaths in road mishaps. The court said that women who manage households should not be referred to merely as homemakers, as the term undervalues their contribution to society. A bench of justices, Sanjay Karol and N. Koteshwar Singh, emphasized that unpaid domestic work, including caregiving and household management, carries significant economic value. The court noted that such work is essential for the functioning of families and the development of human capital. All three Indian seafarers who were initially reported missing after the tragic incident aboard the commercial vessel Palau-flagged MT Sotobelo have now been confirmed dead. The tanker was hit off the coast of Oman in a suspected U.S. missile strike. In a social media post, Union Minister for Ports, Shipping and Waterways, Sarbanand Sonowal, said bodies of three seafarers have been located and identified. The United States has carried out a second consecutive night of what it described as self-defense strikes against Iranian military infrastructure near the Strait of Hormuz, further escalating tensions in West Asia. Explosions were reported in and around Bandar Abbas and on Keshm Island as the confrontation entered a more dangerous phase. In response, Iran launched missile and drone attacks on several U.S. military facilities across the region, calling them retaliation for the latest American action. Iranian military authorities also declared the Strait of Hormuz closed to commercial shipping and warned that vessels attempting to pass through could be targeted. However, the United States rejected the claim. More from our West Asia correspondent.
3: The military confrontation is now spreading beyond Iran's borders. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps claimed it launched missiles and drone attacks against United States military facilities in Bahrain, Kuwait and Jordan in retaliation for the latest American strikes. Iranian state media reported that 12 ballistic missiles were fired at Jordan's Muwaffaq Salty airbase, with Tehran claiming damage to military facilities and aircraft shelters. However, neither Jordan nor the United States has confirmed those claims. Reports indicate that air defense systems were activated and interceptions were carried out. Kuwait temporarily suspended air traffic as a precaution after reporting hostile air targets in its airspace, while Bahrain issued security alerts and reported interceptions of incoming drones.
1: Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City.
4: This edition of the World Cup will be the biggest in history, with an expansion from 32 to 48 teams. A record 104 matches will be played, with 72 in the group stage and 32 in the knockout rounds across host nations, United States, Canada and Mexico. The three host nations qualified automatically, while 45 teams earned their places through a demanding two-year qualification journey. The competition features 12 groups of four teams each. The top two teams from every group, along with the eight best third place teams, will advance to the round of 32. This expands the knockout stage to 32 teams for the first time in tournament history. The grand final is scheduled for 19th of July, promising a thrilling conclusion to football's greatest celebration. This World Cup is also expected to be one of the most challenging in history, with teams facing demanding conditions across three countries, including long travel distances, varying climates, different altitudes, and shifting time zones. Over the decades, only eight nations have lifted the FIFA World Cup trophy: Brazil, Italy, Germany, Spain, Argentina, England, France and Uruguay, the inaugural champions. Among the most unfortunate sides in World Cup history remain the Netherlands, who have reached three finals but are yet to win the title despite producing generations of world-class talent. From history to high stakes, from legends to new challengers, the stage is set for football's ultimate battle. Shagun Chopra from Sports Desk.
1: And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi stresses collective efforts of centre and states key to realising Vikasit Bharat vision, chairs 11th Governing Council meeting of Niti Aayog in New Delhi. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav inaugurates 20 kilowatt FM transmitter in Rajasthan's Jaisalmer. Centre waives excise duty on certain variants of ethanol blended petrol. First Made in India Airbus C-295 aircraft completes maiden test flight from Vadodara. And with that, we end the midday news.
5: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण उन्होंने नई दिल्ली में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुंच मजबूत करने के प्रयास कर रही है राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा सदस्य पद से इस्तीफा दिया भारत में निर्मित एयरबस C-295 विमान ने वडोदरा में पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच सहयोग संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया जा रहा है इस वर्ष की बैठक का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और उपराज्यपाल भाग ले रहे हैं किसानों का कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसान देश के खाद्य सुरक्षा पोषण और समृद्धि की रीढ़ हैं प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना जैसी पहले न केवल किसानों की आय की रक्षा कर रही हैं बल्कि कृषि को और भी सशक्त बना रही हैं सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जयपुर में आकाशवाणी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन वर्चुअली माध्यम से किया इस कार्यक्रम में जयपुर की सांसद मंजू शर्मा प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे श्री वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सरकार की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला उन्होंने समय के साथ परिवर्तन पर भी बल दिया
6: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचे आकाशवाणी के बारे में हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है अपना खुद का वेव्स OTT है उस प्लेटफॉर्म को यूज करें लोकल आर्ट लोकल संस्कृति लोकल खान पान को लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें आपको पूरा फ्रीडम है जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी पॉलिसी बनाने वाले आप इंप्लीमेंट करने वाले आप
5: श्री वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार और प्रसारण नेटवर्क को मजबूत करने के लिए ये पहल शुरू की गई है।
6: करीब अपने 450 स्टेशन है पूरे प्रदेश में, उसमें से 200 स्टेशनों का काम करीब करीब पूरा होने को आया है। तो ये काम जो कि जन जन को, जैसे श्रद्धे अटल जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बना के गांव गांव तक सड़क पहुंचाई थी, वैसा ही आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी छोटे से छोटे स्टेशन पर भी अच्छा काम करने के लिए दिन रात लगे। बड़े स्टेशनों का काम तो अपनी जगह है, जयपुर में एक तरीके से लोग आते हुए स्टेशन को भी देखेंगे, जैसे हवा महल देखने जाते, वैसे ही ये भी एक टूरिज्म का अच्छा अट्रैक्शन बनेगा और जनता को बहुत बड़ी सुविधाएं होंगी।
5: सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा कि अब इन चारों ईंधन श्रेणियों पर उत्पाद शुल्क शून्य रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के एथेनॉल मिशन कार्यक्रम को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत में निर्मित एयरबस C295 विमान ने गुजरात के वडोदरा से पहली परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने भारत में निर्मित पहले एयरबस C295 के प्रथम सफल परीक्षण उड़ान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि यह एरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को भी दर्शाता है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए एयरबस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम, भारतीय वायुसेना और सभी इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों को बधाई दी। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और बुल्गारिया के संबंध दीर्घकालिक और स्थिर हैं। बुल्गारिया के विदेश मंत्री वेलिस्लावा पेट्रोवा चामोवा से मुलाकात के दौरान श्री जयशंकर ने कहा कि दोनों देश मिलकर भविष्य में संबंधों को बेहतर करने पर कार्य करेंगे।
7: हमारी बातचीत के तीन पहलू थे। पहला, भारत और बुल्गारिया के बीच आपसी सहयोग। दूसरा, भारत और यूरोपीय संघ के बीच साझेदारी। और तीसरा, वैश्विक स्थिरता और विकास के लिए ताकतवर देश किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं।
5: डॉक्टर जयशंकर ने बल देकर कहा कि आर्थिक सुरक्षा और आतंकवाद के बढ़ते खतरे पर भारत का स्पष्ट रुख है।
7: भारत का मानना है कि ये दौर युद्ध का नहीं है और संघर्षों का एकमात्र समाधान बातचीत तथा कूटनीति है। जब बात आर्थिक जोखिमों की आती है तो इससे निपटने का तरीका मजबूत आपूर्ति श्रृंखला और अधिक विविधता है, और ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समुद्री व्यापार में कोई रुकावट न आए। साथ ही आतंकवाद के मामले में दुनिया को शून्य सहिष्णुता की नीति पर स्पष्ट रुख अपनाना होगा।
5: ओमान की खाड़ी में पलाव ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाज एमटी सिटेबोलो पर अमेरिकी सेना के हमले में लापता हुए तीनों भारतीय नाविकों की मौत की पुष्टि हो गई है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि तीनों शव बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री सोनोवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे बचाए गए चालक दल के सदस्यों को तुरंत स्वदेश वापस लाया जाए और मृतकों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए शीघ्र भारत भेजा जाए। अमरीका ने ईरान पर नए सैन्य हमले

0: यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। ये लेटेस्ट अमेरिकन स्ट्राइक्स के रेस्पॉन्स में किया गया रिटेलिएशन है। इरानियन स्टेट मीडिया के मुताबिक जॉर्डन के मुवाफक साल्टी एयरबेस पर 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए और तेहरान का कहना है कि इससे मिलिट्री फैसिलिटीज और एयरक्राफ्ट शेल्टर्स को नुकसान पहुंचा है, लेकिन जॉर्डन या यूनाइटेड स्टेट्स ने क्लेम्स की अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी है। कुवैत ने टेम्पररी तौर पर एयर ट्रैफिक सस्पेंड कर दिया। बहरीन से आए रिपोर्ट के मुताबिक इंटरसेप्शन के बाद डॉन डेब्री रेसिडेंशियल एरियाज में गिर गया, जिसे माइनर डैमेज और चोट लगने की रिपोर्ट्स हैं। मल्टीपल कंट्रीज में मिलिट्री एक्टिविटी रिपोर्ट होने और की शिपिंग लाइन्स पर प्रेशर बढ़ने के साथ ये फियर्स और बढ़ रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट एक और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस फेज में एंटर कर सकता है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चेक बराइक ने राज्यसभा के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राज्यसभा के सभापति सीपी राधा कृष्णन को भेज दिया है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता और राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने राज्यसभा पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। सरकार ने साइबर अपराधियों द्वारा सुरक्षा प्रणालियों और वित्तीय बुनियादी ढांचे पर बढ़ते खतरे को लेकर चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार साइबर अपराधी वित्तीय और व्यक्तिगत धोखाधड़ी के लिए एआई द्वारा डीप फेक वीडियो का तेजी से दुरुपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर साइबर अपराधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जॉब पोर्टल, डेटिंग प्लेटफॉर्म या फोन कॉल के माध्यम से संपर्क करते हैं। सरकार ने फिनटेक कंपनियों सहित वित्तीय संस्थानों को डीप फेक का पता लगाने के तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रणालियों को बेहतर बनाने की सलाह दी है। को सलाह दी गई है कि वे अपने बायोमेट्रिक डेटा को सुरक्षित रखें, संदिग्ध लॉगिन प्रयासों के प्रति सतर्क रहें और वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ईमेल या एसएमएस सूचनाओं की नियमित रूप से निगरानी करें। यह भी आग्रह किया गया है कि वे किसी भी संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की सूचना राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से तुरंत दें। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: सरकार ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान सीमा के पास भारतीय वायुसेना का विमान दुर्घटनाग्रस्त होने का दावा करने वाला वीडियो पूरी तरह से भ्रामक है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है और वीडियो को पाकिस्तानी दुष्प्रचार खातों द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे सीमा पार से चलाए जा रहे दुष्प्रचार अभियानों से सावधान रहें। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से मेक्सिको सिटी में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मेक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समयानुसार ये मैच रात 12:30 बजे से शुरू होगा।
3: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। पहले के संस्करणों में 32 टीम शामिल होती थी। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। ये विश्व कप इतिहास के सबसे चुनौतीपूर्ण विश्व कप में से एक होने की भी संभावना है, जिसमें टीमों को तीन देशों में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, जिनमें लंबी यात्राएं, बदलती जलवायु और बदलते समय क्षेत्र शामिल हैं। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। अन्य 45 टीमों ने 2 वर्ष लंबे क्वालिफाइंग अभियान के जरिए अपनी जगह बनाई है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष 2 टीम सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी भाग में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज और कल तेज हवाओं के साथ गरज और ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन तक उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में तेज बारिश होने की आशंका है, जबकि केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में दिन के दौरान गरज के साथ आंधी और ओलावृष्टि की संभावना है। 13 तारीख तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इस बीच दिन के दौरान पश्चिमी राजस्थान में लू की स्थिति बनी रही।

0: घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। ताज़ा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 116 अंक बढ़कर 74,099 और निफ्टी 18 अंकों के उछाल के साथ 23,233 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण। उन्होंने आज नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासित परिषद बैठक की अध्यक्षता की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और दूरदर्शन की पहुँच मजबूत करने के प्रयास कर रही है। राजस्थान के जैसलमेर में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ किया। और फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आज रात मेक्सिको सिटी में शुभारंभ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेत खलिहान।

0: खेत कल्याण कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई ने बलजीत भाई की राम राम। भाई देखो, मौसम जो है कल से थोड़ा परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है, कल के परसों से परिवर्तनशील दिखाई दे रहा है। हालांकि गर्मी नहीं है, तापमान बढ़ता जा है, तापमान बतेरा ऊंचा है, लेकिन कहीं कहीं भाई बादलवाई है, तेज हवाएं हैं, या बारिश हुई है, या कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी है, तो परिवर्तनशील भाई दो एक दिन मौसम और भी रहेगा। तो इसमें जो हमने अपने काम दाम ठा रखे हैं और ठा के रखे भाई भाई, ये जो महीने शुरुआत होगी जुलाई के महीने तक, तो बहुत से काम की शुरुआत हो जाएगी। जून में भी बहुत से काम की शुरुआत हो रही है, खासतौर पे बात करें पशुओं के लिए चारे की, तो ज्वार की काश्त है भाई जी, पानीपात के अपने दौरे साधन हैं, मकाम ले सके हैं, या और भाई जो अपनी स्वीट सुडान घास है, इस तरह के जो है सारे के सारे काम, बाकी जो है जित पानीपात के साधन भरपूर मात्रा में हैं, बढ़िया साधन अपने दौरे, नहरी पानी भी है, ट्यूबवेल भी भरपूर मात्रा में पानी है, और अपने खेत में जो है जो जल स्तर है वो भी ऊपर है, यानी कि चोई ऊंचे ऊपर हैं। तो इन इलाके में बात करा हम देखो धान की फसल की, वो तो धान की फसल की सिफारिश उड़े करी जा है जित अपने दौरे पानीपात के काफ़ी मात्रा में साधन हो, पानी मोकड़ा हो अपने दौरे, तो उड़ा में धान की फसल का विचार करें। बाकी अगर पानीपात के साधन अपने दौरे कम हैं, तो फिर हमने धान की बजाय जो दूसरी फसलें हैं जिनमें कम पानी की जरूरत पड़े है, वह फसल हम लेने की सोचें, जिसके कारण जो है फसल चक्र भी हो जाएगा। भाई मोटे अनाज हैं, बाजरा है, और बहुत सी जो दलहनी फसलें हैं उनकी अरहर की बात करें, या और भी बहुत से विकल्प आ जाए अपने दौरे, तो उसमें फसल चक्र भी हो जाएगा, और जो अपनी ज़मीन की सेहत भी सुधरेगी, पानी भी जो है कम लगेगा, पानी की भी बचत हो जाएगी, और जो है जो हमें अनावश्यक रूप से जो खर्च कर रहे हैं, क्योंकि धान की फसल थोड़ा हा भाई ज़्यादा खाद पानी मांगे है, तो उसमें खर्चे भी अपने ज़्यादा हो जाए हैं, और फिर बाद में जो है इसमें जो है फिर बाद की जो बात आवा है, तो पानी अगर कम रह जाए हैं, पानी पूरे हम नहीं पुगा पाते, तो फिर पद से चाल कर उसमें रोग है या बीमारी है, वो आने की भी संभावना बन जाए है। तो इस कारण वही फसल ले जिनका हम पानी सही तरीके से पुगा दें। हाँ, जित सेम की समस्या है भाई, चोई ऊपर हैं उड़े, तो हमारी मजबूरी हो जाए कि हम धान की फसल लेनी पड़े है, बाकी तो दूसरे विकल्प बतेरे हैं जो हम कम कर सके हैं। बाकी रही बात है कपास फसल की, जो बाल साल खड़ी है, तो उसमें भाई पानी देखो कुछ तो राम जी जो है बूंदाबांदी कर रहे हैं या दे दें पानी, या फिर जितना हुई है तो उड़े पानी का देखो ये समय है, क्योंकि ये तो तकरीबन सारे के कपास की फसल में सिंचाई की हमने व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन सिंचाई तो पहले हम निराई गुड़ाई भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें खरपतवार जमा होना लें, क्योंकि खरपतवार अगर जमा हो लेंगे हैं तो फिर दिक्कत आओगी, क्योंकि जो खाद की मात्रा दी ओड़ है वह सारी की सारी खरपतवार आग लग जाएगी, अपनी फसल कमज़ोर रह जाएगी, आगे चाल के खरपतवार अगर उसमें बढ़ोतरी लेंगे तो फिर जो है कीड़े हैं, बीमारी हैं, वह भी उसमें जो है छेद करेंगे। और खरपतवार की बात आओ तो चाहे अपने द्वारा कोई सी भी फसल हो, चाहे वो अपनी साग सब्जी वाली फसल हो, चाहे चारे वाली फसल हो, चारे वाली में फिर भी चाल जाए, लेकिन जो साग सब्जी वाली है, दलहनी वाली है, या और कोई सी अपनी जो फसल है, तो उसमें खरपतवार का हमने निपटान करना ज़रूरी हो जाए। यहाँ तक कि जो अपनी गन्ने की फसल है उसमें भी हमने खरपतवार छेद करे हैं, तो वह निराई गुड़ाई और गन्ने पर बात आई कि भाई गन्ने में भी अपना जो है निराई गुड़ाई करना ये बहुत ज़रूरी है, सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर जो है पानी लगाने के बाद जब खेत बदतर आ जाए तो वह उसमें यूरिया जो है खाद वो भी हमने डालना है, क्योंकि जून के महीने में हम खाद की मात्रा दिया करें। तो ये काम सारे हमने करने हैं, और वो काम भी इस तरह करने हैं कि भाई देखो जित जित अपना बारिश ना हुई है, तापमान बहुत ऊँचा है, बहुत गर्मी पड़े है, तो अपना थोड़ा एहतियात बरत करें जब खेत में काम करें, चाहे हम कोई सा भी काम करने लग रहे हैं, और इससे थोड़ा बच के जब जाकर हमने काम करना है, काम तो ज़रूरी है, लेकिन धूप से और तापमान से भी हमने अपने शरीर को अपने जो है बचाना है। बाकी आज का जो जिक्र है अपना भिंडी फसल है, सब्जी फसल में उसकी देखभाल का है, लेकिन उससे पहले भाइयों का मनोरंजन करवाओगे, भाइयों को रागनी सुनवाओगे, गायक कलाकार होंगे सुखबीर सिंह और उनके साथी।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात, तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाए समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
1: RBI कहता है
0: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: तो भाई भैया ने रागनी सुनी और गायक कलाकार थे सुखबीर सिंह और उनके साथी, इनकी गाई ओड़े भैया ने एक रागनी और भी सुनवाऊंगे, लेकिन जो हमने जिक्र किया था कि भाई भिंडी फसल की देखभाल, भाई सब्जी फसल में भिंडी फसल देखो बाज़ार में भी आ रही है और भाई नई की भी तैयारी हमने करनी है, तो जो बाज़ार में आ रही है उस पर और हाल साल में जो अपनी खेत में खड़ी है तो नरम फलियाँ तोड़कर नियमित रूप से बाज़ार में भेजें। फली तोड़ में बड़ी सावधानी इसकी बरतनी है क्योंकि हमने देख लेना है कि भाई किसी कचिया फली हैं या थोड़ी भी पक जाए तो फिर दिक्कत आओ, उसके भाव हमने अच्छे नहीं मिलते, सब्जी भी उसकी बढ़िया नहीं बन पाओगी। तो जो नरम फली हैं उन्हें अपना देखते रहें हाथ लगा के और देखें कि भाई हाँ कम जो अपना कच्ची फली है उसने तोड़ के बाज़ार में भेजें, और तापमान ऐसा है कि भाई इसमें सिंचाई की तो हमने ज़रूरत पड़े ही पड़े हैं, तो अपने खेत की नमी का हिसाब देख कर और अपनी फसल का देख के अपने खेत में नियमित रूप से जो है सिंचाई कर दे रहे हैं, खास तौर पर जो सब्जी फसलें हैं या तो सवेरे के टाइम पर सिंचाई या फिर सांझ के टाइम पर हमने सिंचाई उसमें करनी है। कुछ फसलें और कुछ खेत में अपने में ऐसा हो जाए कि हरे तेले और चित्तीदार सुंडी का प्रकोप सा बन जाए आकर है, तो इसमें जो अपना दवाई का हमने प्रयोग करना है, लेकिन दवाई का प्रयोग करने से पहले जितनी भी अपने दौरे उसमें तोड़ने लायक फलियाँ हैं उन्हें सारियाँ तोड़ दें और फिर कम से कम भी भाई 10-15 दिन तक फली ना तोड़ो उसमें। और खरीफ की जो फसल है इसके लिए भी हमने खेत की तैयारी करनी है, एक एकड़ खेत में हमने 10-11 जिसी भी अपने दौरे चाहे 5-7 क्यों ना हो लेकिन देसी खाद हो, अपने दौरे तैयार खाद हो, चाहे उसमें 5-7 गाड़ी भरें या 8-10 भरें, लेकिन कच्ची खाद ना हो, तैयार खाद, वह हमने अपना गोबर की खाद डाल के खेत में जुताई कर देनी है। बाकी उसमें जो रासायनिक खादा की बात करें तो भाई 12 किलोग्राम इसमें हमने यानी कि नाइट्रोजन, 25 किलो यूरिया, यानी कि 12 किलो शुद्ध नाइट्रोजन तो 25 किलो यूरिया हो जाएगा, और इसमें 150 किलो सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से हमने यू इसमें डालना है। पोटास खाद मिट्टी की जांच के आधार पर हमने देना है, अगर खेत में पोटास की कमी दिखाई दे तो पोटास की खाद हमने उसमें देनी है ज़रूर। खेत में कैरियम बांट लें और भिंडी का जो विषाणु रोग की जो रोग आ जाकर है भिंडी में विषाणु रोग, उसकी जो रोधी किस्में हैं वह हमने लेनी है, जिसमें कि वर्षा उपहार या फिर हिसार उन्नत है, ये दो किस्म बढ़िया हैं जिनमें यो विषाणु रोग है वो नहीं आन पाता, तो ये किस्म लें, वर्षा उपहार लें या फिर हिसार उन्नत लें, और एक एकड़ के लिए हमने 6 किलोग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। जड़गड़न नामक रोग की रोकथाम करने खातिर बिजाई से पहले हमने बीज उपचार करना है, कैप्टान या फिर बाविस्टिन दवाई 1 ग्राम दवाई प्रति 400 ग्राम बीज के हिसाब से हमने इसमें इसका उपचार करके और फिर बिजाई जो हमने वह कतारम करनी है, यानी कि लाइना में खूडा में बिजाई करनी है, हर खूड तक खूड का फासला हमने 1.5 से 2 फुट का रख कर चलना है, और पौधे तो पौधे की दूरी हमने 30 सेंटीमीटर यानी कि 1 फुट की हमने रख के चलनी है। बाकी न्यू ध्यान रखना है कि भाई अपने दौरे ईब जो हाल साल में फसल खड़ी है उसमें भाई खरपतवार ना होने दें, सिंचाई की कमी ना होने दें, और जो खरपतवार हो जाए तो उसमें दवाइयाँ के ऊपर निर्भर ना रहें, निराई गुड़ाई खुरपी कसोले तो थोड़ा बहुत वो निकाल लें तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि साग सब्जी जितनी भी अपनी खाने वाली फसलें हैं और ये तो इसी हैं कि भाई हर 10-15 दिन हमने उसकी तुड़ाई करनी है और फिर वो बाज़ार में आऊँगी, 5-7 दिन भी बाज़ार में चली जा हैं तुड़ाई करें हैं, तो उसमें अगर हम कीटनाशक दवाइयाँ छिड़काव ना करें तो बहुत बढ़िया रहेगा, जितना उसके हाथ के द्वारा या फिर भाई कोई देसी अपने जो तरीके हैं नीम वाली कोई एकाधी छोटी मोटी को दवाई है उसका प्रयोग कर लें और रासायनिक दवाइयाँ तो अगर बच जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। खास तौर पे खरपतवार मुक्त अपनी फसल में रखेंगे, समय पे बिजाई, समय पे जितना भी जो सिफारिशुदा खाद की मात्रा बताई जा है वह हम अगर दे के चालेंगे अपनी फसल में तो फिर खास तौर पर इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमने कोई रासायनिक दवाई का छिड़काव करना पड़े, क्योंकि खाद्यान्न फसलें हैं उनका जो है गुणवत्ता है वह भी ख़त्म हुआ है और अनावश्यक रूप से खर्चा भी बढ़ा है, तो खरपतवार ज़्यादातर इस कीड़ा ने आकर्षित करे आकर हैं, तो खरपतवार ने अपना कसी कसोला या फिर खुर

पा है उसने निराई गुड़ाई करके, और फिर जो है तरीका यू तरीका जो बताया जा है कि भाई जो हमें बिजाई का तरीका बताऊँ डेढ़ तो दो फुट का लाइन तो लाइन का, वो इसीलिए बताया जा कि भाई खुरपे थे या फिर कसूले तो हम अच्छी तरीके से उसकी निराई गुड़ाई करके खरपतवार उसमें तो हम निकाल सकें। और अगर छिड़काव करना भी पड़ जाए तो फिर मेलाथियन दवाई हल्की दवाई है सबसे पहले उसका ही प्रयोग करें, और ज़्यादा जब वो आ जाए बात तो फिर हम दूसरी दवाइयाँ का असर करना था, कोशिश यह रखें कि छिड़काव ना किया जाए। बाकी समय बच गया तो जिक्र और भी करेंगे, भाइयों ने एक रागनी और सुनवा दे हैं, गायक कलाकार एक बार फिर सुखबीर सिंह और उनके साथी।

कोना पठता से जात की बेटी जात मजागी नू इस समय कौन सा बच्चा से मेरी बहन का।

मैया दुष्णी भजन रागनी गाय कलाकार थे सुखबीर सिंह और उनके साथी। और भाई जो जिक्र चल रहा था अपना, देखो इब तक कोई सी भी फसल हो चाहे, जित बारिश हो गई है उड़त अपना थोड़ा काम चल गया, छिड़का हो गया उड़े भी थोड़ा हाइबत हम आज करें, बाकी जो साग सब्जी वाली फसलें हैं अपने खेत की नमी का हिसाब देख लें, अपनी जो फसल है उसका देख लें, और उस हिसाब तक हमने सिंचाई में कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि जो भी अपनी साग सब्जी वाली फसलें हैं भाई पानी उन्हें बहुत ज़रूरी हो जाए है, बिना पानी के वो फसलें थोड़ी दिक्कत में आ जाए हैं। तो पानी देने का थोड़ा हाथ ध्यान रखें कि भाई या तो सवेरे के टाइम पे या फिर सांझ के टाइम पे, दोपहर के टाइम पे इनमें पानी देने से बचें, बाकी खरपतवार तो इनमें मुक्त रखें, और आसपास के जो डोड़ हैं मेड़ हैं उनकी भी साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी हो जाए है, क्योंकि हम बीच बीच में तो खरपतवार काट दें हैं और जो डोड़ हैं उन पर हम जो है घास फूस निवाई छोड़ दें हैं, तो उसमें तभी कीड़े इन फसलों पर नुकसान पहुँचावे हैं, क्योंकि और कोई शीशी खास फसल नहीं है, जितनी भी साग सब्जी वाली है वही फसल हैं, तो वो जितने भी कीड़े बीमारी हैं सारे के सारे उनके ऊपर घर करेंगे और फिर दिक्कत आओगी। तो खरपतवार तो मुक्त रखें, सिंचाई का ठीक तरीके से ध्यान रखें, नई फसल के लिए अपने खेत की तैयारी करें। इन सब बातों के लिए देख लिया अपना घड़ी का न्या भाई, कार्यक्रम का समय हुआ समाप्त, सांझ के भाइयों तो फिर मुलाकात करें।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:18 हुए हैं। अब हमारी दूसरी सभा यहीं संपन्न होती है। FM बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण। और तीसरी सभा में शाम 5:30 मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय शाम के 5:30:15 हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युवा संसार।

कार्यक्रम युवा संसार सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी की साथी याचना। और साथियों, आज हम जो है मना रहे हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती। और अगर हम देखें तो भारत माँ की पावन धरती पर समय समय पर ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्र कराने का सपना देखा है। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी, कवि, लेखक और अदम्य देशभक्त थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। उनका नाम सुनते ही मन में एक ऐसे युवा की तस्वीर उभरती है जो फांसी के फंदे को भी मुस्कुराते हुए गले लगा लेता है। उनका जीवन केवल एक इतिहास नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के लिए एक अनंत प्रेरणा है। राम प्रसाद जी का जन्म जो है वो 1897 में 11 जून को उत्तर प्रदेश में हुआ था। बचपन से ही वे एक कुशाग्र बुद्धि के बालक थे। किशोरावस्था में ही उनके मन में देशभक्ति की भावना जो है अंकुरित होने लगी थी। और यहीं पर देखें तो 1916 में मैनपुरी षड्यंत्र में भाग लिया, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह की योजना थी। उनके जीवन की अगर हम देखें तो सबसे साहसिक घटना थी काकोरी कांड। उनके नेतृत्व में चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान के अलावा अन्य क्रांतिकारियों ने लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन के पास सरकारी खजाने से भरी एक ट्रेन को रोककर उसे लूट लिया और धन का उपयोग क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदने के लिए किया गया। उनकी जो हम अगर देखें तो इसके अलावा वो एक कुशल कवि भी थे, जैसा हमने आपको बताया। और उनकी रचना जो रही है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी हर भारतीय के मन में देशभक्ति की लहर जगा देती है। और अगर देखें तो साथियों, इनकी जयंती हमें ये प्रेरणा देती है कि जो हम आज हैं वो हमें अपने देश के लिए न्योछावर कर देनी चाहिए और हमें उसकी उन्नति के लिए अब कुछ काम करना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे और सुनवा देते हैं आपको गीत जो रहेगा फिल्म रंग दे बसंती से। इसको गाया है दलेर मेहंदी और के एस चित्रा ने, इसके बोल लिखे हैं प्राशून जोशी ने और इसको संगीत दिया है ए आर रहमान ने।

और अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से एक गीत, जिसको गाया था दलेर मेहंदी और के एस चित्रा ने। इसके बोल लिखे थे प्राशून जोशी ने और इसको संगीत दिया था ए आर रहमान ने। और बढ़ते हैं आगे, और आप सभी को बता दें कि आज हम जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस भी मना रहे हैं। इसकी जो शुरुआत है अगर वो देखें तो मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 140 सदस्य देशों को जो है समर्थन में लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की घोषणा की। यह दिवस बच्चों के जीवन में खेल के महत्व को स्वीकार करने और उनके खेलने के अधिकार की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो वो खेल की रक्षा करो, बचपन की रक्षा करो रखी गई है। और यह थीम हम जो सभी को, सरकारों को, विद्यालयों को और परिवारों को यह याद दिलाती है कि सुखी और स्वस्थ बचपन की जो नींव है वो खेल पर ही टिकी होती है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह बच्चे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। खेल प्रत्येक बच्चे के विकास और उसकी भलाई के लिए अत्यंत आवश्यक है। जब बच्चे खेलते हैं तो वे न केवल शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, बल्कि वे सोचने, समझने और मिलजुल कर रहने के अलावा समस्याओं को सुलझाने की क्षमता को भी विकसित करते हैं। और साथियों, अगर हम देखें तो आज के समय में यह और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे अधिकांश समय जो है मोबाइल या फिर डिजिटल स्क्रीन के सामने बिताते हैं, तब यह दिवस हमें याद दिलाता है कि बच्चों को मैदान में खेलने का मौका देना कितना ज़रूरी है। और इसके अलावा देखें तो हम जो ये इस वर्ष की थीम है वो और भी स्पष्ट संदेश देती है कि खेल बचपन में कोई वैकल्पिक गतिविधि नहीं, बल्कि एक अधिकार है, आवश्यकता है और बच्चों की भलाई के लिए आधारशिला है। और अब हम देखें तो ये दिवस हमें प्रेरणा भी देता है कि हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ वे स्वतंत्र रूप से खेल सकें, बढ़ सकें और अपना बचपन पूरी तरह जी सकें, क्योंकि खेल केवल बच्चों का हक नहीं बल्कि उनके उज्जवल भविष्य की नींव है। और बढ़ते हैं आगे कार्यक्रम में और सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत, जो रहेगा फिल्म न्यूयॉर्क से। इसको गाया है केके ने, इसके बोल लिखे हैं संदीप श्रीवास्तव ने और इसको संगीत दिया है प्रीतम ने।

और अभी आप सुन रहे थे न्यूयॉर्क फिल्म से ये गीत, जिसको गाया था के ने और इसके बोल लिखे थे संदीप श्रीवास्तव ने और इसको संगीत दिया था प्रीतम ने। और साथियों एक और जो है हम बात कर लेते हैं कि जो हमें जीव जंतुओं के प्रति अपना दया भाव जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जो सच्चे मानवीय गुणों की पहचान है वो उन्हीं से होती है। पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि असंख्य जीव जंतु भी निवास करते हैं और उन सभी को जीने का समान अधिकार है, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी को एक उद्देश्य के साथ बनाया है। पशु पक्षी कीट पतंगे और जलीय जीव ये सब मिलकर प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि इनमें से कोई एक भी लुप्त हो जाए तो पूरी प्रकृति का जो संतुलन है वो बिगड़ सकता है। और हमारे भारतीय संस्कृति और धर्म में सदा से ही जीव दया को सर्वोच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि महात्मा गांधी ने भी कहा था कि किसी राष्ट्र की महानता और उसकी नैतिक प्रकृति का जो अंदाज़ा है वो इस बात से लगाया जा सकता है कि वहाँ जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। इसके अलावा भगवान महावीर का जो अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत है और बौद्ध धर्म की करुणा की भावना हमें जो सिखाती है कि प्रत्येक जीव में आत्मा का वास है, इसलिए किसी को भी जो है हमें पीड़ा देना पाप होगा। और आज के युग आधुनिक युग में अगर हम देखें तो मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जानवरों पर अनेक प्रकार के अत्याचार करता है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई से जो वन्य जीव है उनका आवास जो है वो नष्ट हो जाता है। सड़कों पर घायल पशुओं की अनदेखी और आवारा कुत्तों और गायों के साथ दुर्व्यवहार, ये सब हमारी असंवेदनशीलता को दर्शाते हैं। और देखें तो जो ये अत्यंत दुखद है कि जो प्राणी बोल नहीं सकते, अपना दर्द व्यक्त नहीं कर सकते, उन पर ही सबसे अधिक अत्याचार होते हैं। हमें जीव जंतुओं के प्रति अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा। घायल या बीमार पशु को देखकर उसकी सहायता करना, पक्षियों के लिए छत पर पानी और दाना रखना, इसके अलावा आवारा पशुओं को भोजन देना, ये छोटे छोटे कार्य दया भाव की सच्ची अभिव्यक्ति हैं। बच्चों को यहाँ पर सबसे ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों को बचपन से ही जो है वो पशु पक्षियों से प्रेम करना सिखाना चाहिए, ताकि वे बड़े होकर एक संवेदनशील नागरिक बन सकें। सरकार को भी पशु क्रूरता निरोधक कानूनों को और कठोर बनाना चाहिए तथा वन्य जीव संरक्षण के प्रयासों को और मजबूत करना चाहिए। और जो मनुष्य जीव जंतुओं पर दया करता है उसका हृदय वास्तव में महान होता है। दया भाव केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह समस्त प्राणी जगत के लिए होना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रत्येक जीव में ईश्वर की झलक देखेंगे और उसके साथ प्रेम व करुणा का व्यवहार करेंगे, तभी हम सच्चे अर्थों में मानव कहलाने के योग्य बनेंगे। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवा देते हैं अगला गीत, जो रहेगा फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। इसको गाया है डोमिनिक सेरेजो, क्लिंटन सेरेजो और लोई मेंडोंसा ने। इसके बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और इसको संगीत दिया है शंकर एहसान लोय ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा से ये गीत, जो गाया था डोमिनिक सरजो, क्लिंटन सरजो और लॉय मेंडोंसा ने। इसके बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने और इसको संगीत दिया था शंकर एहसान लॉय ने। और आजकल की एक ज़रूरी समस्या है कि जो हमारा भू जल होता है वो उसका जो लेवल है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे हर पानी के प्रयोग के लिए वहीं से पानी निकालते हैं। और अगर देखें तो हमारा जो जीवन है वो जल के इर्द गिर्द ही घूमता है। पृथ्वी पर जो उपलब्ध कुल जल का केवल 1% ही पीने योग्य है, और जिसमें बात करें तो भूजल की सबसे अहम भूमिका है। करोड़ों लोग पीने का पानी है, खाना पकाने और खेती के लिए भूजल पर निर्भर रहते हैं। परंतु आज स्थिति अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या, अंधाधुंध औद्योगिकरण और कृषि में अत्यधिक जल दोहन के कारण भूजल स्तर तेजी से नीचे गिर रहा है। शहरों में कंक्रीट के फैलाव के कारण जो वर्षा का पानी है वो ज़मीन में रिसने की बजाय नालियों में बह जाता है, जिससे भूजल का जो प्राकृतिक पूर्ण भरण है वो रुक गया है। और अगर देखें तो हमारे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भूजल स्तर खतरनाक रूप से जो है नीचे चला गया है। और एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 2030 तक जो है हमारे बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली में जो है भूजल का स्तर वो बिल्कुल ही एक्सट्रीम लेवल लो हो जाएगा। इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए जो वर्षा जल संचय सबसे प्रभावी उपयोग है, क्योंकि छतों पर जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है, इसके अलावा तालाबों और चेक डैम का निर्माण जो है भूजल को पुनः भरने में सहायक होता है। किसानों को भी जो है ड्रिप सिंचाई अपनानी चाहिए और शहरों में पारगम्य फर्श का उपयोग बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भूजल हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। यदि आज हमने इसे नहीं बचाया तो कल पानी की एक एक

के लिए तरसना पड़ेगा। इसीलिए हम देखें तो जल बचाओ के साथ साथ भूजल बचाओ और भविष्य बचाओ केवल नारा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए। और अब सुनवा देते हैं आपको कार्यक्रम का आखिरी गीत, जो रहेगा फिल्म लुटेरा से। इसको गाया है अमित त्रिवेदी ने, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के सामूहिक प्रयास विकसित भारत के दृष्टिकोण की भावना को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति साबित होंगे। उन्होंने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। गृहमंत्री अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि नीति आयोग देश को बुनियादी रूप से मजबूत करने वाली प्रमुख संस्था है। गृहमंत्री ने कहा कि भारत न केवल प्रतिस्पर्धा कर रहा है, बल्कि हर बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है। भारत ने ओमान तट पर एक जहाज MT सेट्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। श्री जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं।
2: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। हमने कल ओमान तट पर हुए जहाज पर हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें दुर्भाग्यवश हमने 3 भारतीय नागरिकों को खो दिया। हमने इस घटना के विरोध में भारत अमेरिकी मिशन उपप्रमुख को तलब किया था। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
1: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो के 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जलक्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी ये तीसरी घटना है। इससे पहले 8 जून को MT मारिवेक्स इसी समुद्री क्षेत्र में अमरीकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया था। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज गुजरात के वडोदरा से भारत में विनिर्मित पहले एयरबस C-295 की पहली परीक्षण उड़ान की सराहना की। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरोस्पेस विनिर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाता है। सरकार ने कुछ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क माफ कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से 22, 25, 27 और 30% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद प्रकाश चिक बराइक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर राय और सुष्मिता देव ने भी राज्यसभा और पार्टी दोनों से इस्तीफा दे दिया था। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। उद्घाटन मैच में आज ग्रुप ए में मेजबान मैक्सिको का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय समय अनुसार ये मैच रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर।

आज रात 10 बजे सुनिएगा शास्त्रीय संगीत व लोक संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। कंट्री वाइड कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:30 पर। इनसाइट्स कार्यक्रम का समय रहेगा 9:45 और 7:10 पर सुनिएगा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक श्रृंखला साइंस एंड टेक। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। साप्ताहिक समीक्षा आप सुन सकते हैं 6:30 पर, जिसे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा।

शाम 7:45 पर सुनिएगा विशेष परिचर्चा सरकार के 12 वर्ष। परिचर्चा में भाग लेंगे श्री मनीष ग्रोवर, श्री राम अवतार वाल्मीकि। थनैला रोग कारण व उपचार, ये विषय रहेगा डॉक्टर दिलबाग अहलावत की पूर्व प्रसारित बातचीत का कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर। कार्यक्रम ग्रामीण संसार आप सुनेंगे शाम 7:00। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:25 पर आपको सुनवाएंगे श्याम बटेजा की गाई गज़लें। कार्यक्रम एक फिल्म से होगा रात 9:15 पर। इसमें आज आप सुनेंगे गैम्बलर फिल्म से चुनिंदा गीत। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र कल के मुख्य आकर्षणों पर। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने से संबंधित विभिन्न विषयों पर एक विशेष श्रृंखला जन विश्वास आप सुन पाएंगे शाम 7:10 पर, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात 9:30 पर सुनेगा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी रहेंगे श्री मनीष, विकास मधुगोयल और सीमा बिरला। कार्यक्रम युवा संसार आप सुनेंगे रोजाना की तरह शाम 5:30 पर। इसमें कल होगा कार्यक्रम युवा पसंद, समसामयिक विषयों पर चर्चा के साथ फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम। सुबह सवेरे अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:25 पर। श्याम वरण विषय पर गांधी जी के विचार सुनिएगा गांधी चर्चा में प्रातः 7:15 पर। कार्यक्रम खेत खलिहान में दिन में 2:30 पर चर्चा का विषय रहेगा फली सब्जी फसलों की देखभाल। कार्यक्रम कृषि जगत में शाम 6:20 पर सुनेगा फोन इन कार्यक्रम, विषय होगा पशुपालन संबंधी समस्या व सुझाव। विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर संतोष और NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दिन में 12:30 पर। अब जानकारी कुछ संगीत के कार्यक्रमों की। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे रात 8:25 पर। आपके अनुरोध पर ये फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर। पुराने फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अपने सुनने वालों के लिए लेकर आएंगे रात 10:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग होगा प्रातः 9:00। कार्यक्रम एक फिल्म से सुनिएगा रात 9:15 पर। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:30 और हरियाणवी लोक संगीत में प्रातः 8:30 पर कलाकार रहेंगे बलवीर सिंह नागर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 यानी 1143 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। शाम के 6:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: इसे प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी और प्रसार भारती के अधिकारियों से समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। कुरुक्षेत्र में बरसात से पहले अभी तक 80% नालों की सफाई का काम मुकम्मल हुआ। फरीदाबाद पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को एक पिस्तौल सहित गिरफ्तार किया। और आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी बारिश होने की संभावना है। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही हो, लेकिन भारत आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ विकास पथ पर अग्रसर है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने कहा कि जैसे जैसे भारत विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों के बीच योग, संवाद और विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीति आयोग इसमें सहयोग के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ताकि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच विचारों का समुचित आदान प्रदान हो सके और विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में सामूहिक प्रयासों को बल मिले। श्री मोदी ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि सशक्त युवा ही विकसित भारत की यात्रा में प्रेरक शक्ति होंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने विकास और निर्यात के नए अवसर पैदा करने के लिए कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते किए हैं। इन समझौतों से लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी महत्वपूर्ण अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिला नेतृत्व आधारित विकास विकसित भारत की परिकल्पना का आधार है। उन्होंने कहा कि कृषि और स्टार्टअप से लेकर विज्ञान और नवाचार तक नारी शक्ति सभी क्षेत्रों में योगदान दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए। बैठक में देश भर में उद्यमिता और कौशल विकास को बढ़ावा देने तथा रोजगार के स्थायी अवसर सृजित करने के उपायों पर विचार विमर्श किया गया। इस वर्ष की बैठक का विषय 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास था। बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, राज्यपालों और उपराज्यपालों ने भाग लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सामरिक अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित करते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन से सीमावर्ती क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने पर बल दिया है। विजयपुर में आकाशवाणी परिसर से राजस्थान के रामगढ़ में 20 किलोवाट के FM ट्रांसमीटर का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करने के अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में जयपुर के सांसद मंजू शर्मा, प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री वैष्णव ने आकाशवाणी और दूरदर्शन में समयानुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया।
1: मैं निवेदन करूंगा आकाशवाणी के सभी साथियों से और विशेषकर डीजी साहब से, राजीव जी से और हमारे प्रसार भारती के चेयरमैन श्री प्रसून जोशी जी से कि अब हम एक नए तरीके से सोचें आकाशवाणी के बारे में। हम आज के समय के हिसाब से आकाशवाणी को डिजिटल फर्स्ट और हाइपर लोकल इन दो सूत्रों में बांधे। जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हमारे पास आज अवेलेबल है, अपना खुद का वेब्स OTT है, उस प्लेटफॉर्म को यूज करें। लोकल आर्ट, लोकल संस्कृति, लोकल खानपान को आगे लाने का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाए। अगले 1000 दिनों में एक मास्टर प्लान बना के आकाशवाणी और दूरदर्शन का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन करें। आपको पूरा फ्रीडम है, जो आप कहोगे वो पॉलिसी बनेगी। पॉलिसी बनाने वाले आप, इंप्लीमेंट करने वाले आप।
0: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। हरियाणा के पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने आज कुरुक्षेत्र में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर बरसात के मौसम के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षा शुरू होने से पहले सभी नालों और ड्रेनों की सफाई का कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि लोगों को जल भराव जैसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने संबंधित विभागों से साफ सफाई व्यवस्था और चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली। श्री सुभाष सुधा ने मीडिया को बताया कि 80% नालों की सफाई अभी तक हो चुकी है।
2: अभी मैंने इरिगेशन डिपार्टमेंट की, संसदीय बोर्ड की, कलम का पब्लिक हेल्थ की, म्यूनिसिपल काउंसिल की और इरिगेशन मामलों की सभी डिपार्टमेंट की बैठक को लेकर मीटिंग की थी। तो मीटिंग के अंदर जहां जहां भी हमें प्रॉब्लम आती है, जैसे विधानसभा में मैंने स्टेप टू स्टेप हर बार उसके लिए बात की है। 80% जो हमारा फ्लड के अंदर ड्रेन आती है उसकी सफाई हो चुकी है। 20% और भी आने वाले 10 दिन तक पाइप 100% सफाई हुई, ताकि हमारी अपनी तैयारी होनी चाहिए, लोगों को जान आने की।
0: उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में पहली बार बाढ़ और जल निकासी प्रबंधन की निगरानी के लिए एक विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। इस पोर्टल पर सफाई कार्य से जुड़े सभी विभाग अपनी गतिविधियों और प्रगति की जानकारी अपलोड कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के समक्ष जन स्वास्थ्य विभाग के लिए आधुनिक मशीनरी की मांग रखी गई थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। जल्द ही कुरुक्षेत्र के लिए लगभग 3 करोड़ रूपये की लागत से सुपर सकर मशीन तथा 40 से 50 लाख रुपए की लागत वाली सीवर जैकिंग मशीन खरीदी जाएगी। फरीदाबाद पुलिस की सेक्टर 85 और केंद्रीय अपराध शाखा की संयुक्त टीम ने आज अल सुबह मुठभेड़ के बाद एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान बिहार में सीतामढ़ी सोनू उर्फ भिखारी शाह के तौर पर हुई है, जो वर्तमान में दिल्ली के संगम विहार में रह रहा है। सहायक पुलिस आयुक्त वरुण कुमार दहिया ने मीडिया को बताया कि अपराध शाखा ने एक सूचना के आधार पर IMT मच्छगर सड़क पर नाकेबंदी कर उसे काबू किया। गिरफ्तारी से पहले आरोपी ने पुलिस पर 4 राउंड गोलीबारी की। आरोपी की एक गोली उपनिरीक्षक दीपक लोहान के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। आत्मरक्षा में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली उसके पैर में लगी और उसे काबू कर लिया गया।
3: एक कुख्यात बदमाश जो एक हिस्ट्री शीटर है, जिसका नाम सोनू है, एक टिप अप हुआ जो फरीदाबाद के अंदर बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है। इसको पकड़ने में मुठभेड़ के दौरान सफलता प्राप्त की। इसके ऊपर नोएडा के अंदर हत्या के प्रयास, गैंगस्टर रैप, आर्म्स एक्ट, NDPS और इससे संबंधित अन्य ऐसे लगभग 28 मुकदमे पहले से दर्ज है, जिस फरीदाबाद के अंदर भी 4 मुकदमों में वांछित था।
0: श्री दहिया ने बताया कि आरोपी के कब्जे से 32 बोर का पिस्तौल, मोबाइल फोन, आधार कार्ड, नकदी तथा एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। आज हरियाणा के उत्तरी जिलों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश दर्ज की गई है। हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदनलाल खीचड़ ने बताया कि पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा में भी आज धूल भरी हवाएं चल रही हैं। रात को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण बारिश होने की संभावना है।
4: आज रात्रि को पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण हरियाणा के दूसरे हिस्से जो पश्चिमी और दक्षिण हरियाणा में भी बारिश की संभावना है। कल 12 जून और परसों 13 जून को भी हरियाणा में ज्यादातर क्षेत्रों में हवाओं में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। 14 तारीख को कुछ ज्यादा बारिश की संभावना नहीं, परंतु 15 जून को एक और पश्चिमी विक्षोभ भी आने की संभावना बन रही है। उससे मौसम फिर से बदलाव आने वाला है। जो भी ये बारिश होगी उसका सभी फसलों में फायदेमंद रहेगा।
0: डॉक्टर मदनलाल खीचड़ ने कहा कि इस बारिश से नमी संचित हो सकती है, जो धान की रोपाई के लिए फायदेमंद रहेगी। मॉनसून को लेकर उन्होंने कहा कि मॉनसून अभी कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंचा है। अभी मॉनसून की गति ठीक है, अगर ऐसे ही रहता है तो 20 जून के आसपास मॉनसून पूर्व वर्षा हो सकती है। हरियाणा में मॉनसून जून के अंतिम दिनों में यानी जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पहुंच सकता है। हरियाणा के विद्यालयों की कक्षा 8वीं के इतिहास पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं व बाबा बंदा सिंह बहादुर से जुड़े इतिहास को शामिल किया गया है। अब स्कूली बच्चे सिख गुरुओं के साथ साथ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के त्याग, बलिदान और आदर्शों से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में मनाए गए गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम के अवसर पर घोषणा की थी कि आने वाली पीढ़ियों को सिख इतिहास, गुरुओं के आदर्शों और उनके महान बलिदानों से परिचित कराने के लिए इन्हें शिक्षा का हिस्सा बनाया जाएगा। पंचकुला के नगर निगम आयुक्त विनय कुमार ने आज संपत्ति कर संग्रहण में तेजी लाने, बकायेदारों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार नोटिस जारी करने तथा बकाया राशि की प्रभावी वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये निर्देश संपत्ति कर वसूली की प्रगति की समीक्षा हेतु अधिकारियों की ली गई बैठक में दिए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, संवाद और विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया। और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आकाशवाणी के अधिकारियों से समय अनुसार परिवर्तन लाने के लिए योजना बनाने का आह्वान किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।
5: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। वो दोपहर को भी जिक्र कर रहा था कि भाई देखो मौसम परिवर्तनशील हो रहा है और धूप भी बहुत तेज़ थी, तापमान कई दिनों लिए लगातार बढ़ता जा रहा था, कहीं कहीं भाई बूंदाबांदी हुई है, कहीं कहीं थोड़ा हाँ ठीक ठाक भी राम में थोड़ा हमोट सी दिखा गया, लेकिन इसमें भी फिर भी एहतियात बरतन की हमने ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर देखें तो भाई देखो अपना साग सब्जी उगावा है किसान भाई, और जो पॉली हाउस माँ में साग सब्जियाँ का उत्पादन करें हैं उसमें हो जाए कि बेमौसमी जो हम सब्जी रहे हैं उनकी हमने ठीक पैदावार सही तरीके से मिल जाए है। क्यों मिल जाए है उसके भाव भी ये हैं कि भाई जो मौसम में सब्जी ना होंदी हुआ हम पॉली हाउस में उगा कर एक बार तो देखो उसमें खर्चा लग गया है, सब्सिडी भी हमने मिला है और बड़ी सफलतापूर्वक चाल भी हैं, बशर्ते उसमें थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़े है। और वो इस तरीके से हम करें कि भाई नई नई वैरायटी और हर चीज़ की हमने अगेती जानकारी जावें, किसान विज्ञान केंद्र पर भी जावें जो अपना खेती बाड़ी के हैं और किसान मेला में भी जावें उड़ा भी पता लग गए, सार इंस्टीट्यूट में भी कुछ से अपना हम सलाह लेवें, तो अलग अलग और नई नई जो तकनीक आ रही है उनका इस्तेमाल करें, नए नए बीज नई नई जो किस्म आवे हैं उनका इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो पॉली हाउस है उसमें हम लगातार अपनी सब्जी उत्पादन करके या बेमौसमी जो फल हैं उनका उत्पादन करके ने और उसमें भरपूर फायदा ले पाऊंगे। क्योंकि इसमें उत्पादन जो हम कर रहे हैं हम एक बात नहीं मान जाए कि भाई इतना बड़ा थोड़ा वो काम हो जाएगा, ज़्यादा काम बन जाएगा इसमें ये हो जाएगा, लेकिन नहीं थोड़ी मेहनत शुरू में ज़रूर है, एक बार शुरुआत होने के बाद और फिर जो है इसमें अपनी बचत ज़्यादा है। हालांकि हम बार बिक रहे हैं साग सब्जी का काम कर रहे हैं सब्जी उगाए हैं अपने खेतों में, लेकिन वो होती मौसमी मौसमी का मौसम के हिसाब से अपना हमने भाव मिलेगा। और दूसरा जो है एक कोई भी चीज़ है जो इस समय की ना हर वह हमने लेनी है तो उस टाइम पर अगर उसका हम देखेंगे तो भाव हमने ज़्यादा आसमान छूते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम पॉली हाउस में उसका उत्पादन करेंगे तो उसके भाव हमने भाई अगर ज़्यादा भी आसमान ना छूंगे तो ठीक ठाक भी अगर बाजार में हम देंगे तो भी हमने ठीक मुनाफा उसमें मिल जाएगा। साथ साथ में काम धंधे और भी बतेरे हमने करने हैं भाई, दाना की भी शुरुआत करनी है जितना अपना सरवाई का इलाका है यानी कि चौहे ऊपर हैं या पानीपात के साधन हैं, बाजरे का भी काम करना है, अरहर की काश्त भी करनी है, बहुत सी हैं जो काम हमने करने हैं। और साथ साथ में जो अपना कपास की फसल है उसकी निराई गुड़ाई का है, सिंचाई का है, जित भाई बारिश ना हुई है हमने सिंचाई भी इसमें करनी है। तो ब्याज इस कार्यक्रम थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि साप्ताहिक समाचार दर्शन भी आने हैं, तो उससे पहले हम भाइयों का मनोरंजन करा दें, भाइयों को रागनी सुनवा दें। गायक कलाकार हैं गजानंद शर्मा और उनके साथी।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ, हर दिल हर घर और हर जन हर वर्ग को जोड़ने का है साधन, विश्वसनीय असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर, हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार, अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक

एवं रेल परियोजनाओं को लेकर अधिकारियों व बुद्धिजीवियों से बातचीत और जींद से सोनीपत तक चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन DEMU ट्रेन पर स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया। NDA सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल में हरियाणा में रेल एवं सड़क संरचना को लेकर काफी विकास हुआ है। कई नए राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेसवे हरियाणा के लिए जीवन रेखा साबित हो रहे हैं।

0: रेल और सड़क संरचना को लेकर बह रही बदलाव की बयार पर हमने कैथल की जिला उपायुक्त अपराजिता से बातचीत की।
1: पिछले 12 सालों में केंद्र सरकार ने जिले को कई बड़े तोहफे दिए। इनमें हिसार चंडीगढ़ हाईवे 152D और दिल्ली कटरा हाईवे ने जिले की तस्वीर बदली है। नेशनल लेवल पर मजबूत सड़क नेटवर्क के कारण देश के सभी बड़े शहरों तक हमारी पहुंच बढ़ी है। इससे जिलावासियों को सामान लाने व ले जाने में भी आसानी हुई है। नेशनल हाईवे के निकट जमीन मालिकों को जमीनों के रेट बढ़ने का भी बड़ा लाभ हुआ है। जिले में 152D के तहत 34 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए 506 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा वितरित किया गया। इसके अलावा दिल्ली कटरा हाईवे के 36 किलोमीटर के लिए 511 करोड़ रुपए व हिसार चंडीगढ़ हाईवे के लिए 580 करोड़ रुपए की राशि किसानों को मुआवजे के लिए वितरित की गई। जिले में आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित स्वामित्व जैसी योजनाओं ने आम जनमानस के जीवन को आसान बनाया। जिले में भारी संख्या में लोगों को इन योजनाओं से सीधा लाभ मिला है। केंद्र व प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। पीएम किसान, स्वाभिमान निधि हो, कृषि उपकरणों पर सब्सिडी से फसल अवशेष प्रबंधन जैसी योजनाएं हो या कृषि विकास से जुड़ी अन्य परियोजनाएं, जमीनी स्तर पर क्रियान्वित कर किसानों को राहत दी जा रही है।
0: कैथल में ही जिला परिषद के अध्यक्ष करमवीर कौल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल बदलाव का कार्यकाल रहा है और ये बदलाव हर क्षेत्र में विकास को लेकर देखने को मिल रहा है।
2: पिछले 12 सालों में बहुत ही कार्य देश को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो हरियाणा के लिए और स्पेशली कैथल के लिए नेशनल हाईवे 152D ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के अंदर आता है, जिसमें लगभग 277 किलोमीटर लंबा 6-लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे कैथल जिले के कोल, डान, पुंडरी, राजौन आदि क्षेत्र को सीधा लाभ पहुंचाता है। परियोजना की लागत लगभग 5108 करोड़ है, जिसमें दिल्ली एनसीआर, अम्बाला, नारनौल और दक्षिण हरियाणा से संपर्क मजबूत हुआ है। अगर आप देखें पहले चंडीगढ़ जाने के लिए कैथल से लगभग 4 घंटे के आसपास समय लगता था, आज 1.5 से 2 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। अगर दिल्ली की बात करें तो 5 से 6 घंटे का समय था, जो घटकर लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच में रह गया। इसके साथ ही 152 से 65 कैथल राजस्थान बॉर्डर 4-लेनिंग है, जो की केंद्र सरकार द्वारा राजमार्ग उन्नयन परियोजना के तहत आता है। इसमें लगभग 166 किलोमीटर मार्ग का चौड़ीकरण, जिससे सीधा कैथल और कलायत क्षेत्र के डायरेक्ट कनेक्टिविटी है, इससे भी हमारे कैथल वालों को बहुत लाभ पहुंचेगा और बहुत सी साथ साथ में स्वास्थ्य की सुविधाएं जो केंद्र से डायरेक्ट आ रही हैं, उसका भी कैथल को बहुत लाभ हुआ है। तो आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 साल बेमिसाल।
0: कुरुक्षेत्र में हाल ही में एक नए बाईपास को मंजूरी मिली है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2071 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। आइए लेते हैं और जानकारी पूर्व राज्य मंत्री सुभाष सुधा से।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी का, सेंट्रल मिनिस्टर जी का और आदरणीय श्री प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करता हूं। और जिनके सोच, जिनका विजन के द्वारा प्रदेश के अंदर सबका साथ सबका विकास लेकर आज कार्य हो रहे हैं। बहुत दिनों से क्षेत्र निवासियों की बहुत बड़ी एक डिमांड थी कि कुरुक्षेत्र का बाईपास बनना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पूरा ध्यान रखकर इस बाईपास को पास कराया। ये बाईपास जो है ये इंद्रवड़ी से लेकर उसके गाँव से लेकर इधर आपका किरमा अमीन होते हुए ये मथाना तक रहेगा। 27.9 किलोमीटर इसका भरेगा और 2071 करोड़ रुपया इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी है। इसकी जो डीपीआर बन चुकी है और बहुत जल्दी ये बाईपास हमारे शहर को मिलेगा। ये जमीन अक्वायर के लिए अभी नेशनल हाईवे ने डिप्टी कमिश्नर मोदी को लेटर लिख के दे दिया है कि बहुत जल्दी की जमीन को एक्वायर करेंगे, ताकि वहाँ की उस एरिया की चिट्ठिया ना हो। उस क्षेत्र के विकास को लेकर जो बातें हमने कही, अब देखिए काश हमने पहले भी कहा 5000 करोड़ हमने क्षेत्र में लगवाया। आपके सामने एलिवेटेड ट्रैक आपके सामने तैयार हो रहा है, हम उसका रोज उसका देख रहे हैं। एलिवेटेड ट्रैक हमारा सपना था, पूर्ण हो रहा है। लोग कहते थे हवा में बात कर रहे हैं, आपके सामने एलिवेटेड ट्रैक तैयार हो रहा है और उसका भी मेरे को लगता है महीने में उसका भी हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे।
0: कैथल में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि एनडीए सरकार के 12 वर्ष में हरियाणा में कनेक्टिविटी को लेकर बहुत सुधार हुआ है।
4: पिछले 12 साल के एनडीए शासन को, जिसे हम मोदी काल के नाम से भी पुकारते हैं, कि मैं अगर बदलावों की बात करें, केंद्र सरकार की नीतियां थी और हरियाणा में उनका प्रभाव हुआ। सर्वप्रथम कनेक्टिविटी का देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेसवे का जो विस्तार हुआ है, विशेष रूप से 152D और द्वारका का एक्सप्रेसवे जो दिल्ली को कटरा से जोड़ता है, वो हरियाणा में से ही गुजरता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी उसी कड़ी में एक अगली योजना है, जिसने हरियाणा में कनेक्टिविटी को बहुत सुधारा है। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी सड़कों का भी विकास किया गया है। प्रत्येक जिला को गाँव के साथ जोड़ने की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसको केंद्र के द्वारा ही सहारा दिया गया है। इसके अलावा मेट्रो का जो विस्तार है कुंडली और आगे करनाल तक करने की जो योजना है, एक महत्वपूर्ण योजना है जिसने हरियाणा में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण दूरदृष्टि का विचार है विकसित भारत 2047, विकसित भारत में हरियाणा भी अपना योगदान देगा।
0: भिवानी में रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास और रेल संरचना के विकास को लेकर हमने रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति बीकानेर मंडल के सदस्य हरीश गोस्वामी से बातचीत की।
5: भिवानी में पिछले 12 वर्षों में इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूरा हुआ है। भिवानी से रेवाड़ी डबल लाइन हो चुकी है। भिवानी से हिसार और रोहतक की तरफ भी डबल लाइन का कार्य प्रगति पर है। भिवानी स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत जीर्णोद्धार हुआ है। भिवानी से अनेक नई गाड़ियों का संचालन हुआ है, खास करके बड़े शहरों से भी भिवानी का जुड़ाव हुआ है। भिवानी सिटी स्टेशन का भी पुनर्विकास हुआ है और अभी भी अनेक विकास कार्य प्रगति पर हैं।
0: हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा के बीच एक और नमो भारत कॉरिडोर पर काम चल रहा है। नमो भारत रेल कॉरिडोर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने और जानकारी देते हुए बताया,
6: जैसा कि आप जानते हैं कि देश का प्रथम नमो भारत RRTS कॉरिडोर दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच वर्तमान में परिचालित है, जहां 180 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति वाली नमो भारत ट्रेनें हर 10 मिनट के अंतराल पर उपलब्ध हैं। वर्तमान में औसतन लगभग 1,00,000 यात्री प्रतिदिन इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसा ही एक और नमो भारत कॉरिडोर गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा के बीच प्रस्तावित है, जो अभी DPR स्टेज में है। नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद ये तीनों ही प्रमुख शहर हैं और यहाँ कई उद्योग, शैक्षणिक संस्थान और कार्यालय स्थित है और इस क्षेत्र में एक फास्ट कनेक्टिविटी की जरूरत भी है। आने वाले समय में ये तीव्र गति की नमो भारत ट्रेन, जो ऑन एन एवरेज सभी स्टेशंस पर रुकते हुए 1 घंटे में लगभग 90 किलोमीटर का सफर तय करती हैं, यहाँ के लोगों के लिए एक विश्वसनीय, सुरक्षित और सतत परिवहन समाधान प्रदान करेंगी।
0: देश की हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी हरियाणा में चलेगी। रेल मंत्रालय ने 10 डिब्बों वाली इस DEMU ट्रेन को चलाने की स्वीकृति दे दी है। कुल 2,500 यात्रियों की क्षमता वाली ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। जींद नगर परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा सैनी ने इस गाड़ी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर पर आभार जताया।
7: एशिया में जींद एक ऐसा शहर है जहाँ से नो नेशनल हाईवे, इस जींद को सौगात मिली है और अंडरपास को भी एक बहुत अच्छा लुक यहाँ पर दिया है और अभी जींद को एक नई बड़ी सौगात भी मिली है। हाइड्रोजन डेमो ट्रेन है जो बिल्कुल आपका प्रदूषण मुक्त है और जो सोनीपत से जींद की 10 कोच वाली ट्रेन, वो भी हमारे मोदी सरकार ने इस 12 वर्ष पूर्ण होने पर जींद को एक बहुत बड़ी सौगात। जींद में इतने सारे कार्य हमारे मोदी सरकार ने किए, 12 वर्षों में जींद का जो पूरा नक्शा है वो मोदी सरकार ने और हमारी जो प्रदेश की सरकार है उसने बदलने का काम किया। ऐसे में अपने मोदी जी को और अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत फिर से आभार व्यक्त करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।
0: हमने इस प्रदूषण मुक्त रेलगाड़ी को जींद और सोनीपत के बीच चलाए जाने पर स्थानीय लोगों की भी प्रतिक्रिया ली।
8: ये जो जींद से सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन है जिसकी मंजूरी अभी सरकार द्वारा दी गई है, इससे एक तो दो जिलों की कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी, यात्री को समय में बचत होगी, जो प्रदूषण है उसमें काफी कमी आएगी। अभी तक तो जो ट्रेनें चल रही हैं जींद सोनीपत तक, वो इलेक्ट्रिक इंजन से या इससे चलाई जा रही है, उससे काफी फायदा है। लेकिन PM मोदी की जो सोच है एक अच्छा वातावरण जो ट्रेन के मामले में जो देना है, वो हाइड्रोजन का जो है प्लांट स्थापित जींद में किया, इससे काफी फायदा होगा।
9: हाइड्रोजन ट्रेन ये एक बहुत ही अच्छी सौगात है भारतवासियों के लिए और खास करके जिला जींद के लिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है, पूरे विश्व के अंदर पहली ये ट्रेन इंडिया के अंदर बनी है, इससे तेल की बहुत ज्यादा बचत रहेगी। जो आज हम दूसरे देशों के ऊपर तेल के ऊपर डिपेंड है, उसको देखते हुए जो हाइड्रोजन ट्रेन चलाने का काम किया है, इसी प्रकार से हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट ऐसे करेंगे।
0: इसी के साथ समाचार दर्शन का यह अंक समाप्त हुआ। प्रस्तुति अश्विनी कुमार शर्मा, वाचिका अमन सैनी, प्रस्तुति सहायक गौरव सिंह।
10: भैया तृष्णा भैया ने साप्ताहिक समाचार दर्शन और ही भैया ने सुनाऊंगे एक बातचीत। भाई हालांकि पूर्व प्रसारित बातचीत है पशुओं के विषय में है, थनेला रोग कारण उपचार और बचाव, पर यह बातचीत इसी

0: कद्दे सुनने सारी अणका मान की है, तो सुने ये बातचीत।
1: आज की हमारी बातचीत रहेगी थनैला रोग कारण उपचार और बचाव। भाइयों, हम पशुधन रखे हैं और पशुधन बहुत महंगा है। पूरी संभाल करें हैं, खुआन प्याण में कोई कमी छोड़ दे नहीं, लेकिन थोड़ी सी कितने हमारी चूक रह जा है तो उसमें बड़ी समस्या आ जा है, और वो समस्या कई बार विकराल रूप जब धारण कर ले है तो काफ़ी सारा नुकसान हमने उठाना पड़ा है। तो पशुपालक भाई सुन रहे हैं इस बात ने, और ये दिक्कत ना आवे इसकी खातिर आज मारद्वारा स्टूडियो में आए हैं डॉक्टर शक्ति मलिक। आप पशु चिकित्सक हैं, राजकीय पशु चिकित्सालय टिटोली से डॉक्टर साहब आप आए हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है
2: धन्यवाद जी।
1: डॉक्टर साहब। पशु रखे हम,
2: हाँ जी,
1: जितनी भी संभाल उसके है उतनी हम संभाल करा हाँ, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत आ जा है और वो दिक्कत कई बार बड़ी हो जा है, खर्चा भी घना आवे है और कई बार ऐसा देखा जाए काबू दबार भी हो जा है।
2: बिल्कुल ठीक बात।
1: तो शुरुआती दौर में किन किन बातों का ध्यान करा जाए, एक तो वो ध्यान करवा दो।
2: देखिए, जो अपना टॉपिक है, विषय जो है थनैला रोग के बारे में है। थनैला रोग होता क्या है? ये जैसे नाम है थनेला, थन का रोग है।
1: हाँ
2: तो थन का रोग है जो पशु हैं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, कोई भी पशु है जिसमें जो दूध देते हैं उसके थन में संक्रमण हो जाता है। थन जो है उसमें कीटाणु जो है अपना संक्रमण पैदा कर देते हैं, थन पे सोई आ जाती है, थन लाल हो जाता है और थन में इन्फेक्शन हो जाता है।
1: अच्छा
2: तो ये किसी में भी, दूध वाले पशु में हो सकता है ये। देखिए, क्योंकि हमारा जो वातावरण है चारों तरफ कीटाणु से भरा पड़ा है,
1: हाँ
2: हवा में भी कीटाणु हैं, धरती में भी कीटाणु हैं, जो पशु पेशाब करता है, गोबर करता है, उसमें भी कीटाणु होते हैं। जो जो पशुपालक
1: हाँ
2: दूध निकालता है, अगर वो ढंग से हाथ नहीं धोता तो उससे भी कीटाणु उसके थन के अंदर जा सकते हैं।
1: ठीक बात।
2: सबसे पहले तो ये है कि भाई जो है ना, साफ सफाई का विशेष ध्यान पशुपालकों को रखना पड़ेगा इसके अंदर। अगर आप जहाँ पशु रखते हो वो अच्छी तरह धो के सफाई करके, कीटनाशक दवाई भी बीच बीच में, क्योंकि आजकल जो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो मक्खियों से भी संक्रमण फैल जाता है, तो आपको अपने फर्श की जहाँ पशु होता है उसकी सफाई करनी पड़ेगी।
1: आपका कहना यह है कि साफ सफाई पहला ध्यान,
2: बिल्कुल पहला
1: साफ
2: ध्यान,
1: सफाई अपने हाथों की भी हो और जित जो ठाण पशु का है वो भी साफ सुथरा
2: बिल्कुल
1: हो।
2: साफ सुथरा हो।
1: उसके बाद ये दिक्कत या तो आएंगी नहीं, आएंगी तो कम आएंगी, आपका कहना यह
2: आ
1: है।
2: तो सकती है उसके बाद भी,
1: हाँ
2: क्योंकि देखिए क्या होता है, दूध जब पशु का हम निकाल लेते हैं तो उसके दूध निकालने के बाद पशु का जो थन का सुराख है वो आधे घंटे तक खुला रहता है। अगर पशु दूध निकालने के तुरंत बाहर बैठ जाता है, अगर नीचे मिट्टी मट्टी है और है, उससे इन्फेक्शन का खतरा हो जाता है, कि खतरा उसमें पशु इन्फेक्शन जाने का खतरा होता है। तो उसको कोशिश ये करनी है पशुपालक को, दूध निकालने के बाद उसको चारा डाल दें
1: हाँ
2: ताकि वो चारा खाता रहे।
1: अच्छा
2: हाँ, चारा डाल दें ताकि फिर आधे घंटे तक तो ना बैठने दिया जाए उसको, वो बैठे तो करीबन पौना घंटे के बाद ही बैठे पशु, ऐसी व्यवस्था आपने करनी।
1: मतलब कुछ लोभ सा उसने ऐसा दे दे कि वो खाए जा खड़े आ रहे
2: हाँ,
1: उसके।
2: खड़ा रहे इस बनने।
1: हाँ और चलो यो भी ध्यान कर लिया, वो खड़ा राख भी दिया,
2: जी
1: और फिर आपने कहा कि आपने हाथ साफ कर लिए, और जो पानी तम थण दो हाँ
2: हाँ जी,
1: तो वो पानी में भी कुछ ऐसा होना चाहिए, वह गर्म हो ठंडा हो कुछ इस तरह की बात हो।
2: जैसे जो पानी में हाथ धो, हाँ, पहले आपने साबुन से हाथ धोने हैं आपने,
1: हाँ
2: चाहे आप ठंडे में धो लो चाहे गर्म में धो लो। अपने जो पशुपालक जो दूध निकालेगा अपने हाथ उसको साबुन से धोने,
1: हाँ
2: और थन जो है थन साफ करके, कपड़े, आपको एक कपड़ा ले लो, आपको एक तौले ले लो, थन को आपने सुखा लेना, उसके बाद आपने दूध निकालना है।
1: अच्छा धो के पहले फिर उसने सुखाव है
2: हाँ,
1: थोड़ा
2: धो के
1: कपड़े
2: पहले
1: का।
2: उसको आप थोड़ा पानी मार देते हो, चाहे गर्म पानी मारते हो चाहे ठंडा मारते हो, उसको फिर उसकी मिट्टी विट्टी साफ करके, और उसे कपड़े से एक अलग कपड़ा यूज़ करो, रोज छोटा कपड़ा यूज़ करो, को टॉवल यूज़ करो, अब तौलिया, उससे रोज उसको एक बार सुखा लो, उससे
1: हाँ
2: पूछ लो, उसके बाद दूध निकालना आपने।
1: अच्छा चलो फिर दूध काढ़ लिया, दूध काढ़े पाछे फिर धोऊं उसने थण ने।
2: उसके बाद नहीं धोना आपने, दूध निकालने के बाद ठंड नहीं धोना।
1: अच्छा
2: दूध निकालने के बाद तो आपने क्या करना है, जो है पशु को खड़ा ही रखना, तो उसके बाद क्योंकि सुराख खुला है
1: हाँ
2: और उसको धो दोगे आप पानी में, पता नहीं पानी में भी कीटाणु होते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन फैल सकता है। तो आपने ही करना है कि भाई आधे घंटे तक पशु को खड़ा रखना है।
1: अच्छा
2: कुछ लोग क्या कर देते हैं, दूध निकालने के बाद जो झाग होते हैं बाल्टी
1: हाँ
2: में दूध के, वो झाग उसके थन के ऊपर यानी उस पर लगा देते हैं सुराख पे
1: हाँ
2: जहाँ से दूध निकलता है। वो बहुत खतरनाक चीज़ है, क्योंकि आप

0: देंगे आपको। देखिए, दूध जो है एक अच्छा माध्यम है जिसमें कि कीटाणु उग सकते हैं, और वही जाकर उस थन पे हम लगा देंगे तो कीटाणु फैल जाएगा। तो इस पर आपने कोई झाग नहीं लगाना, कोई घी नहीं लगाना, आपने कुछ नहीं करना, बस उसको आप साफ कर दें। कोशिश ये करनी है आपने, उसके बाद में एक घोल बना लो आप। एक भाग तो बीटाडीन का ले लो
1: हाँ
0: और 9 भाग ले लो आप उसमें लिक्विड पैराफिन की।
1: अच्छा
0: एक लिक्विड पैराफिन मिल जाती है आपको बाजार से, एक भाग बीटाडीन का और 9 भाग लिक्विड पैराफिन के।
1: बेटाडीन वो पानी
0: हाँ,
1: वाली।
0: लिक्विड जो
1: हाँ
0: बीटाडीन लगाते
1: हाँ
0: हैं ना, जख्म पे लगाते
1: ठीक
0: हैं,
1: है।
0: तो मान लो एक भाग का मतलब अगर आप 10 भाग लोगे बीटाडीन के तो 90 भाग आपने लेने हैं लिक्विड पैराफिन के।
1: अच्छा
0: अगर 100 ml बीटाडीन लोगे तो 900 ml आप पैराफिन बना लो, लिक्विड पैराफिन लोगे, उसमें बना लो, घोल लो उसको।
1: हाँ
0: और दूध निकालने के बाद जो एक आधे दूध की जो बूंद बच जाती है थनों पे, उसको आपने साफ कर लेना है। उसके बाद ये जो थोड़ा सा एक ढक्कन में लेके जो बनाया आपने घोल, ये थनों पे, चारों थनों पे लगा देना आपने। ये चिपक जाता है थन पे।
1: अच्छा,
0: हाँ, चिपक जाएगा तो जो नीचे संक्रमण जो है वो थन के अंदर नहीं जा सकेगा।
1: जितनी बार दूध काटें उतनी बार यू काम
0: जितनी बार
1: करें।
0: दूध निकालो, सुबह निकाल लो तो सुबह निकालने के बाद लगा दो, शाम को करो तो शाम को लगा दो। तो उससे आपकी समस्या लगभग 95% तक, पशुपालक इस बीमारी से जो है अपने पशु को बचा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, फिर उसका काटड़ू बाछड़ू है वो भी बाद में दूध पीवे है तो
0: दूध पी
1: फिर।
0: लेने दो उसको, उसके बाद लगा दो।
1: अच्छा
0: हाँ, उसका दूध जो पी ले उसके बाद लगा दो।
1: अच्छा एक थोड़ा सा जिक्र और करूँगा मैं, आप 40-50 साल पहले की बात करो,
0: जी
1: मारे जो बड़े थे वो न्यू दो दिया करते थना ने और न्यू छोड़ दिया करते, इतना ध्यान नहीं रखा करते। आपका भी ध्यान होगा पहले इतनी बीमारी ना आ करती, विषय के कारण हो रहा है।
0: देखिए, एक तो क्या है, कीटाणु भी जो है ना, कीटाणु भी आजकल बीमारी, कई बार ऐसे कीटाणु कितने खतरनाक हो गए हैं कि दवाइयों से मरते भी नहीं है,
1: अच्छा
0: ना, ये भी समस्या आ गई है। और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी पशु की वो भी घट गई है समय के
1: अच्छा
0: साथ साथ।
1: हाँ
0: जो चारा पशु खा रहा है, जो खेत से खा रहा है, उसमें भी खनिज तत्वों की कमी हो गई है। अगर खनिज तत्व प्रॉपर उसको मिलेंगे, जैसे खनिज तत्वों में जिंक है, जैसे
1: हाँ
0: अगर जिंक उसको प्रॉपर मिलेगा तो जिंक जो है, जिंक थन को ठीक रखेगा।
1: अच्छा
0: तो हमारे जो खेती में है, जो अपने खेत में जो जमीन है, उस जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो गई है,
1: अच्छा
0: जिसके कारण जो खनिज तत्व पशु को मिल नहीं पाते और इसके कारण भी थनैला रोग बढ़ रहा है।
1: मतलब शरीर के अंदर ताकत कम रहेगी पशु का,
0: क्योंकि
1: आपका
0: ताकत
1: कहना तो यू है।
0: भी कम इसलिए हुई क्योंकि खेत से उसको प्रॉपर नहीं मिल रहा। जो चारा है, चारे में ताकत नहीं है, क्योंकि खेत की धरती में ताकत नहीं है, तो चारे में ताकत नहीं, चारा जो पशु ले रहा है उसमें ताकत नहीं है।
1: हाँ
0: और उसका तो दूध जो हम पी रहे हैं, अगर उसकी गुणवत्ता आप जांचोगे तो उसमें भी प्रॉपर हमारे को खनिज तत्व, मिनरल, विटामिन नहीं मिल पाते हैं।
1: वातावरण दूषित हो
0: तो
1: गया।
0: इसलिए जो है, मेरी पशुपालक भाइयों से अपील है कि अपने पशु को नियमित तौर पर खनिज मिश्रण 12 मास खिलाते रहें पूरे साल, चाहे पशु ब्याणे वाला हो, चाहे बाखड़ी हो, चाहे गायबण हो, चाहे ब्याण, किसी भी टाइम आप उसको रोके नहीं, इसका कोई नुकसान नहीं है, ये फायदा ही करेगा आपको।
1: बिल्कुल, चलो ये तो आपने जिक्र करा है कारण का, इब उपचार का जिक्र करो आप, जब मान ली इस तरह की दिक्कत आए जा तो फिर उपचार किस तरीके तो है।
0: देखिए, उपचार की जहाँ तक बात है, जैसे पशुपालक जैसे सुबह दूध निकाल लिया, वो शाम को निकालना किसी टाइम देखने आया, तो सबसे पहले तो ये देखेगा भाई थन जो हैं पशु के लाल हो गए, थनों पे मोटा थन जो है ना, मोटे मोटे हो जाएंगे,
1: हाँ
0: और आपको देखेगा लाल हो गए, उसमें लाल हो गए, और उसको हाथ लगा के देखो थनों के, तो उस पर आपको गर्म मिलेंगे वो।
1: अच्छा
0: हाँ, तो आप समझ, गर्म हैं, लाल हैं, तो ये लगो कि भाई इसमें आशंका जता सकते हैं कि थनैला रोग हो गया है। उसके बाद जैसे पशुपालक दूध निकालेगा, तो दूध का जो रंग है वो हो सकता है कि वो दूध के रंग जैसा ना मिले,
1: हाँ
0: वो मटमैला पानी जैसा मिलेगा, उसमें छिछड़े आ सकते हैं,
1: बिल्कुल
0: उसमें कीटाणु, जैसा भी कीटाणु अंदर थन में गए, उस हिसाब से दूध का रंग बदल जाता है। कई बार दूध का रंग लाल आता है, कई बार दूध का रंग हरा हरा आता है, कई बार दूध का रंग जो है ना पीला पीला आता है, कई बार बिल्कुल ही पीला आएगा दूध दूध साथ,
1: हाँ
0: कई बार दूध में खून मिल के आएगा, कई बार थोड़ा सा दूध में हरा हरा रंग आएगा,
1: दूध कई बार आना भी बंद हो
0: आना
1: गया
0: ही बंद हो
1: है।
0: जाता है,
1: हाँ
0: कई
1: ज्यादा
0: बार
1: दिक्कत हो
0: छिछड़े
1: रही।
0: आएंगे, और
1: हाँ
0: कीटाणु ज़्यादा हैं, तो बाद में अगर आपने इलाज नहीं करा तो 3-4 दिन के बाद अगर इलाज नहीं करा तो पस भी आने शुरू हो जाती है,
1: अच्छा
0: मतलब रात भी आनी शुरू हो जाती है।
1: ठीक है जी, तो फिर
0: तो
1: इस आगे के करें इस तरह की
0: उपचार
1: कोई
0: की
1: बात
0: जहाँ तक
1: है।
0: बात है,
1: हाँ
0: जैसे ही पशुपालन देखा भाई, उसके थन में कोई, उसने जो पहले से कोई अंतर देखा, तो उसने तुरंत क्या करना है, अगर थन पे सोई है, लाल है, तो तुरंत आपने डॉक्टर की जा

0: कार्रवाई से पहले
1: हाँ
0: आपने उसको जो है बर्फ की सिकाई करनी थनों पे।
1: अच्छा
0: हाँ, बर्फ की सिकाई करनी है पहले 48 घंटे तक।
1: अच्छा जी,
0: बर्फ की सिकाई करो
1: कई एक बार करें एक दिन में?
0: आप उसको 4-5 बार करो। जितनी बर्फ की सिकाई करोगे उतनी सोई कम होगी, उतना ही थन में आराम आएगा पशु को। शुरुआत में जैसे ही थन खराब होया पहले 48 घंटे उसको आप कोई भी गर्म पानी सिकाई ना करें, कोई नमक के पानी से सिकाई ना करें, गर्म पानी से। कई बार गांव में क्या होता है आयोडेक्स की मालिश कर दे, मल्लम लगा देते हैं
1: हाँ
0: या कोई भाई ग्रीस लगा देते हैं, कई बार तो मूव लगा देते हैं। ऐसा कुछ ना करें, पहले 48 घंटे आप उसको बर्फ़ की ही मालिश करें। कई बार पशु ना थन को हाथ लगाने देता,
1: जी
0: आप लगाने जाओगे बर्फ़ तो हाथ लगाने देता। उसमें आपने क्या करना है, बर्फ़ का एक टुकड़ा एक बाल्टी में डालने, पानी में पानी हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा पानी दूर से आप उसमें थन पे मारते रहें।
1: ठीक बात है।
0: ऐसा 4-5 बार आपने करना है,
1: हाँ
0: तो इससे उस थन की सोई उतर जाएगी और पशु को राहत मिलेगी,
1: अच्छा जी,
0: राहत मिलेगी। तो उसके बाद आगे जो है आप अगले दिन जैसे मान लो कुछ टाइम के बाद डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हो।
1: वो
0: ये
1: जरूरी
0: तो
1: है करना,
0: घरेलू उपचार आपका।
1: ठीक बात।
0: अगर सपोज आपका ऐसी जगह है, आप पशुपालक की जगह जो डॉक्टर भी आसपास नहीं है, तो एक नुस्खा है इसमें, एक नुस्खा ऐसा है उससे भी आप अपने पशु को ठीक कर सकते हो। तो मैं बताना चाहूँगा सभी किसान भाइयों को, पशुपालकों को, आप वो नोट भी कर लीजिए। इसमें आपको 250 ग्राम ग्वार पट्टा,
1: अच्छा
0: ग्वार पट्टा जिसको आजकल बड़ा फेमस है जी, बड़ा
1: एलोवेरा
0: मशहूर है,
1: कह लो ना।
0: एलोवेरा अंग्रेजी में कहते हैं जी,
1: हाँ
0: बाकी
1: ठीक
0: तो
1: बात
0: हिंदी
1: है।
0: में इसने ग्वार
1: हाँ
0: पट्टा
1: ग्वार
0: कहते
1: पट्टा
0: हैं।
1: जो, समझा मैं।
0: आप 250 ग्राम मतलब पाया ग्वार पट्टा आप काट लियो, उसको तुलवा लियो एक जगह, और उसका आपने क्या करना है, जो कांटे से होते हैं कांटे हटाने हैं, बाकी ऊपर का जो बक्कल है वो नहीं हटाना आपने, उसको छोटे छोटे भागों में बांट लियो 250 ग्राम को। उसके अंदर आपने उसको पहले क्या करना है, 250 ग्राम का छोटे छोटे भाग कर लिए बक्कल समेत, उसको आपने मिक्सी में पीस लेना।
1: अच्छा
0: मिक्सी में जब पीस लेंगे घोल सा बन जाएगा, उस घोल के अंदर आपने 50 ग्राम हल्दी डालनी है,
1: अच्छा
0: और 50 ग्राम हल्दी को डाल के उस घोल में फिर आपने मिक्सी में फिर उसको फेंटना है एक बार। आपने ऐसा नहीं करना कि भाई मिक्स पहले जो ग्वार पट्टा काट रखा है उसमें हल्दी मिला देना, ग्वार पट्टा आपने अलग से मिक्सी में घुमाना है
1: हाँ
0: जो मसाला वो बन जाए उसका तरल सा। उसके
1: हाँ
0: बाद 50 ग्राम हल्दी ले लो
1: अच्छा
0: और 50 ग्राम हल्दी डाल के उसको फिर घुमाओ,
1: ठीक है जी।
0: फिर वो जो लाल लाल रंग बन जाएगा थोड़ी देर में आप देखोगे, बंद करोगे मिक्सी को, उसके अंदर आपने फिर 15 ग्राम सफ़ेद चूना डालना है।
1: चुना,
0: चूना होता है जैसे ये जो जो भी पनवाड़ी की दुकान होती है, जो बीड़ी की दुकान होती है,
1: हाँ
0: तो ये लोग रखते हैं चूना, ये जो पान बनाते हैं पान में चूना मिलाते हैं,
1: ठीक बात।
0: तो वहाँ से मिल सकता है आपको। 15 ग्राम चूना मिला दें उसमें और फिर से मिक्सी में एक बार फिर घुमाएं, तो जो लेप, जो एक लेप बन जाएगा उसमें फिर उसको बाहर निकाल लें और बाल्टी में पानी मिलाएं, इतना उसको इतना तरल कर लें ताकि वो आपके हाथ पे जमे नहीं, जैसे आप उसको हाथ से उठाए तो वो नीचे पानी में टपक जाए।
1: मतलब वो जो जितना हमने वो चीज तीनों मिलाई थी वो पानी में गिर का अच्छा तसली तो मिला लिया उसने।
0: उसको बाहर निकाल लो, उसमें पानी मिलाओ, और
1: हाँ
0: इतना पानी मिलाना है आपने ताकि वो इतना तरल हो जाए, ताकि उसमें आप अंदर हाथ डूबोगे आउथ निकाल लोगे तो वो आपका टपकना चाहिए पानी, उसमें से
1: ठीक है।
0: गाढ़ा नहीं होना चाहिए वो।
1: हाँ
0: उसके बाद क्या करना, आपने थन, जिस थन में इन्फेक्शन है तो आपने पूरी लेवटी को पानी से धो लेना है, थन चारों थनों को धो लेना है, बशर्ते बेशक से आपके एक थन में इन्फेक्शन हो।
1: हाँ
0: आपने पूरी लेवटी को धो लेना है, चारों थनों को धो लेना है। धोने के बाद आपने उसको एक कपड़े से तौलिए से सुखा लेना है।
1: ठीक है।
0: सुखाने के बाद जो लेप, ये जो बन गया लेप है, इसको पूरी लेवटी पे और चारों थनों पे आपने लगा देना है,
1: ठीक है जी।
0: ठीक है जी। उसके बाद 1 घंटे बाद आपने लगा के छोड़ देना, 1 घंटे बाद फिर आपने उसको, 1 घंटे बाद फिर धोना थनों को पानी से, फिर सुखाना है तौलिए से और फिर ये लेप लगाना है। तो ऐसे आपने 1-1 घंटे के अंतर पर दिन में कम से कम 7-8 बार आपने ऐसा करना है,
1: ठीक है
0: और
1: जी।
0: अगले दिन सुबह फिर आपने जो बताया मैंने 250 ग्राम एलोवेरा, ग्वार पट्टा, 50 ग्राम हल्दी, 15 ग्राम चूना, फिर दोबारा नए सिरे से फिर बनाना है, और अगले दिन 5-10 बार फिर लगाना है। ऐसा ही 3-4 दिन आप करोगे तो थन वैसे भी आपका बिना दवाइयों के ठीक हो सकता है
1: अच्छा जी,
0: जी।
1: और इस ते बात ना बने तो फिर
0: इससे तो बात नहीं बने तो आप डॉक्टर से भी मिल सकते हो अपने।
1: हाँ मीठा सोडा के तरीका अपनाओ देने का।
0: मीठा सोडा आप पाउडर रूप में होता है,
1: हाँ
0: उसको पानी मिला के नाल के रूप में दे सकते हो,
1: अच्छा
0: उसको चून मोसण के जो है आटे
1: हाँ
0: में उसको गूंद के
1: हाँ
0: उसको खिला सकते हो पशु पशु को।
1: अच्छा
0: तरीका कोई पेट के अंदर जाना
1: पेट में
0: चाहिए,
1: जाना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: जाना चाहिए।

0: ठीक है जी।
1: एक केस में क्या होता है जी कि दूध का रंग भी ठीक मिलेगा आपको, दूध में चरचरापन भी नहीं होगा, पर दूध वैसे थण में एक या दो थण में दूध कम हो गया।
0: अच्छा।
1: पहले एक थण मान लो 2 किलो आया करता, तो उसमें आधा किलो आना शुरू हो गया, 1.5 किलो कम हो गया। उस केस में आपने क्या करना है, पाया नींबू
0: हाँ
1: और पाया खांड और पाया सरसों का तेल या पाया तिलों का तेल,
0: ठीक है।
1: इसका एक पूरा गड्ढा बना के इसका एक खुराक एक बार देनी है। 3-4 दिन दोगे तो वैसे भी थन रिकवर हो जाता है
0: अच्छा।
1: जी।
0: और
1: एक देसी
0: इन
1: उपचार मैं वो बताता हूँ आपको,
0: हाँ
1: कई बार थनों में क्या होता है, जैसे तुरंत ब्याने के बाद,
0: हाँ
1: तुरंत की कोई भैंस गाय कोई या भेड़ बकरी कोई भी ब्याई हो,
0: हाँ
1: तो एक थन में खून आने लग जाता है, साथ में
0: अच्छा।
1: दूध के साथ खून मिल के आता है, कई बार गुलाबी रंग होता है, कई बार गाढ़ा होता है। तो उस केस में आप जो है कड़ी पत्ता, एक कड़ी पत्ता मिल जाता है देसी चीज,
0: हाँ
1: वो 100 ग्राम कड़ी पत्ता पशु को रोज खिलाएं,
0: अच्छा जी।
1: 4-5 दिन खिलाओगे तो खून आना बंद हो जाता है उसके अंदर।
0: अच्छा, तो देसी इलाज आपने दो तीन बताए हैं भाई,
1: हाँ जी
0: नोट भी कर लिए होंगे। और इसके बाद भी देख न्यू का आग्रह कि कितने कितने तो जाकर
1: हाँ,
0: कार
1: कई बार ये
0: पड़ेगी।
1: देसी से नहीं हो पाता तो अपने डॉक्टर
0: हाँ
1: से, आपने जो डॉक्टर नज़दीक है
0: हाँ
1: पशु चिकित्सक, उससे संपर्क करें और अपना इलाज करें
0: और
1: तुरंत,
0: यो काम भी मेरे ख्याल आपकी देख रेख में हो जाता, ठीक है, डॉक्टर की देख
1: क्योंकि ये
0: रेख में।
1: बीमारी ऐसी है बहुत जल्दी जब आती है तो बहुत जल्दी क्षण का नुकसान करती है, तो
0: अच्छा,
1: जितनी जल्दी आप इसका उपचार शुरू करेंगे उतना ही बेहतर होगा।
0: तो फिर कवर का एक दिन में कर ले है इसने यो इलाज, जय देसी भी
1: इलाज
0: कर।
1: अगर तुरंत, जैसे मैंने वो बताया आपको ग्वार पट्टे
0: हाँ,
1: वाला,
0: वो 4-5 दिन मान के
1: हाँ
0: चलो।
1: वो पहले दिन से आपको अंतर महसूस होने लग जाएगा, भाई आराम
0: हाँ
1: शुरू हो जाएगा,
0: हाँ हाँ
1: वो
0: हाँ
1: 4-5 दिन में ठीक हो जाता है।
0: अच्छा। फिर और जब बचाव की बात आओ है, देखो आपने सारी सावधानी बता दी, इलाज भी बता दिए, बचाव में यूँ है कि भाई बचा रह जा थन, कुछ हमेशा करा अपने पशु के साथ व्यवहार है, भाई थना में दिक्कत आवे ना,
1: हाँ
0: उसका
1: भाई,
0: भी
1: नहीं
0: ध्यान करो।
1: उसके लिए मैंने पहले ही बताया था आपको, एक तो अपने जो पशुपालक है उसको अपने हाथ धोने हैं साबुन से
0: हाँ
1: दूध निकालने से पहले, जो थनों पर सफाई करोगे आप दूध निकालने से साफ करोगे, दूध पानी गर्म या ठंडा मारने के बाद उसको आप किसी कपड़े से या किसी कागज़ से साफ कर लेंगे, सुखा लेंगे उसको, उसके बाद दूध निकाल लेंगे, और दूध निकालने के बाद आधे घंटे पशु को खड़ा रखना, आपने ये ध्यान रखना है।
0: ठीक है, ठीक है।
1: और मैंने जो उसे घोल बताया था आपको, 100 ग्राम बिटाडीन का,
0: हाँ
1: बिटाडीन
0: हाँ
1: और 900 ml लिक्विड पैराफिन आती है, उसको मिला के घोल बना लो, वो एक बार ये सारा साल चल जाएगा आपका,
0: बिल्कुल ठीक बात
1: वो
0: है,
1: थोड़ा में उसको डुबो दो, उसके बाद 95% आपकी भी समस्या दूर हो जाएगी।
0: समस्या दूर हो जाएगी। पशुपालक भाइयों, डॉक्टर साहब ने बचाव का भी जिक्र कर दिया और हमने के ध्यान करना है वो भी जिक्र करा, और देसी कुछ उपचार भी बताए हैं, और एक इसी गंभीर समस्या पर आज हमने जिक्र करा है। डॉक्टर साहब, तो बड़ा बढ़िया मौका रहा है। डॉक्टर शक्ति मलिक जी स्टूडियो में आए, ये सारी बात बताई और आप इन्हें सुन रहे हो और इनका ध्यान करेंगे। भाई किसी भाई का पहले पशु का दिक्कत हो रही है वो ध्यान करे, और आगे आने वाले टाइम में कभी दिक्कत हो जाए बात जब भी काम आऊंगी, और किसी दूसरे भाई ने भी बता सके हैं तो इनका फायदा जरूर होगा। तो डॉक्टर शक्ति सिंह मलिक जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और हमारे पशुपालक भाइयों थी, इतनी बढ़िया जो आपने बात बताई, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका।
1: शुक्रिया जी।
2: वह सुनी भाइयों ने बातचीत, और इस बातचीत के साथ है कृषि जगत कार्यक्रम का दस में हाड़े समाप्त। आगे सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आकाशवाणी का यरो तक केंद्र और ईब सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार, और भाई ग्रामीण संसार में भाइयों का मनोरंजन भी कराऊंगे, लेकिन थोड़ी ही बात है, देखो अपना बाल मजदूरी के विरुद्ध विश्व दिवस भी है आज, तो इसके विषय पे देखो बाल मजदूरी हमने छोटे बच्चे काम करते भी देखे होंगे किते होटलों पे या और किते किसी कारणवश या मजबूरी वश, तो इसमें हम लोगों को जागरूक कर सके हैं भाई, बच्चों का विकास छोटा जो बचपन है वो खेलने कूदने का पढ़ाई लिखाई का, लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो उसका बस साथ दें, सारा लगाएं, कोई मदद करें, कोशिश करें मदद करने की, या दूसरों के साथ मिलकर ने कुछ ऐसी मुहिम चलाएं कि भाई जो छोटे बच्चे हैं उनका विकास सही तरीके से हो। और बच्चों के उस पर फिर बात याद आओ कि देखो छुट्टियां का दौर चल रहा है, स्कूलों की छुट्टी हो रही हैं, तापमान भी बढ़ता जा है, और भाई मौसम परिवर्तनशील भी है, साथ साथ में एक दिन बादल वायु हो जाए है, फिर तेज घाम निकल हुआ है, आंधी उड़ा भी आ जाए है। तो इसमें जो है हमने अपने खान पान का भी और जो छोटे बच्चे हैं उनका भी सही तरीके ध्यान हमने रखना है। खान पान का कि भाई देखो बच्चे ऐसे हैं कुछ भी खा पी लें तो घर का उसके पौष्टिक जो आ रहा है बच्चों को वो देने की कोशिश करें, पढ़ने लिखने के लिए भी उनको थोड़ा समय और खेलकूद के लिए भी समय हर समय उनका एक निश्चित कराया जाए ताकि वे बच्चे अपना सही तरीके से काम कर सकें, पढ़ाई का भी, उनका मानसिक विकास भी सही तरीके से और शारीरिक विकास भी सही तरीके से हो पावे। इस तरह का उनके एक रूपरेखा तैयार करें, खेल खेल में बच्चों को समझावें और सही तरीके से सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो भाई भैया कुछ मनोरंजन करा दें, भाइयों को रागनी सुनवा दें। गायक कलाकार हैं महावीर चोपड़ा और उनके साथी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण संसार, आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। शाम के 7:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं रीमा पाराशर।
1: नमस्कार। अब उपलब्धियों की बात होती है तो साल दर साल बात होती है। 12 साल एक लंबा समय होता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं। एक के बाद एक कई रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। एक रिकॉर्ड जिसकी चर्चा हो रही है वो ये कि जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड भी, अब अगर हम बात करें कि कितने समय के लिए और कितने दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर रहे, तो वो रिकॉर्ड भी टूट रहा है। लेकिन सिर्फ बात इन रिकॉर्ड्स की नहीं है, बल्कि बात हो रही है क्या ये नया भारत कुछ विकास लेकर आया, विकसित भारत का नारा जो है वो साकार हुआ। और किसानों के लिए बहुत बात हो रही है, क्या किसान वाकई में खुश हैं, क्योंकि किसानों से सीधे जो जुड़ाव रखते हैं वो खास मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको मामा भी कहते हैं लोग, अब आप पहचान ही गए होंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: धन्यवाद आपका।
1: अब मैं आपको मामा जी तो नहीं कहूँ, लेकिन मैं आपको नेता के तौर पर पहले शुरुआत करती हूँ। गर्मी बहुत है, किसान खुश है?
2: किसान खुश रहे इसके लिए सरकार दिन और रात काम कर रही है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने

0: तीसरी बार शपथ ग्रहण की थी, उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, उनका अभिनंदन। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का निर्माण उनके नेतृत्व में हो रहा है और मैं अभी 2 साल से उनके साथ मंत्री हूँ। मेरे जैसे कार्यकर्ता का सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उनको बहुत बहुत बधाई।
1: अब क्योंकि आपने नरेंद्र मोदी जी से ही शुरुआत की है, मैं अपने हाथ में आपकी किताब भी लेकर आई थी, अपनापन। ये किताब आपने नरेंद्र मोदी संग आपके अनुभव, तो 2 साल से तो प्रधानमंत्री के तौर पर आप उनको देख रहे हैं, आप उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, सरकार में एक अहम पद पर हैं आप, लेकिन आपने जो इस किताब में अपनापन बताया है, आजकल अपनापन ये शब्द ही इस्तेमाल होना ऐसा लगता है खत्म हो गया है। कोई रणनीति की बात करता है, भारी भरकम शब्दों की बात होती है, ये अपनापन क्या जुड़ाव है मोदी जी के साथ?
0: भारतीय संस्कृति का मूल है एक ही चेतना हम सब में है, इसलिए दूसरा कोई है ही नहीं, आत्मवत सर्वभूतेषु। और यह भाव मैंने सदैव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन में और उनके काम में देखा। अपनापन अपने सहयोगियों के लिए, अपनापन अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनापन देश की संपूर्ण जनता के लिए, अपनापन पीड़ित विश्व मानवता की सेवा के लिए। और इसलिए जब कोविड जैसी महामारी आती है तो वैक्सीन केवल भारत की जनता को नहीं लगती, 100 अलग अलग देशों के लोगों को भी लग जाती है। अगर प्राकृतिक आपदा किसी दुनिया के दूसरे देश में आती है तो सबसे पहले भारत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने हाथ आगे बढ़ाता है सहायता और सहयोग के लिए। लेकिन ये अपनापन केवल मनुष्य मात्र के लिए नहीं है, प्राणियों के लिए भी अपनापन। और इसलिए चाहे टाइगर हो चाहे चीता हो, वो सुरक्षित रहे, पुनर्वास हो, इसके प्रयत्न किए जाते हैं। अपनापन पेड़ पौधों के लिए, इसलिए एक पेड़ माँ के नाम जैसा अभियान चलता है, पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की कोशिश होती है। अपनापन नदियों के लिए, और इसलिए गंगा जी से लेके बाकी सब नदियों को बचाने का अभियान चलता है। अपनापन पशु पक्षियों के लिए भी और पेड़ पौधों के लिए भी, नदियों पर्वत पहाड़ों के लिए भी और ग्रह नक्षत्र तारों के लिए भी, चारों तरफ अपनेपन का भाव दिखाई देता है। और वो अपनापन का अनुभव साथ काम करते हुए मैंने स्वयं भी किया है और सबके लिए अपनापन देखा, इसलिए किताब का नाम अपनापन। इससे आत्मीय और कोई शब्द नहीं मिला मुझे।
1: आपने कई जगह ये जिक्र किया है कि बहुत सारे ऐसे पल थे जिसमें कई बार आप भावुक हुए और आपने उनको याद किया नरेंद्र मोदी को, जैसे आपने बताया कि 23 के चुनाव के समय तमाम ऐसे मुद्दों पर उन्होंने सीधे आपको फोन किया और उन्होंने कहा मैं किसी नेता से नहीं, अपने शिवराज से बात कर रहा हूं। ये जो एक कनेक्ट है मोदी जी के साथ, यही वो कनेक्ट है जो जनता के साथ भी महसूस होता है आपको?
0: सबके साथ ही, मैं अकेला ऐसा नहीं हूं, ऐसे अनेकों साथी होंगे। जब ऐसा लगा कि उनको अपनेपन की जरूरत है तो उनसे किसी पद के कारण बात नहीं की, स्नेह प्रेम और आत्मीयता से बात की। और जब कांग्रेस के लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि अब तो मामा का श्राद्ध हो जाएगा और अलग अलग तरह की चीज़ें चल रही थी, तब उनने फ़ोन करके कहा ना चुनाव की बात, ना मुख्यमंत्री से बात, अपने शिवराज से बात। यही तो अपनापन है।
1: शिवराज जी, अब क्योंकि हम 12 साल की बात कर रहे हैं, 12 साल में सबसे बड़ी उपलब्धि आप इस सरकार की क्या मानते हैं?
0: प्रधानमंत्री जी पूरी शिद्दत से अपना एक एक क्षण देश की और जनता की सेवा में लगा रहे हैं। और अंतर अगर देखना हो तो हम नहीं कहते, जमाना कहता है। एक जमाना वो था जब दुनिया के किसी देश में जाते थे तो कोई मान सम्मान और स्थान नहीं मिलता था। भारत को, हमारे प्यारे देश को, एक दिन आज का है जब जहां देखो पूरे सम्मान के साथ भारत का नाम लिया जाता है। हमारे देश के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। मैं विश्लेषण करूं क्या हुआ है तो घंटों लग जाएंगे, उपलब्धियां कितनी हैं, लेकिन देश आज पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ दुनिया में खड़ा है और कई मामलों में दुनिया का नेतृत्व कर रहा है भारत।
1: ये तो वैश्विक स्तर की बात हो गई, लेकिन अगर अपने देश में सबसे बड़ी उपलब्धि देखें, जैसे आपको मामा, जो मैंने कहा इसलिए जाना जाता है कि बहनों, माताओं और सबके लिए आपने ऐसी स्कीम, लाडली बहना हो या तमाम स्कीम्स हो, कि पूरे देश ने बाद में उसको फॉलो किया, ऐसी क्या बड़ी उपलब्धि है केंद्र सरकार की जो एक आपको अगर गिनानी हो?
0: देखिए, एक तो संकट है
1: जिसको इतिहास याद रखेगा,
0: 25 करोड़, देखिए इतिहास को याद रखने वाली भी चीजें कही है, चाहे धारा 370 हो, अयोध्या में राम मंदिर हो, विकास से विरासत के एक नहीं अनेकों काम हो, नक्सलवाद से देश को मुक्त करना हो। कौन सोचता था कि ये दिन आएगा कि बस्तर की गलियों में आज शिक्षा से लेके रोजगार से लेके शांति की बयार बहेगी, कौन कल्पना करता था? अगर वो गुनाऊंगा तो संख्या बहुत बड़ी है, लेकिन आम जनता की दृष्टि से अगर देखें, बहनों की बात करें तो 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, इज्जत घर जिनका नाम दिया था जनता ने, 10 करोड़ हमारी ऐसी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में सम्मिलित है जिनमें से 3 करोड़ हमारी दीदियां लखपति दीदी बन गई है, गरीबों के 4 करोड़ से ज़्यादा घर बन चुके हैं। आप किसानों को अगर देखें तो 4 लाख करोड़ से ज़्यादा राशि किसानों के खाते में सीधे डालने का काम हुआ है। मैं अगर गिनाऊंगा तो इतने काम हैं कि समय कम पड़ता है। तो गरीबों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, हमारे नौजवानों के कल्याण के काम सोचने का मामला हो, गरीब किसान महिला नौजवान सबकी प्रगति और विकास के लिए अनेकों कदम उठे हैं और आप देखेंगे कि जीवन स्तर में लगातार सुधार हो रहा है।
1: शिवराज जी, आप इतने अनुभवी नेता हैं, ऐसा कुछ लग रहा है कि एक साल के अंदर सरकार गिरने वाली है? LOP तो ऐसा ही मानते हैं राहुल गांधी, उनका कहना है एक साल भी नहीं चलेगी। बहलाने
0: को गालिब ख्याल अच्छा है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं कि सरकार के अंदर बैठे हुए लोग उनको ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं।
0: ये कौन से ज्ञान चक्षु है उनके पास, दिव्य दृष्टि है, ये तो वो ही बता सकते हैं। लेकिन अभी तो 2029 आने वाला है, 2029 जीतेंगे हम मोदी जी के नेतृत्व में, और 2029 के बाद 2034 जीतेंगे, और 2034 के बाद 2039 भी जीतेंगे। वो ख्याली पकाओ, पकाना बंद करें, मुंगेरी लाल के सपने ना देखें।
1: बच्चों से आपका जुड़ाव काफी ज्यादा है, मामा सब कहते हैं। नीट एग्जाम को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद पैदा हुआ है, बात हो रही है कि भाई क्या सरकार सही कर रही है।
0: हम बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, कोई अन्याय नहीं होने देंगे। जैसे ही अनियमितता का पता चला, धर्मेंद्र जी ने तत्काल कदम उठाया, परीक्षा निरस्त की गई। दूसरी परीक्षा की तिथि 12 मई के बाद 15 मई को तत्काल घोषित कर दी गई, फीस लौटाई गई, अगली परीक्षा के लिए कोई फीस नहीं लगेगी, और संपूर्ण व्यवस्थाएं ऐसी बनाने की कोशिश की है, प्रयत्न किया है कि जिससे कहीं कोई गड़बड़ और दिक्कत ना हो। CBI को मामला दिया गया, अपराधी कई पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जो सारे कदम उठाए जाने थे वो हर कदम उठाए गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी लगातार सजग और सचेत हैं, पहले भी पेपर लीक होते थे, इतनी तत्परता से कब कार्रवाई होती थी, लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है और एक के बाद एक जरूरी कदम उठाए गए।
1: आपने जो बात कही, पहले भी पेपर लीक होते थे, तो ये नैरेटिव की लड़ाई में क्या पीछे रह गए हैं कि ये बात सही से सामने नहीं आ पा रही है कि पहले और अब में ऐसा कोई बड़ा अंतर नहीं?
0: ये है कि पहले कुछ नहीं होता था, अब कठोर कार्रवाई हुई है और जहां भी गैप मिला उसको ठीक करने की, भरने की कोशिश की गई।
1: मतलब बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होगा?
0: सवाल ही पैदा नहीं होता। बच्चे देश का भविष्य है, बच्चे हमारी सबसे बड़ी दौलत है, किसी भी कीमत पर उनके साथ ना तो अन्याय ना खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, यही सरकार का संकल्प।
1: क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो भारत है इसमें गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है? क्योंकि एक बड़ा आरोप ये भी लगाया जा रहा है, एक नैरेटिव पूरा सेट करने की कोशिश हो रही है।
0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर उठ गए और वो कह रहे हैं गरीब गरीब होते जा रहे हैं।
1: नहीं तो हकीकत क्या है, इसका जवाब आप कैसे देंगे ऑपोजिशन को?
0: हकीकत तो यही, जनता जान देखिए, हकीकत है पश्चिम बंगाल, हकीकत है बिहार, हकीकत है दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कहीं भी आप देख लीजिए, हर जगह अपवाद इक्का दुक्का छोड़ के भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त कर रही है, NDA शानदार सफलता प्राप्त कर रहा है। इसका अर्थ सीधा ये है कि जनता सरकार के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है।
1: इसमें वोट चोरी का कोई रोल नहीं है?
0: नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। वोट चोरी होती तो तमिलनाडु भी जीत जाते।
1: नहीं लेकिन अब देखिए, अब ज्ञानेश कुमार जी को लेकर के भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना कि वोट चोरी है, और फिर जहां जहां बीजेपी जीत रही है वहां वहां पर विकसित भारत की बात नहीं हो रही, वहां वहां पर नैरेटिव वही आ जाता है, डेमोग्राफिक चेंज हो रही है या फिर हिंदू मुसलमान। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं अभी से यही बात हो रही है।
0: केवल भारत का विकास है और जनता का कल्याण, ये दोनों काम दिन और रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं, इसलिए जनता साथ खड़ी है। उपलब्धियां तो मैं कई घंटों आपको गिना सकता हूँ
1: सर, लेकिन नेहरू जी का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, नेहरू जी वो प्रधानमंत्री थे जो कि जब भारत आजाद हुआ स्वतंत्र भारत के बाद की नींव रखी, नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत की बात कर रहे हैं, दोनों के इस अंतर को आप कैसे देखते हैं?
0: देखिए, कौन कितने समय प्रधानमंत्री रहा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि कौन ने कैसा काम किया। एक जमाना था जब भारत को अपनी जनता का पेट भरने के लिए ही दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। PL 480 जैसा गेहूं, लाल गेहूं, जिसको मतलब जो इंसानों के खाने के लायक ही नहीं था, वो हम इंपोर्ट करते थे उस जमाने में। विकास की दृष्टि नहीं थी, कई ऐसे फैसले हुए जिनने देश और देश की जनता को बहुत नुकसान पहुंचा है। सिंधु जल समझौता ही अगर हम देखें, आज वो पानी हमारे काम आ रहा है जो बह के पाकिस्तान जाता था। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 24 घंटे मतलब मैं तो कहूँगा कि 24 घंटे में से भी हर क्षण, हर मिनट और हर सेकंड राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। निरंतर काम, राष्ट्रहित सर्वोपरि, जनहित सर्वोपरि, इसी भाव से निरंतर काम चल रहा है। और चाहे वो देश के विकास का काम हो, इंफ्रा का सवाल हो, गरीबों के कल्याण का सवाल हो, किसानों के उत्थान का सवाल हो, नौजवानों के बेहतर भविष्य के निर्माण का सवाल हो, या महिला सशक्तिकरण का मामला हो, आप चारों तरफ देखेंगे कि एक के बाद एक अनेकों निर्णय हो रहे हैं, लागू किए जा रहे हैं और वो जनता की जिंदगी बदल रहे हैं।
1: शिवराज जी, आप तो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ हर दूसरे दिन आप देश के किसी ना किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग जगह पर। लोग आपसे ये बात करते हैं कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं या LPG के दाम की बात पूछते हैं क्या लोग?
0: आप तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, मिडिल ईस्ट के संकट के बाद दूसरे देशों में कितने दाम बढ़े हैं और हमारे यहाँ कितने दाम बढ़े हैं। जनता बहुत समझदार है, हर परिस्थिति जनता के सामने है। मिडिल ईस्ट के संकट को भी जनता अच्छी तरह से पहचानती और समझती है, और प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिए हैं, जो कदम उठाए हैं, उससे देश के सामने जो बड़े खतरे और संकट हो सकते थे उनसे निपटने में मदद मिली है, और जनता ये सच जानती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी का संकट को पहचानना और पहचान के रास्ते निकालना, अभी जो उन्होंने अपील की पिछले दिनों, और अपील की उन कई लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया। कोविड से जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी निपटे, अगर कई बार मैं सोचता हूँ तो मतलब मन कांप जाता है कि मोदी ना होते तो क्या होता। दो दो वैक्सीन 9 महीने के अंतराल में बनकर लग भी गई, केवल हमारे देशवासियों को नहीं लगी, दुनिया के कई देशों के लोगों को भी लगी। और जिस ढंग से जनता कर्फ्यू, थाली ताली, दीपक जलाओ, आप एक के बाद एक कदम के बारे में सोचिए। जब ऑक्सीजन नहीं थी तो ऑक्सीजन की स्पेशल ट्रेनें चली और खाली जो टैंकर थे वो वायुसेना के हवाई जहाजों से वापस भेजे गए। जिस ढंग के कदम उठे, कोई कल्पना करता है क्या? अब कोई तो कोविड में भी आनंद देखे कि जनता परेशान है और वो आनंद ले। अगर विपक्ष की मानसिकता हो तो मैं उनकी बुद्धि को मैं क्या कहूँ। इसलिए हर संकट में अवसर ढूंढना राजनीति के ये गलत है। हर संकट का मुकाबला भारत ने बहुत मजबूती से किया है। परिस्थितियां बनती है तब कुछ निर्णय होते हैं, लेकिन देश लगातार आगे बढ़ता है।
1: मैंने पता किया, मुझे पता लगा कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने ये अपील की थी, आपने उसी दिन तुरंत अपने ऑफिस में कर्मचारियों को सबको बुलाकर उनको बताया था कि अब क्या करना है, कैसे प्रधानमंत्री की अपील का एक तरीके से पालन करना है। आपने भी कुछ टिप्स अपने ऑफिस में दे दिए थे लोगों को?
0: तत्काल ही देखिए, मैं तो उनके हर भाषण को ध्यान से सुनता हूँ। पहली बार जब मैं मंत्री बना उनके नेतृत्व में, और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरे टर्म में मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा। मैंने तुरंत वहां से उतरते ही लाल किले की प्राचीर से अपने दोनों सचिवों को फोन किया, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, और कहा कि कल सारे कर्मचारी अधिकारी इकट्ठे होंगे, बाकी सब वर्चुअल जुड़ेंगे, और हम सब ने खड़े होकर संकल्प लिया राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए कि हम भी 3 गुना ताकत से काम करेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो हम पीछे कैसे रहें। उन्होंने इस बार कहा कि सरकार फाइल में नहीं, जनता की लाइफ में दिखनी चाहिए। हमने तुरंत नियम और प्रक्रियाओं के सरलीकरण का एक व्यापक अभियान छेड़ा कि जनता को कोई तकलीफ ना हो किसी भी कीमत पर। जो अभी उनकी अपील आई उस पर तुरंत हमने अमल करते हुए कैसे हम कार पूलिंग कर सकते हैं,
1: अच्छा,
0: कैसे विदेश यात्रा अनावश्यक बिल्कुल नहीं करनी है, डीजल पेट्रोल कैसे बच सकता, उसके एक एक कदम हमने उठाए जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश की।
1: तो आप भी कार पूल करते हैं अगर बाहर जाते हैं तो?
0: हम बैठक में जाते हैं कैबिनेट की, और दूसरे मंत्री जा रहे हैं तो हम साथ बैठ के जाते हैं। काय को हम दूसरी कार ले जाएं, जब पिछली बार बैठक में हम 3 मंत्री एक साथ गए थे कार।
1: अच्छा, देखिए ये सब खबरें बाहर नहीं आती है, ये पता ही नहीं चलता किसी को,
0: और इसलिए कोशिश करते हैं कि यथासंभव जनता के काम को नुकसान ना पहुंचाते हुए हम जो भी बचत कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें।
1: शिवराज जी, AI नैनो की भी बहुत बात हो रही है, उसको लेकर थोड़ा सा विजन बताइए कि क्या विजन है, और इससे किसानों को किस तरीके से, मतलब अगर कुछ दिक्कत है तो सामना कैसे करें और फायदे क्या पहुंच सकते हैं?
0: देखिए, हमको एग्रीकल्चर के माध्यम से अगर आप बात करते हैं तो 3 बड़े लक्ष्य हमारे। एक, देश की खाद्य सुरक्षा में सुनिश्चित करना है। दूसरा, पौष्टिक आहार जनता को उपलब्ध कराना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, इन दोनों से भी किसान की आजीविका और रोजगार सुनिश्चित करना है। और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है

0: उत्पादन में भी कोई लाभ नहीं होता। तो एआई के ऐसे अनेकों उपयोग हैं जो निरंतर कर रहे हैं। अभी अल नीनो का संकट दुनिया पे बरकरार है, केवल भारत नहीं, दुनिया के मौसम विज्ञानी ये कह रहे हैं कि अल नीनो के कारण यहाँ बारिश कम हो सकती है। हमने वो 197 डिस्ट्रिक्ट्स की पहचान की है जहाँ कम बारिश होने की संभावना है, और हमने एआई के माध्यम से उन जिलों को न केवल पहचाना है बल्कि उनका कंटेंजेंसी प्लान बना रहे हैं कि वहां अगर ऐसी परिस्थिति बनी है, संभावित है, क्योंकि मौसम के बारे में 100% कोई नहीं कह सकता, संभावित है, तो उनका कंटेंजेंसी प्लान हमने बनाया है। उन जिलों में कौन सी फसल बोनी चाहिए, कौन से बीज इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी किस्म बेहतर रहेगी। अगर बारिश में तो स्पेल में लंबा गैप हो गया, एक दिन बारिश हुई और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद बारिश होती है, तब हमको क्या करना चाहिए, तो सारी चीजों का आकलन करके और उसकी एआई की मदद से हम उससे कैसे निपटेंगे, इसका प्लान भी हम तैयार कर रहे हैं। मध्य भारत के कई इलाकों में कम बारिश की संभावना है तो उनमें हम क्या करेंगे, उसका प्लान हमने तैयार किया है। हम उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजी का सहारा हम ले रहे हैं। हर सप्ताह मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, रोज हमारे अफसर मॉनिटरिंग करते हैं कि आज मानसून कहाँ पहुंचा, कितना पहुंचेगा, किस गति से बढ़ेगा, कहाँ कम संभावना है, कहाँ ज्यादा संभावना है, तो सब चीजों का आकलन करके हम फैसले कर रहे हैं।
1: आपको लगता है शिवराज जी कि बंगाल के इलेक्शन ने ये तुष्टीकरण और ये वोट बैंक की राजनीति को काफी हद तक खत्म किया है?
0: देखिए, सीधा तुष्टीकरण अब ये देश स्वीकार नहीं करेगा, वोट बैंक की राजनीति ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आज गर्व के साथ हम कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी एक सुपर ह्यूमन है, भारत के लिए भगवान का वरदान है। उनके नेतृत्व में जो हम कर रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा हो, घुसपैठ जैसे मामले हो, प्रगति और विकास और जनता का कल्याण तो है ही, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय सर्वोपरि मानते हुए, जो विश्व हित की भी सोचता हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी का रास्ता है, ये नरेंद्र मोदी जी का विजन है।
1: शिवराज जी, बहुत बेबाक तरीके से आपने बात की। एक ऐसी बात नरेंद्र मोदी के बारे में, क्योंकि हम 12 सालों पर बात कर रहे हैं और रिकॉर्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो आप हमेशा उनसे सीखते हैं और उनकी बात को याद रखते हैं, क्या वो एक स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री हैं, नेता हैं, या सॉफ्ट हार्टेड हैं, क्या हैं?
0: केवल एक ही घटना में सुनाऊंगा। एक बार मैंने उनके सामने, मैं और वो दोनों थे, उनके कामों की प्रशंसा की कि ये बहुत अच्छा हुआ, देश इसको बहुत पसंद करता और हमारे मन में भी आपके प्रति श्रद्धा का इसलिए भाव है, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा, मैं प्रशंसा से नहीं, मैं काम से प्रसन्न होता हूँ, जो काम करेगा उसको कंधों पर बैठा के मैं नाच सकता हूँ, लेकिन प्रशंसा मैं नहीं सुनता, केवल काम पसंद करता हूँ। और वो चीज़ मुझे हमेशा ध्यान में रहती है, काम करो, काम करो, काम करो, चलते रहो, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, अपने देश के लिए काम करते रहो, अपनी जनता के लिए काम करते रहो, इसी में मानव जीवन की सार्थकता है।
1: बहुत आपने एक हम सबको भी एक सीख दी चरे वेती के इस मंत्र के साथ, और यही मंत्र होना भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शिवराज सिंह चौहान जी हमारे साथ इस खास बातचीत।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी रीमा पाराशर। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अब सुनिए संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत।
3: ।26 मई 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली। उस समय उन्होंने सिर्फ एक सरकार नहीं बल्कि एक नए भारत के संकल्प को नई ऊर्जा दी, और तब से लेकर के पिछले 12 सालों में चाहे विकास की बात करें या सुशासन की बात करें, महिलाओं के सम्मान की बात करें या फिर गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत की बात करें, लगातार मोदी सरकार पूरे देश में काम कर रही है। और गुलामी की मानसिकता की जब हम बात करते हैं तो जो हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, कैसे आगे बढ़ रही है पूरी आधुनिकता के साथ में, ये भी हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति अपना परचम लहरा रही है और केंद्र सरकार का बराबर साथ दे रही है। केंद्र सरकार का मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय, तो खास मेहमान है संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में।
4: धन्यवाद।
3: भारत किस तरीके से जो उसकी संस्कृति थी, सभ्यता थी, वो उसका पुनः जागरण हो रहा है।

0: हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवाहन गुलामी की मानसिकता से मुक्त भारत, तो उसको संस्कृति मंत्रालय कैसे आगे लेके जा रहा है?
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिया वो यह है कि भारत की जो सभ्यता है वो युगे युगीन है, वो युगों युगों से चली आई है और वो अटूट है। बीच में ऐसे कालखंड आए जिन कालखंडों में इस अटूट सभ्यता को तोड़ने की कोशिश की गई या जो इस सभ्यता के स्मारक थे उनको तोड़ने की कोशिश की गई, और इन सब प्रयासों के बाद भी जो हमारी युगे युगीन भारत की सभ्यता है वो अनावृत चलती रही। इस अध्याय को पुनः स्थापित करने के लिए और जो गुलामी का कालखंड रहा उसकी याद को समाप्त करने के लिए या उसकी याद को एक ऐसे पृष्ठभूमि में रखने के लिए जिससे कि हम अपनी प्राचीन सभ्यता, हमारी परंपराएं, हमारी ज्ञान परंपराएं, उनको हम पुनः स्थापित कर पाएँ और हमारे जो नागरिक हैं, खासकर जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके समक्ष ला पाएँ, उसके लिए बहुत सारे कदम भारत सरकार ने उठाए। बहुत सारे जो हमने काम किए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, उसमें कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो कॉलोनियल समय में भारत की सेक्रेटेरिएट थी और जहाँ से भारत के राज्य का संचालन अंग्रेज़ करते थे, उस नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब एक नया म्यूज़ियम बनाने की घोषणा की, जिसपे हम काम कर रहे हैं, और वो भी म्यूज़ियम युगे युगीन भारत के नाम से। भारत की जो ज्ञान परंपरा है, अगर आप लॉर्ड मैकले ने जब भारत की एजुकेशन पॉलिसी बनाई कॉलोनियल के समय में, उन्होंने कहा कि यूरोप की किसी भी लाइब्रेरी में जो एक शेल्फ की किताबें हैं वो भारत की पूरी ज्ञान परम्परा से ज़्यादा बेहतर हैं, उसको जो वो भावना भारत में लाने की कोशिश की गई कॉलोनियल राज द्वारा, उसको मिटाने के लिए और भारत की जो अपनी ज्ञान परंपरा है उसको पूरे विश्व के सामने लाने के लिए और भारत के नागरिकों के सामने लाने के लिए ज्ञान भारतम का काम प्रारंभ हुआ है, जिसमें जो हमारी हस्तलिखित मैनुस्क्रिप्ट्स हैं, जो हमारी पांडुलिपियाँ हैं, जो विभिन्न विषयों पर हैं, खासकर जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स पर हैं, वो चाहे मैथमेटिक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो, हीलिंग सिस्टम्स हो, मेडिसिन हो, जो चिकित्सा के साथ साथ जो सर्जरी की डेवलपमेंट थी उसके ऊपर जो हमारा काम था, उस सब को अब हम पूरे विश्व के सामने ला रहे हैं, एक नेशनल रिपोजिटरी बना रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे ऐसे ऐतिहासिक स्थल थे, हमने उनको पुनः निर्मित करते रहे, बार बार तोड़ते रहे और हम निर्मित करते रहे, इसको भी भारत की याद में दोबारा भारत के नागरिकों के समक्ष लाने के लिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व हम मना रहे हैं।
0: सर, आपने युवा पीढ़ी की बात कही, जहां किसी भी देश का, हम कहते भी हैं कि अगर कोई भी देश आगे बढ़ रहा है तो उसका जो आधार होते हैं उस देश के युवा होते हैं, और जैसा कि हमने किताबों में भी पढ़ा है कि चाणक्य ने कहा था कि अगर किसी देश को ख़त्म करना है तो उसकी संस्कृति ख़त्म कर दीजिए, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। आपने अभी जिक्र करा शिक्षा में भी बदलाव हो रहा है, और अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी की, नालंदा यूनिवर्सिटी जो हमारे यहाँ इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है कि जब पूरा विश्व समझने की कोशिश कर रहा था कि सभ्यता होती क्या है, उस वक्त हम सभ्यता के धरातल पर दौड़ रहे थे, और उसको भी संस्कृति मंत्रालय अब आगे लेके जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे?
1: भारत की ज्ञान परंपरा का एक बड़ा सेंटर नालंदा विश्वविद्यालय था, जो प्राचीनतम, जो विश्व में अकेला ऐसा बड़ा विश्वविद्यालय था जिसके साथ पश्चिम भारत में तक्षशिला था। नालंदा की जो परंपरा थी उसको इसी कालखंड में, जब भारत पे हमारे पे अतिक्रमण हुए, हमारे पे बहुत सारे आक्रमण हुए, उस समय नालंदा पे भी आक्रमण हुआ, उसकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी, उसका पूरी व्यवस्था उध्वस्त करने का प्रयास हुआ, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब नालंदा की जो ज्ञान परंपरा है उसका पूरा रिवाइवल हुआ है। वहाँ पर नालंदा बिहार विश्वविद्यालय चल रहा है, जिसमें जो बुद्धिस्ट और पाली लैंग्वेज और पोटी लैंग्वेज का जो लर्निंग है वो होता है, इतिहास, संस्कृत, और साथ में जो सांस्कृतिक धरोहर नालंदा की थी, जो ज्ञान परंपराएं थी उसके ऊपर वहाँ पे शिक्षण का कार्य होता है, उस पर रिसर्च का कार्य होता है। उसी तरह जो नई नालंदा यूनिवर्सिटी बनी है, जिसमें मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ ट्रेडिशनल एजुकेशन को साथ जोड़ के एक बहुत बड़ा कार्य इस सरकार द्वारा इस समय में किया गया है।
0: आपने अभी जिक्र किया राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो राष्ट्रीय स्मारकों का जो पुनर्निर्माण हो रहा है, या जो हमारे राष्ट्रीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बारे में बच्चों को नहीं पता था, मतलब आज की जेन ज़ी की अगर मैं बात करूँ तो वो ज़्यादा जानते हैं, रादर हम अपनी बात करें अपने समय में हमें नहीं पता था, तो उसके लिए क्या आपको लगता है कि ये इस तरीके से अगर ये दोबारा निर्माण किया जा रहा है, या फिर जो स्थानों के नाम राष्ट्रीय सेनानियों के नाम पर रखे जा रहे हैं, क्या उससे कोई बदलाव आएगा और एक जो सभ्यता है वो पुनः जागृत होगी?
1: बिल्कुल, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जब कॉलोनियल शासन था तो अंग्रेजों के जो उस समय के प्रशासक थे या उस समय के गवर्नर जनरल थे या वाइसरॉय थे, उनके नाम पे बहुत सारे भारतीय स्थानों के नाम रखे गए। जैसे पोर्ट ब्लेयर था जो अब श्री विजयपुरम है, जो वहाँ पे द्वीप थे वो अब नेताजी द्वीप के नेताजी के नाम से द्वीप हुआ। जो बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जिनमें कॉलोनियल लिगेसी थी, उनको परिवर्तन करके हमने अपनी जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको पुनर्जागृत किया है। इसी प्रकार जो ऐतिहासिक स्थल हैं या जो पुरातत्व स्थल हैं, उनको हम अगर विकसित करते हैं और उनके ऊपर हम विजिटर एमिनिटीज अच्छे से डेवलप करते हैं, और खासकर वहाँ के जो इंटरप्रिटेशन सेंटर हैं, और वहाँ पे अगर हम ऑडियो विजुअल गाइड के साथ एआर वीआर एक्सपीरियंस क्रिएट करके हम पूरा नैरेटिव जो वहाँ पे जो हमारे यूथ हैं, हमारे नए पीढ़ी के लोग हैं, वो जाते हैं, तब उनको वो समझ में आएगा कि वास्तव में इतिहास में इन स्थानों का क्या महत्व था और क्या हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की ऊंचाई थी प्राचीन समय में। जैसे लोथल में एक बहुत बड़ा मैरीटाइम म्यूजियम स्थापित हो रहा है। ये लोथल 5000 वर्ष पुरानी साइट है। 5000 वर्ष पहले यूरोप अमेरिका में तो कुछ भी नहीं था, परंतु भारत में एक बहुत बड़ी सभ्यता थी और उस सभ्यता का संपर्क था विश्व की अन्य सभ्यताओं के साथ, और डॉकयार्ड था, पूरा मैरीटाइम सिस्टम था, वेयरहाउसेस थे, ट्रेड का सिस्टम था, सील्स थी, करेंसी थी, तो एक पूरी विकसित सभ्यता थी जिसको उजागर अगर हम अच्छे से प्रॉपरली इन साइट्स को डेवलप करके करते हैं तो हमारी युवा पीढ़ी को उसकी उसका महत्व और उसकी ज्ञान की जो जो जो ज्ञान का ज्ञान की प्राप्ति होगी, उससे ना केवल नेशनल प्राइड डेवलप होगा बल्कि जो एक पूरा माइंडसेट है वो भारत के नागरिकों का बदलेगा।
0: एक सवाल मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी, खासकर हमारी जेंजीज के लिए, क्योंकि आपने दोनों दौर देखे हैं सर। आपने वो दौर भी देखा जब ये गुलामी की जो मानसिकता थी वो पूरी तरीके से छाई हुई थी, और अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति, अपने ही इतिहास से हम वंचित थे, और आज जब आप इस दौर में हैं, संस्कृति मंत्रालय के सचिव बनकर जब आप विदेशों में जाते हैं, कई कार्यक्रम करते हैं, तो और खास कर जब भारत की वो पुरानी धरोहर हैं, वो मूर्तियाँ, वो अमूल्य चीजें आप जब भारत वापस लेकर के आते हैं, तो कैसा महसूस होता है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को?
1: देखिए, एक मिक्स्ड भावना होती है। जब विदेश में जाते हैं तो कई बार हमें दिखता है कि भारत की धरोहरें उन्होंने अपने म्यूजियम्स में रखी हुई हैं और वो प्राउडली उनको डिस्प्ले करते हैं, तो मन में ये भी आता है कि ये धरोहर भारत की है और भारत के पास वापस आनी चाहिए। पर जब हमें कुछ हिस्सा धरोहर का हमें वापस मिलता है और हम वापस भारत में लेके आते हैं, तो एक बहुत गर्व की भावना भी होती है, क्योंकि ये तभी संभव हो पाया जब सरकार ने बहुत निश्चय करके इस मूवमेंट को स्टार्ट किया है। बट ये शुरुआत है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इसको लीड कर रहे हैं और जिस तरह से पूरी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच है, इसमें ना केवल भारत का कल्चर मंत्रालय या संस्कृति मंत्रालय काम करता है, बल्कि भारत के सभी मिशन्स, सारे एम्बेसीज, सारे हाई कमीशन्स, हमारे हाई कमिश्नर्स और एम्बेसडर्स पूरे विश्व भर में इस कैंपेन का हिस्सा बन के इस काम को कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो हम करते जा रहे हैं और जितनी हमें सफलता प्राप्त हो रही है, उससे पूरे भारतवासियों को उस पर गर्व होगा। पर मैं ये भी मानता हूँ कि और भी काम होना है, उस काम के लिए हमें और शक्ति हमारा देश देगा, हमारे नागरिक देंगे। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भारत की रिस्पेक्ट और भारत की वॉइस जो आज सुनी जा रही है विश्व में, वो पहले कभी नहीं थी। जैसे आपने कहा कि मैंने पूर्व का दौर भी देखा है, मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में पूर्व में भी जाता रहा हूँ और अब भी मैं इंटरनेशनल डेलीगेशंस में जाता हूँ, पर आज जो हमारी वॉइस है और जो जिस तरह से भारत को बहुत गंभीरता से सुना जाता है और जहाँ भारत कोई स्टैंड लेता है, तो हमेशा हमारे को साथी मिलते हैं, क्योंकि हमारी बात नॉर्मली हम वैसी बात करते हैं जो विश्व के कल्याण की हो, जो विश्व को साथ लेके चलने की हो, और जब हम वो बात करते हैं तो हमारे को साथ भी मिलता है और हमें सफलता भी मिलती है।
0: सर, एक आखिरी सवाल, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों और खासकर हमारे जेन जी दर्शकों से, जबकि भारत में महिलाओं का वही सम्मान जो उन्हें दिया जाता था महिलाओं के लिए सामने आ रहा है, वही संस्कृति आज हमारी दीपावली का त्यौहार पूरा विश्व मनाने जा रहा है। तमाम बदलाव आपने लेकर के आए केंद्र सरकार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बहुत सारे प्रयास हुए थे जिनको उस समय सफलता नहीं मिली। जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में एक सोसाइटी बनी थी, इट वॉज उसको कहा गया था ग्रेटर इंडिया सोसाइटी। उसका मतलब ये था, जो करीब 1926 में कोलकाता में बनी थी, उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो भारत से विश्व को गया उसको हम विश्व को बताएं। तो शुरुआत हुई, अब हम उसको बहुत अच्छे से विश्व को बता पा रहे हैं। ये इसलिए संभव हो पाया कि हमने गर्व से अपना सीना ताना सिर ऊंचा किया और अपनी बात पूरे विश्व में कहना शुरू किया माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और आज जब हम कह रहे हैं, पूरा विश्व उसको सुन भी रहा है और उसको मान भी रहा है, और इसको हम सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं, और इसको रिकग्निशन के लिए, ताकि ये ऐसा नहीं हो कि हम कहें और शुरू में माना जाए उसका इंटरनेशनल रिकग्निशन नहीं हो, उसकी हम इंस्क्रिप्शन भी यूनेस्को में कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो पूरा जो जो प्रक्रिया है, पूरा सेटअप है, वो ऐसा है कि ना केवल हम किसी चीज़ को एस्टैब्लिश करें, बल्कि उसको एस्टैब्लिश करके हम इस तरह से प्रस्तुत करें कि पूरा विश्व उसको रिकग्नाइज करे, और रिकग्नाइज करके उसको डॉक्यूमेंट करे, और फाइनली वो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में विश्व में मान्यता प्राप्त करे। उस और हम बहुत अच्छे से और बहुत सिस्टमैटिकली हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता मिलेगी।
0: तो हम बात कर रहे थे अब संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल जी से। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल के साथ डॉक्टर सुयश शर्मा की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।

0: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है विशेष परिचर्चा, विषय है बीजेपी सरकार के 12 साल। परिचर्चा में प्रतिभागी हैं श्री मनीष ग्रोवर और श्री राम अवतार वाल्मीकि जी। परिचर्चा का संचालन किया है श्री संजय कुमार बाली जी ने।
1: वर्तमान सरकार के 12 साल बेमिसाल, आज इस विषय पर बातचीत कर रहे हैं और इसमें बातचीत करने के लिए आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्रीमान मनीष ग्रोवर जी, पूर्व सहकारिता मंत्री हरियाणा सरकार। सर, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: और हमारे साथ हैं श्रीमान राम अवतार वाल्मीकि जी, आप मेयर हैं रोहतक नगर पालिका में। सर, आपका भी स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: नगर निगम कर रहे
1: हैं, नगर निगम में। सर, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि आप क्या मानते हैं?
2: 2014
1: जी,
2: देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की पार्टी पर विश्वास दिखाया
1: जी,
2: और देश की जनता ने देश के सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने का मौका दिया
1: जी।
2: 2014 से पहले जो देश की स्थिति थी, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद, 2014 से पहले पूरे देश में भ्रष्टाचार था
1: जी,
2: आतंकवाद था। प्रांत हो या देश हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था जहाँ सुरक्षा थी नहीं, नक्सलवादी जोरों पे थे, आतंकवाद फैला हुआ था
1: जी।
2: जैसे ही 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गुजरात के एक प्रांत से 13 साल मुख्यमंत्री बनकर आए थे
1: जी,
2: उन्होंने गुजरात के अंदर विकास की गंगा बहाई। जैसे देश की जिम्मेवारी मिली आपको, वो देश में एक एजेंडा लेकर चले। मैंने भारत का एक मजबूत भारत को देखना है, एक भारत की अलग पहचान मैंने देखनी है
1: जी।
2: इसलिए इस 12 साल के कार्यकाल के अंदर, कठिन समय था
1: जी,
2: आसान नहीं था, उस बीच में उन्होंने वो काम किए जो कहना बड़ा आसान नहीं था। जब देश आज़ाद हो गया था, एक देश में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारा लहरा चुका था
1: जी,
2: तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक देश में दो निशान, दो झंडे अलग से बनाने की क्या जरूरत थी। कश्मीर के अंदर
1: जी
2: आतंकवादीपन पे युवा हमारी उस माँ के बेटे को, जो हमारी देश की रक्षा के लिए सैनिक जाते थे, विशेष तौर से हरियाणा
1: जी,
2: हमारा प्रदेश हरियाणा छोटा प्रदेश है, परंतु देश की सेवा करने के लिए 12% फौजी हमारे माँ के लाल जाते थे देश की रक्षा करने के लिए, परंतु वहाँ का आतंकवाद, वहाँ का भटका हुआ युवा उन हमारे फौजियों पर पत्थर मारते थे, पीछे से गोलियां चलाते थे
1: जी।
2: ऐसी स्थिति थी, खाली कश्मीर ने नहीं भुगता, देश ने भुगता, पंजाब ने भुगता, हरियाणा ने भुगता, गुजरात के अक्षरधाम ने भुगता
1: जी,
2: 26/11 ताज होटल ने भुगता, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट ने भुगता, ऐसे देश के अंदर स्थिति पैदा हुई हुई थी। लाल चौक पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकते थे हम, लाल चौक पर रामनवमी का जुलूस नहीं जाता था
1: जी।
2: तो देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश के गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 पार्लियामेंट के अंदर 370 धारा 35 से ख़त्म की है। 6 अगस्त 2019 राज्यसभा के अंदर बिल पास कराया, जबकि विपक्ष के लोग कहा कि 370 धारा 35 से छेड़ेंगे तो भूकंप आ जाएगा, भूचाल आ जाएगा।
1: जी,
2: ना तो भूकंप आया ना भूचाल आया, आज वही कश्मीर है, वही कश्मीर है। लाल चौक पर आज राष्ट्रीय ध्वज भी लहराया जा रहा है, रामनवमी में जुलूस भी जलाया है, निकलता है। आज वही युवा है, आज जो पत्थर उठाता था आज युवा वही हाथ में कंप्यूटर लेकर और हाथ में पेन है, अपनी शिक्षा एजुकेशन के ऊपर बढ़ा। ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी ने इस 12 साल के कार्यकाल के अंदर कश्मीर में से आज मेरा नौजवान माँ का बेटा आज खुली हवा ले रहा है।
1: जी, और इसके साथ ही जुड़ी एक बात और है कि जो अब उस समय जो स्थिति थी सैनिकों की खासतौर से, उसमें और अब की जो सेना है उसमें कितना परिवर्तन मानते
2: हैं? मैंने कहा कि नया भारत,
1: जी
2: नए भारत की पहचान उभर के आई है। पहलगाम के ऊपर जिस तरह हमारे
1: आक्रमण हुआ,
2: हमारे जो वहाँ गए हुए थे घूमने के लिए,
1: जी
2: उनके ऊपर गोलियों से भुना गया, उनको शहीद हुआ हमारे 26 परिवार के,
1: जी
2: बहन भाई। तो नए भारत की पहचान के ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी कहा घर के अंदर मार के आएंगे, इसका बदला लेंगे।
1: जी,
2: घर के अंदर मार कर आए, उन आतंकवादियों को अड्डे ठिकाने खत्म किए।
1: जी,
2: तो इसलिए ये नए भारत की पहचान है। आज मेरा फौजी उसको पूरी छूट दे रखी है, स्वतंत्र है
1: जी,
2: दुश्मन को खत्म करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए। आज मेरा भारत वही है जहाँ आतंकवाद भी खत्म है, नक्सलवाद भी खत्म है। नहीं तो कहते थे नक्सलवाद कोई नहीं चलता रहेगा,
1: जी
2: परंतु आज वही भारत है, आज नक्सलवाद भी खत्म है, आतंकवाद भी खत्म है।
1: जी, रामावतार वाल्मीकि जी, पहले एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुहिम चलाई थी स्वच्छता की, और उसमें सभी लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया क्योंकि उसका नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो अपने यहाँ पर स्वच्छता अभियान की और स्वच्छता की क्या स्थिति मानते हैं आप?
4: माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया,
1: जी
4: उस सिर्फ स्वच्छता को लेकर के नहीं, उसके पीछे उससे होने वाले परिणाम,
1: जी
4: आने वाले परिणाम स्वच्छता को लेकर उसको ध्यान में रखते हुए एक पूरा देशव्यापी अभियान चलाया गया। आप सबने देखा, मीडिया के माध्यम से अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया पे चला।
1: जी,
4: जब माननीय देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की कि कोई भी भारत का नागरिक खुले में शौच करने नहीं जाएगा, और शौचालय निर्माण किया, यह अभियान जब चला तो विपक्षी पार्टियों ने इस पर अपनी बात रखी कि ये देश का प्रधानमंत्री है, छोटी सी बात शौचालय को लेकर के इतनी बड़ी मूवमेंट चला रहा।
1: जी,
4: लेकिन उन मेरे विपक्ष के साथी भाइयों को इस बात का ज्ञान उस समय नहीं था, आज तो है।
1: जी,
4: कि पहले घर में कोई मेहमान आ जाता था, गरीब परिवारों के लोग लोटा लेकर के बाहर घुमाने के लिए ले जाते थे।
1: जी,
4: और किस तरह से लोग सुबह उठ करके, घर में बहन बेटियाँ होती हैं, कभी भी किसी समय भी को पेट पर दर्द हो जाए, कोई और दिक्कत हो जाए, तो बड़ा मुश्किल का समय वो होता था।
1: बिल्कुल, एक महिलाओं के मान सम्मान की भी बात,
4: महिलाओं के मान सम्मान की बात तो थी। उसके साथ साथ कई बार हारी बीमारी परिवार में हो जाए, कोई और दुख आ जाए, तो आदमी वेट करता था घरों में ही। आपने देखा होगा पहले हमारी दादी काकी जो उस तरह से व्यवस्थाएं, किस तरह से घरों में व्यवस्था कर, गरीब परिवारों के लोग।
1: जी,
4: तो एक ऐसा अभियान चला। मैं बीच में चमा चाहूंगा, इस चर्चा के दौरान बताना चाहूंगा, आसाम के चुनाव में मेरी ड्यूटी लगी हुई थी।
1: जी,
4: और वहाँ आदिवासी क्षेत्र ज्यादा है। उस क्षेत्र में जब मैं वहाँ 2 महीने से पार्टी के काम से गया हुआ था, तो वहाँ उस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रवास था।
1: जी,
4: तो उस प्रवास के दौरान जब हम उनको रिसीव करने के लिए गए, तो उन्होंने स्वयं में मेरे से पूछा,
1: जी
4: वो फोटो भी वायरल हुई, कि यहाँ किन किन योजनाओं का ज्यादा इफेक्ट लोगों के अंदर है, प्रभाव है।
1: जी,
4: तो वो मैंने उनमें से एक चीज ये कोर्ट की शौचालय के, मैं जिस घर में आपने शौचालय दिया माने प्रधानमंत्री जी, वो भी आपकी वाहवाही और गुणगान करता है कि हमारी मान सम्मान और इज्जत माने देश के प्रधानमंत्री ने बचाई। इतना ही नहीं, स्वच्छता को लेकर के आप देखें कि हरियाणा में भी, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भी, वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने भी, स्वयं हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है पार्टी के एजेंडे में भी इस संस्था का विषय हमारा शामिल है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाया। हमारी जहाँ जिन जिन प्रांतों में हमारी सरकारें काम कर रही हैं, इस अभियान को और तेज़ गति दी स्वच्छता को लेकर के। आपने देखा कि किस तरह से जब कुंभ के मेले में एक बार जब मैंने प्रधानमंत्री जी का जाना हुआ और वहाँ हमारे सफाई कर्मी, हमारे बंधु जो सेवा करते हैं, सफाई का काम करते हैं, उनके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से उनके चरणों को धोया
1: जी,
4: और अपने तौलिए से पूछा कि भाई ये स्वच्छ सैनिक हैं जिसकी वजह से स्वस्थ क्षेत्र रहेगा, घर परिवार रहेगा, शहर रहेगा, गांव रहेगा, तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, स्वस्थ रहेगा। जब स्वस्थ ठीक रहेगा तो मन ठीक रहेगा, मन ठीक रहेगा तो बुद्धि ठीक से काम करेगी, और वो व्यक्ति अपने घर का, परिवार का, अपने राज्य का, अपने देश के विकास में अपना अहम योगदान दे पाएगा। स्वच्छता का छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के कहने पर देश की जनता ने इसे हाथों हाथ लिया और ये एक मुहिम आज बना हुआ है
1: जी। माननीय ग्रोवर साहब, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी एक ताकत होती है किसी भी देश के, प्रदेश के विकास के लिए। तो इन पिछले 12 वर्षों में कितना विकास आप मान सकते हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ढांचागत विकास
2: आपने, वो हुआ है? आपने अच्छा सवाल किया
1: जी।
2: देश के विकास की प्रगति के लिए रोडों के बिना
1: जी
2: विकास नहीं हो सकता। आज मैं कह सकता हूँ मेरा छोटा सा हरियाणा
1: जी,
2: इस हरियाणा में कोई ऐसा जिला नहीं है जिसमें तीन तीन चार चार NH ना जा रहे हो।
1: नेशनल हाईवे
2: जी, रेलवे का
1: जी,
2: रेलवे का भी चारों तरफ। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 साल के अंदर बेमिसाल रोड दिए, बेमिसाल रेल लाइन
1: जी,
2: वंदे भारत,
1: बुलेट ट्रेन जी,
2: मेट्रो
1: जी,
2: लिमिट ही नहीं है। इतने जाल पूरे देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने 12 साल के काम, तो 12 साल लंबा नहीं है समय
1: जी।
2: पिछले प्रधानमंत्री का कार्यकाल वर्तमान के 12 साल का मात को ज़्यादा समय नहीं है, परंतु 12 साल के अंदर भारत के विकास के लिए एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक सबको विकास की गति में बराबर जोड़ा है
1: जी।
2: बेशक वो रोहतक से जम्मू कटरा हो, रोहतक से बंबई हो
1: जी,
2: हर देश के जितने रोड हैं चारों का सफ़र, बहुत जो 24-24 घंटे लगते थे, 12-12 घंटे लगते, उसको 6-8 घंटे के अंदर
1: समेट दिए जी। और इसके अलावा अगर वायु मार्ग की बात करें,
2: वायु मार्ग का तो मैंने कहा लिमिट ही नहीं है
1: जी।
2: वायु मार्ग द्वारा जितना लोगों को इस बार विकास की गति में योगदान मिला है, GDP में बहुत बड़ा योगदान है
1: जी।
2: पूरे देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा स्टेट हो जिसके अंदर तीन तीन चार चार एयरपोर्ट ना पड़े
1: जी। और उसमें हरियाणा का भी हम अपना कह सकते हैं,
2: प्रसन्नता इस बात की
1: जी जी,
2: अग्रोवा
1: जी,
2: हिसार
1: जी,
2: देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ कर हिसार के अंदर उसका महाराजा गर्सैन के नाम से हमें दिया
1: बिल्कुल। और अभी रिसेंटली, अभी नज़दीक ही अगर हम बात करें रेलवे की, हाइड्रोजन से जो रेल लाइन से
2: रेल लाइन
1: वो भी हमारे यहाँ पर उसकी शुरुआत हो रही है जी। माननीय राम अवतार जी, प्रधानमंत्री की एक बहुत ही अच्छी योजना रही है गरीबों को आवास उपलब्ध करवाने की, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
4: माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ऐसा अपने बाल्यकाल में ही ऐसा जीवन जिया है कि उन्होंने गरीबी को बड़ी नज़दीकी से देखा है
1: जी।
4: और जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, तो जिस तरह से कि गरीब व्यक्ति को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उनका समाधान क्या क्या हो सकता है
1: जी,
4: उस क्षेत्र में उस गति में उन्होंने काम किया। और गुजरात जैसे प्रांत में वहाँ गरीबी रेखा का जो जीवन यापन करने वाले हमारे जो परिवार हैं उनकी संख्या अगर आप चर्चा करेंगे तो देश भर में बहुत कम रही है, क्योंकि उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी गुजरात में भी एक तरह से गरीबी मुक्त गुजरात करने का प्रयास रहा उनका
1: जी।
4: और उसी तरह से जब देश की जनता ने देश की कमान जब उनको दी, तो ये गरीबों के लिए आवास की जो योजना है कि आपने मीडिया के माध्यम से बहुत बार देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं सभी प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करते हैं निरंतर, उनकी हर महीने दो महीने तीन महीने में लगातार जो शेड्यूल होता है अनुसार उनकी बैठकें होती रहती हैं और वो इसी तरह से उनको निर्देशित करते हैं कि भी गरीबों के कल्याण के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम योजनाओं को अमली जमा पहनाएं और उनको क्रियान्वित रूप दें। उसी कड़ी में आवास की हम बात करें तो पूरे देश भर में 2014 के बाद, जैसे माननीय मनीष कुमार गरुड़ जी ने अपने बातचीत के दौरान बताया कि गरीबों को ध्यान में रखते हुए सभी योजनाओं को अमली जमा पहनाया गया है। देश भर में भी जो हम डाटे की हमें बात करें तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा देश की जनता के सामने है कि भाई उनके कार्यकाल में गरीबों के लिए इतने आवास बनाए गए हैं। और सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ हर स्टेट भी, प्रत्येक प्रांत भी अपने यहाँ भी अलग से अपने एक आवास की व्यवस्था उसके साथ साथ अलग से की हुई होती है, उसमें भी गरीबों के लिए। अब माननीय नायब सिंह सैनी जी ने देखा कि हम 2014 से पहले की बात करें तो गरीब परिवारों के लिए सिर्फ वोट के लिए पूर्व की कांग्रेस की सरकार गरीबों को 100-100 गज के प्लाट का एक झांसा सा देती रही, उनको प्लॉट के नाम पर सिर्फ नाम करती रही लेकिन प्लॉट का कहीं उनको मालिकाना हक देने का काम नहीं किया, उनको कोई जगह चिन्हित करके नहीं दी, वो भी गरीबों के घर बन जाए। इस नाते माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने अधिकारियों को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए ऐसे रजिस्ट्रियाँ बांटने का काम किया, उन्होंने उनके प्लॉट को चिन्हित करके वो देने का काम किया। इसी तरह से फ्लैट बनाने का भी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक साथ कई शहरों में चाबियां गरीब परिवारों को देने का काम किया, तो इस योजना का भी लाभ हमारे गरीब परिवारों को मिल रहा है। और देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जितनी संख्या के आधार पर हमारे जनप्रतिनिधि या संबंधित विभाग के अधिकारी जो हमें फीडबैक देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को, तो स्टेट लेवल की स्टेट लेवल के आधार पर केंद्र से जो योजना उसके आधार पर गरीबों को आवास की व्यवस्था दी जाती है।
1: जी सर, आपसे बात करना चाहेंगे कि गरीबी उन्मूलन एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है, गरीब लोगों की समस्याओं का समाधान हो, उनके जीवन यापन के लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाए, और अभी हाल ही में जी राम जी योजना है वो लॉन्च की गई है, तो इसके आप क्या प्रभाव देखते हैं?
2: आप मुझे पता नहीं कितना समय आप देंगे
1: जी,
2: अगर मैं प्रधानमंत्री जी जो अंतिम व्यक्ति की जितनी योजना इस 12 साल में उन्होंने की है
1: जी,

0: गिनती नहीं है उनकी। मैं तो कह सकता हूँ कि इतनी योजना बनाई है
1: जी
0: आम जन के लिए, प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना का था
1: जी, जिनका कभी खाता नहीं खुला था,
0: खाता नहीं खुला,
1: बैंक जाते
0: सिर्फ
1: नहीं थे,
0: बैंक में उद्योगपति जाते थे, व्यापारी जाते थे।
1: जी जी
0: जिस गरीब ने कभी बैंक का दरवाजा नहीं देखा था
1: जी,
0: जन धन के खाते खोले 50 करोड़
1: जी बहुत बड़ी मात्रा है
0: 50 करोड़। और जितनी केंद्र की लाभार्थी योजना है सीधे उनके अकाउंट में। प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मैं 1 रुपया सेंट्रल से भेजता हूँ सिर्फ 15 पैसे पहुँचते हैं।
1: जी
0: आज वही देश है, वही प्रधानमंत्री की कुर्सी है, 100 का 100
1: खाते में जाता है
0: जितनी लाभार्थी योजना।
1: जी
0: जन धन के खाते खोलकर देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों को, जैसा श्री रामतार जी ने कहा, क्योंकि गरीब माँ का बेटा,
1: जी
0: चाय बेचने वाला, उन्होंने गरीबी देखी है, इसलिए मजाक बनाया था उस टाइम जन धन योजना खाते गरीबों के,
1: जी
0: तो इसलिए उनका लाभ अगर मैं गिनती कराऊं तो बहुत है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना,
1: जी
0: GST, एक राष्ट्र एक टैक्स, आयुष्मान, इतना बड़ा देश
1: जी
0: जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ हो, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड मिलना
1: जी,
0: अब तो 70 साल की उम्र कितनी उस कितना बड़ा वो उसका हो, 70 साल की उम्र के हिसाब से उसकी कोई आकलन नहीं कर सकता, वो गरीब है या अमीर है
1: जी
0: उसका लाभ वो ले सकता है। इसलिए देश में प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि,
1: जी
0: किसान हमारी जान है, किसान हमारी शान है,
1: अर्थव्यवस्था है,
0: अर्थव्यवस्था है
1: जी,
0: आत्मनिर्भर भारत, महिला रक्षण विधेयक बिल, जैसा रामतार जी ने कहा प्रधानमंत्री आवास योजना
1: जी,
0: स्टार्टअप ऑफ इंडिया, जो नोटबंदी, जो काला धन देश के प्रधानमंत्री का मैं खत्म करूंगा उस संकल्प को दोहराया उन्होंने
1: जी,
0: और 3 तलाक कानून, 1 नेशन 1 राशन कार्ड कहीं से भी देश भर में आप ले सकते हो, 400 साल बाद
1: जी
0: भगवान राम का मंदिर, मुगलों से लड़े, अंग्रेजों से लड़े, कांग्रेस से लड़े, भगवान राम जी हमारी आस्था है
1: जी,
0: आसान काम नहीं है। गरीब कल्याण अन्न योजना 81 करोड़ लोगों को
1: जी,
0: 81 करोड़ लोगों को कहना आसान काम नहीं है, लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी
1: जी।
0: जब कोरोना काल का दौर था भारत के अंदर ही हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, 294 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा, 294
1: जी,
0: 120 कंट्रियों को वैक्सीन भेजा गया
1: जी,
0: इसलिए भारत की पहचान, नए भारत की पहचान उभर के आई है इस 12 साल के अंदर, विदेशों में हमारी पहचान बनी है
1: जी।
0: इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो लक्ष्य था अंतिम व्यक्ति की चिंता करना, उस 12 साल में ये काम किया और आने वाले समय के अंदर
1: जी
0: देश का एक विकास की गति जो 2047 का विकसित भारत के मन में है, तो आने वाले समय के अंदर देश के प्रधानमंत्री ने एक जो योजना बनाई है खेलों के ऊपर
1: जी,
0: खेलों के ऊपर भारत आगे निकल के जाएगा, पर्यटक के ऊपर
1: जी,
0: जो विदेशों में जाते हैं आए विदेश, हमारे भारत के अंदर भी पर्यटक स्थल बहुत है, इसलिए इन दोनों खेलों पे और पर्यटक के ऊपर देश के प्रधानमंत्री के फोकस है
1: जी। अंत में रामता जी आपसे हम जानना चाहेंगे कि महिलाओं के लिए एक खास एक दिक्कत रहती थी, वो चूल्हे पर अपना खाना पकाने का काम करती थी, तो उसको हटा के LPG गैस का एक कार्य है वो शुरू किया गया था, तो इसमें आप कितनी प्रगति मानते हैं?
2: माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना के तहत, जैसे माननीय मनीष कुमार गौर जी ने अपने बातचीत के दौरान बताया, उज्ज्वला योजना के तहत देश भर में गरीब परिवारों को फ्री में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा की जा रही है। 2014 से पूर्व की हम बात करें, जैसे आपने कहा
1: जी,
2: कि गांव में देहात में हमारी माताएं बहनें परिवार का खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाती थी या उपले बना करके गोबर से उससे अपना वो खाना पकाती थी
1: जी।
2: देश के प्रधानमंत्री ने अपने मुखारबिंद से बहुत बार कहा सभाओं में कि एक सिगरेट के 400 सिगरेट व्यक्ति पीता है और उतना 400 सिगरेट से जितना फेफड़े में नुकसान होता है उतना एक दिन के खाना बनाने जो लकड़ी से खाना बनता है चूल्हे पर उतना फेफड़ों को नुकसान एक दिन के खाना बनाने से होता था
1: जी।
2: ये सब चीज़ें माननीय प्रधानमंत्री के संज्ञान में रही। उन्होंने घोषणा की कि कोई भी गरीब परिवार मेरे भारतवर्ष का कोई भी ऐसा परिवार ना बचे जिसमें गैस सिलेंडर ना हो, तो फ्री में गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर देने का काम किया। और मैं आपकी इस बातचीत के दौरान जरूर बीच में बताना चाहूँगा
1: जी,
2: अपने सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने सभाओं में जा जा करके जब सभा बड़ी होती थी अपने विधानसभा अनुसार जो कार्यक्रम करते थे तो वहाँ महिलाओं से व्यक्तियों से हाथ उठवाते थे
1: जी,
2: आप कोई बताए कि आपके यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के घर में कोई गैस कनेक्शन है क्या नहीं। बाई चांस इक्का दुक्का दो चार पांच लोग अगर हाथ उठाते थे तो उसी समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कहते थे डीसीज को एडीसीज को कि भाई आप ये जाने से पहले इन्हें मौके पर ही यहाँ गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। इस तरह से संज्ञान माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी लेते थे और वर्तमान के मुख्यमंत्री जी भी इसी तरह से कोई भी गरीब व्यक्ति इस तरह की कोई भी बात अधिकारी को निर्देशित किया हुआ है कि कोई भी परिवार मेरे हरियाणा का देश में माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश और हरियाणा में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का कि कोई भी परिवार गरीब परिवार ना बचे जिसको इस योजना का लाभ ना मिले। ये छोटी छोटी बातें नहीं बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जिससे नुकसान जब पहला सुख निरोगी का है अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो व्यक्ति करेगा क्या। ये सब चीज़ें देश के प्रधानमंत्री जी ने क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि उन्होंने अपना जीवन उस गरीब परिवार में रहते हुए जिया है और देखा है कि भाई इस देश में किन किन योजनाओं को पहले हम लागू करें। उसी तरह से इन 12 सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसी योजनाओं को निजामा पहनाया उसी का ये परिणाम है। सिर्फ देश के प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभाली उस समय भारतवर्ष में हमारे 8 प्रांतों में सरकारें थी
1: जी।
2: आज जिस तरह से देश की जनता के लिए काम किया पूरे भारतवर्ष में आज 22 प्रांतों में भाजपा और NDA के हमारे समर्थित सहयोगी दलों की सरकारें देश में सेवा कर रही हैं तो उपलब्धियाँ बहुत हैं। जैसे माननीय मनीष कुमार गौर जी ने कहा कि हम 5 घंटे भी आपके साथ यहाँ बातचीत करें तो भी ये कम समय पड़ेगा। इतनी योजनाएँ देश और प्रदेश की हमारी सरकारों ने की है आम जनता को ध्यान रखते हुए
1: जी। तो इस बातचीत से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गत 12 वर्षों में जो भी योजनाएं आरंभ की गई हैं उनका जनता को सीधा सीधा लाभ पहुंचा है और भविष्य में भी ये योजनाएं हैं चलती रहेंगी और नई नई योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य में अपने भाषण में और जैसे आप सब ने बताया कि क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है तो वो उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई गरीब है तो उसको क्या क्या संकट आ सकता है। तो अगर हमारे अग्रणी हमारे प्रधानमंत्री जी इस सोच के हैं जो जिन्होंने कि ये चीज़ फील कर रखी हो तो वो और भी बढ़िया योजनाएं वो बना सकते हैं और आगे भी भविष्य में भी हम कामना करेंगे कि इस तरह की कल्याणकारी योजनाएँ हमारी सरकार हमारे नागरिकों को हमारे देशवासियों को देती रहेगी ये हम आशा करते हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार आई हरियाणा में
1: जी
0: और उस समय हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी जो आज केंद्रीय मंत्री हैं 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना
1: जी।
0: उससे पहले कई मुख्यमंत्री आए कई पॉलिटिकल पार्टी गया मैंने ये नहीं कहा कि वो भी काम नहीं कर उन्होंने भी काम किया हरियाणा के लिए
1: जी।
0: परंतु माननीय मनोहर लाल जी ने राजनीति के पन्ने ही बदल दिए घर बैठे लोगों को सुविधा
1: जी
0: घर बैठे बिना पर्ची बिना खर्ची लोगों को युवाओं को नौकरी दी
1: जी।
0: जो नौकरी बिकती थी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के पीछे युवा भागता था देश उस समय के हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाखों नौकरी युवाओं को दी गरीब घर
1: जी
0: अंतिम व्यक्ति का और घर बैठे हर सुविधा को घर बैठे मिला। टीचरों की बदली के लिए सेक्रेटेरिएट के 8 फ्लोर खचाखच भरे रहते थे पंचकुल का शिक्षा सदन के पीछे एक गली तो सिर्फ किराए के मकान रहते थे वहां पर दलाल घूमते थे
1: जी।
0: 5 मिनट में 50,000 बदली एक बटन में कर दी
1: जी।
0: किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं पड़ी भ्रष्टाचार मुक्त पहले मुख्यमंत्री आते थे अपने जिले की चिंता करते थे
1: जी।
0: जिले के बाद अपने विधानसभा की चिंता करते थे वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री आए माननीय मनोहर लाल जी उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास 90 के 90 विधानसभा को बराबर काम विकास किया इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश में काम किया है, प्रदेश की बहुत उपलब्धियाँ
1: जी।
0: इसलिए मैं इस बिंदु में कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह देश में काम किया है, उन्हीं के दिखाए मार्गदर्शन पर हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के माननीय मनोहर लाल जी ने, वर्तमान में हमारे श्री नायब सैनी जी उस काम को आगे कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूँ कि 12 साल
1: जी
0: बेमिसाल, श्री नरेंद्र मोदी जी का 25 साल का सफर, 13 साल गुजरात, 12 साल केंद्र, और देश के प्रधानमंत्री जी के 4,399 दिन उन्होंने देश की जनता की सेवा की। सब प्रधानमंत्री से पहले वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने देश की एक ऐसे नए भारत पर लाकर छोड़ा है जो आगे करेंगे।
1: तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पिछले 12 वर्ष जो वर्तमान सरकार ने कार्य किए हैं लोगों की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए और जनता के लिए, उनका सफ़र अभी जारी है और आगे बहुत समय है जब ये योजनाएं हैं ये देश की जनता को मार्गदर्शन करते रहेंगी, उन पर वही ओहदा हमें एक बार फिर से मिलेगा। तो इस बातचीत में भाग लेने के लिए श्रीमान मनीष ग्रोवर जी और श्रीमान राम अवतार वाल्मीकि जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद जी।
1: अपलिफ्टमेंट है
0: इस मौके पर आपने हमें बुलाया
1: जी,
0: मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
1: धन्यवाद।
3: अभी आपने सुनी विशेष परिचर्चा, विषय था सरकार के 12 वर्ष। परिचर्चा में भाग लिया श्री मनीष ग्रोवर और श्री राम अवतार वाल्मीकि जी ने। परिचर्चा का संचालन किया था श्री संजय कुमार बाली जी ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। सुनिए सूचनाएं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में। थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत सूचित करता है कि पुष्प उर्फ कल्लू, जो कि खानपुरा कला जिला सोनीपत से लापता है, पुष्प का हुलिया आपको बता दें, उम्र 17 वर्ष, कद 5'6", रंगोरा, लंबूतरा चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत से। थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत सूचित करता है कि आदित्य सुपुत्र मोनू कुमार, जो कि खानपुर कला जिला सोनीपत से लापता है, आदित्य का हुलिया कुछ इस तरह से है, उम्र 16 वर्ष, कद 5'7", रंग गेहुआ, लंबूतरा चेहरा व स्वस्थ शरीर है। इनके बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं थाना सदर गोहाना जिला सोनीपत से। पुलिस चौकी नया बस अड्डा रोहतक सूचित करता है कि प्रीति, वाइफ ऑफ दिनेश, जो कि दिनांक 8 जून 2026 से रोहतक से नए बस अड्डे से लापता है, प्रीति का हुलिया आपको बता दें, उम्र 26 वर्ष, कद 5 फुट, रंगोरा, लंबूतरा चेहरा, पतला शरीर है। प्रीति के ठोड़ी पर चोट का निशान है और दांत काले पड़े हुए हैं। प्रीति के बारे में कोई भी जानकारी देने के लिए संपर्क किया जा सकता है पुलिस चौकी नया बस अड्डा रोहतक से। सूचनाएं समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: जावेद अली, A.R. रहमान और मोहित चौहान की आवाज़ों में आपने सुना रॉकस्टार फिल्म से ये गीत। इरशाद कामिल के बोल थे, A.R. रहमान का संगीत था।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: सिम्बा फिल्म से आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और आशीष कौर की आवाज़ों में गीत। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि बैराग ने, संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

अरिजीत सिंह, असीस कौर और साथियों के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आपको सुनवाने जा रहे हैं श्याम बटेजा की गाई गज़लें। सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं श्याम बटेजा की गाई गजलें। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति श्याम बटेजा की आवाज़ में ये गज़ल।

0: श्याम बटेजा की गाई इस गज़ल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, इसमें आज आपने श्याम बटेजा की गाई हुई गज़लें सुनी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 9 बजे होंगे अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की कड़ी निंदा की। अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
2: The topic for the Governing Council meeting.
3: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
2: To youth, to working life, to old age.
1: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
4: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने ओमान तट पर जहाज MT सिटबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: We attach high importance to the welfare and well-being.
4: हम अपनी नाविकों के कल्याण और सुरक्षा को बहुत महत्व देते हैं। क्षेत्र में जहाजों पर लगातार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं। ये हमले तुरंत बंद होने चाहिए। हम संवाद और कूटनीति का भी आह्वान करते हैं ताकि क्षेत्र में जल्द से जल्द शांति और स्थिरता बहाल हो सके।
3: Peace and stability in the region.
2: नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। इस बीच पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अधिकारियों को MT सेट्टेबेलो से 21 बचे भारतीयों की जल्द वापसी और मृत नाविकों के शवों को शीघ्र स्वदेश लाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर आज उत्तरी ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक वाणिज्यिक टैंकर MT जलवीर में आग लग गई। इस जहाज पर करीब 20 भारतीय चालक दल के सदस्य सवार हैं। मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। पिछले 72 घंटों में ओमान के जल क्षेत्र में भारतीय चालक दल वाले जहाजों से जुड़ी तीसरी घटना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे।
5: The visit will provide an opportunity.
6: यह दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले विश्व नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगा। यह G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 13वीं भागीदारी और प्रधानमंत्री मोदी की सम्मेलन में लगातार 7वीं भागीदारी होगी।
5: पार्टिसिपेशन एट द समिट।
2: श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया में रहेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का स्लोवाकिया का पहला दौरा होगा। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीके की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है।
7: एक्सपोर्ट भी लगभग 2,33,536 करोड़ का 10 साल में हुआ और मोदी जी के कार्यकाल में 3,25,339 करोड़ का हुआ।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों के बारे में।
8: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने गरीबों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। गरीबों के लिए पक्का घर उपलब्ध कराना मोदी सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 4 करोड़ से अधिक घर आवंटित किए गए। वहीं खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। ओडिशा के कालाहांडी जिले के इंद्रमणि नायक ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि इस योजना से गरीब लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है।
9: गरीब कल्याण योजना जो नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो हमारा फैमिली 5 है जो हमको 5-5 किलो दे रहे हैं। जो अभी पहले से बहुत दिक्कत था अभी तो बहुत हम लोग अभी सुखी शांति से सब जी रहे हैं।
8: दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है। देश भर में अब तक लगभग 10 करोड़ 82 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कैशलेस इलाज का लाभ लिया है। जम्मू कश्मीर के बारामूला के रहने वाले फैयाज अहमद ने कहा कि यह योजना आपातकालीन परिस्थितियों में गरीब लोगों के इलाज में बहुत मददगार साबित हो रही है।
10: जब से आयुष्मान भारत का स्कीम मोदी जी ने लॉन्च करा है कभी भी किसी को जरूरत पड़ती है तो उसको भरपूर और एक आला मयारी इलाज बेहतरीन अस्पताल में मिलता है और राइट टाइम पे मिलता है। कोई क्यू में रहना नहीं पड़ता। मोदी जी हिस्ट्री के बेहतरीन कस्टोडियंस में से एक है जो अपने आवाम का एक बेहतरीन कस्टोडियन है।
8: वहीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर लोगों को सस्ती दरों पर जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की जिसके तहत अब तक 10 करोड़ 55 लाख से अधिक महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। वहीं सड़क किनारे कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को ऋण देने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक लोगों को ऋण दिए जा चुके हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वर्ष 2015 में 19% लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा था जो वर्ष 2025 में बढ़कर 64% से अधिक हो गया है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमरीका, कनाडा और मैक्सिको में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: फीफा विश्व कप का ये अब तक का सबसे बड़ा संस्करण है। इसमें पहली बार 48 टीम भाग ले रही हैं। मेजबान देश अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको को विश्व कप में सीधे प्रवेश मिला है। विश्व कप के इतिहास में अब तक ब्राजील, इटली, जर्मनी, स्पेन, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस और उरुग्वे ने फीफा ट्रॉफी जीती है। टूर्नामेंट में 12 ग्रुप हैं। प्रत्येक ग्रुप में 4-4 टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप की शीर्ष दो

0: सीधे नॉकआउट चरण में प्रवेश करेगी। प्रतियोगिता में कुल 104 मुकाबले खेले जाएंगे। इसमें 72 ग्रुप स्टेज और 32 नॉकआउट मुकाबले शामिल होंगे। फाइनल 19 जुलाई को खेला जाएगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने ईशा रानी बरुआ को और तन्वी ने मालविका बंसोड को हराया। मौसम विभाग ने शनिवार तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है और कल शाम तक तेज हवाओं और ओलावृष्टि की आशंका व्यक्त की है। पूर्वोत्तर भारत और हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल में 17 जून तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कल शाम तक बारिश होने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए समझौता किया। भारत ने ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमरीकी हमले में 3 भारतीय नाविकों के मारे जाने की निंदा की। अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची और फीफा विश्व कप आज रात रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू होगा। पहले मुकाबले में मेजबान मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका होंगे आमने सामने। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक फिल्म से यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक फिल्म से, इसमें आज आपने गैम्बलर फिल्म से चुनिंदा गीत सुने। फिल्म के गीत लिखे थे नीरज ने, संगीत से संवारा था उन गीतों को एस टी परमन ने। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है, मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। हमारा अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्री वाइड। इसके अंतर्गत सुनिए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
1: आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं एनडीए अधिवेशन में प्रधानमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा। आशुतोष जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो आशुतोष जी, जैसा कि कल हमने सुना प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था, और जिसमें उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे बात की, देश के अंदर जो हमारे सामने समस्याएं हैं, जो विकास के मुख्य आयाम हैं, और वैदेशिक संदर्भ में भारत की क्या मुख्य भूमिका है, इन तमाम बिंदुओं पर प्रधानमंत्री ने चर्चा की। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पिछले 12 साल में सरकार ने काम किया है और देश को किस तरह से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की, ढांचागत विकास की उन्होंने बात की, डिजिटल सेवाओं की बात की, वेलफेयर स्कीम्स की बात की, आप इसके बारे में और क्या जोड़ना चाहेंगे?
2: पिछले 12 साल जो काम हुए हैं राजग काल में, एनडीए के काल में, उसकी जो बात की वो तो की कि उपलब्धियां गिनाई। ये उपलब्धियां मुझे लगता है कि दो स्तर पर दिखी। एक तो कि जो जमीन पे जो चीजें आपको बदलती हुई दिख रही हैं वो, कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और दूसरा है सोच के स्तर पर बदलाव कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है। जो जो पहले की सरकारों में 60 सालों में जिस तरफ हमारा, जिस सेक्टर पे फोकस नहीं होना चाहिए था और नहीं गया, उसको कैसे सुधारना है, वो एक लेवल वो था कि कैसे बदलना है। और जो तीसरा जो एक लेवल था जो मुझे दिखा, और प्रधानमंत्री ने इसके बारे में बात भी की, वो ये है कि भारत की जो 140 करोड़ जनता है उसके मन और दिमाग में कुछ चीजें असंभव सी थी जो कि बैठी हुई थी कि ये चीजें असंभव है, बाकी चीजें तो हम करेंगे। उस असंभव को पार करना, जिसमें कि उन्होंने फिर वो 370 और 3 तलाक जो इस तरीके की बात की जो समाज से भी जुड़ते थे, देश की सुरक्षा से भी जुड़ने वाले इशू थे, और जो आम जन की जनभावना से जुड़े हुए जो मुद्दे थे वो, तो ये 3 तरीके के बदलाव जो पिछले 12 साल में हुए, मुझे लगा कि प्रधानमंत्री ने इस पे बहुत खुल के बात की।
1: आशुतोष जी, अगर हम खासतौर से बात करें आर्थिक प्रगति की, हम सभी देखते हैं कि किस तरह से विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम बात करें, निवेश की बात करें, डिजिटल पेमेंट की बात करें, और खासतौर से पूरी दुनिया में भारत ने अपनी एक जगह बनाई है, और न सिर्फ एक जगह बनाई है, हमने लगातार कोशिश की है इस सरकार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कि हम बाकी दुनिया से एक कदम आगे चलें। तो आइए सुनते हैं इस बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
3: आज ग्लोबल ग्रोथ में भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है, इसलिए भारत को अब ग्लोबल पैरामीटर्स, ग्लोबल कंपटीशन और ग्लोबल

0: पर्सपेक्टिव देखना है। दुनिया भारत से सॉल्यूशन चाहती है, दुनिया भारत में वैश्विक सप्लाई चेन का एक भरोसेमंद पार्टनर देख रही है और हमें दुनिया की इन अपेक्षाओं पर खरा उतर कर दिखाना, हमें ये समय गंवाना नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ, यही समय है, सही समय है। हमें फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में खुद को श्रेष्ठ रखना है। हमें सिर्फ दुनिया जैसा नहीं करना, हमें दुनिया से एक कदम आगे रहना है।
1: तो आशुतोष, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और अगर हम देखें कि किस तरह से जो देश का विकास हुआ है और जो 2047 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, क्योंकि 100 साल हमारे देश की स्वतंत्रता के हो जाएंगे, और उसमें आर्थिक विकास से लेके जो टेक्नोलॉजी का विकास है, जो सोशल इंक्लूजन की बात है, सामाजिक समावेश की बात है, और एक अच्छे प्रशासन और गुड गवर्नेंस की बात है, इस बारे में आप आशुतोष जी और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: आज देश को किस चीज की जरूरत है? अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें, जो बात हो रही है ना कि पश्चिम एशिया का संकट आया और पूरे विश्व पे इस संकट का असर दिख रहा है, यहाँ पर विपक्ष में बैठे लोग कुछ ज्यादा उसे तूल दे रहे हैं, ऐसा लगता हो कि सिर्फ इंडिया का वो एक इशू है। लेकिन फिर भी जो समस्या अभी आपको दिख रही है, ये और कम दिखती अगर कुछ कदम पहले उठाए गए होते, जिसका कि जिक्र अभी प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया था। और उन्होंने कहा था कि भाई जो सप्लाई चेन में जो इंडिया कई बार दिखता है कि हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, ये कोविड के टाइम में भी ये चीजें दिखी थी और अभी भी चीजें दिख रही है। वहां कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन में मुख्य भूमिका में इंडिया को आना है। एक टाइम आप याद कीजिए कि कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं जहां हम पहले से मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जैसे कि दवाइयां, ये 80-90 के आसपास की मैं बात बता रहा हूँ। और फिर धीरे धीरे उस समय कुछ इस तरीके से निर्णय लिए गए कि भाई हम मार्केट इकोनॉमी में किस तरीके से घुस जाए, और हम वहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो उस समय में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार खड़ा करना था वो नहीं किया गया। अब शुरुआत हो रही है इसकी, इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बहुत लंबे तरीके से किया और मुझे वो चीजें बहुत सही लगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि क्यों नहीं भारत हर मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है, जिसकी बात उन्होंने की। ये आत्मनिर्भरता ही जो है वही कड़ी है और वही आप समझिए सबसे बड़ी कुंजी है, जिसमें कि आप वित्तीय रूप से बहुत संबल, जो बात हो रही है ना बार बार विकसित भारत बनने की।
1: जी जी,
2: विकसित भारत ऐसा नहीं है कि एक शब्द में जुड़ के कहीं खत्म हो जाए, कई लेवल पे जो स्टेप्स लेने हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री ने ये बात की कि भाई ये ग्लोबल सप्लाई चेन बनना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनना है। आज से 8-9 साल पहले तक आप याद कीजिए तो यहाँ आपके हाथ में, हमारे हाथ में जो भी फोन है वो बाहर से ही आ रहे होंगे कहीं ना कहीं से। अब स्थिति बदली हुई है कि आज अमेरिका वहां के जो यूजर है उसमें से एक फोन मेड इन इंडिया हो रहा है। ये जो बदलते हैं माहौल, उसकी बात उन्होंने की कि हमें किस तरीके से आर्थिक पावर के रूप में उभरना ही पड़ेगा, यही सबसे बड़ी कुंजी है। उसी के साथ समाज का भी ग्रोथ होगा। भारत जैसे देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसमें वेलफेयर स्टेट का जो एक बहुत बड़ा बोझ होता है, आप जान रहे हैं कि आज के दिन हम लोग करीब करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए सब्सिडी में देते हैं, आखिर कहां से कर पाएंगे अगर जब तक आप एक आर्थिक ताकत के रूप में नहीं उभरेंगे। और आर्थिक ताकत के रूप में उभरने के लिए इसकी भी जरूरत है, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी लेना चाहिए जो एक हेल्दी कंपटीशन की बात है।
1: जी जी,
2: कि भाई ये हेल्दी कंपटीशन सिर्फ राज्य और राज्य में ना हो, ये हेल्दी कंपटीशन गांव से शुरू हो सकता है कि एक गांव दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम अपने गांव को कैसे ज्यादा बेहतर बना पाए, एक शहर दूसरे से कॉम्पीट कर रहा हो कि हम कहां पर ज्यादा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाए। और उन्होंने कहा कि राज्यों को तो ये कम्पीट करना चाहिए कि भाई आने वाले टाइम में हु विल बी द फर्स्ट स्टेट जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेट होगा।
1: तो आशुतोष जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाए और प्रधानमंत्री ने सहभागिता की बात भी की, क्योंकि उनका ये मानना है, जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे, कि सारी जनता मिलके और सारे राज्य मिलके ही विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक जन विश्वास की जो बात है, जन भागीदारी की बात है, इस पर प्रधानमंत्री ने काफी जोर दिया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
0: देशवासियों की सहभागिता की हमारी बहुत बड़ी शक्ति। ये 12 वर्ष सरकार और समाज की सहभागिता का उत्सव मनाने वाले रहे। बीते 12 वर्षों में मैंने जो भी सहयोग देश से मांगा, देशवासियों ने दिल खोल करके साथ दिया। मैंने स्वच्छता का आग्रह किया तो पूरा देश निकल पड़ा। मैंने देश से डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए आह्वान किया तो भारत रियल टाइम ट्रांजेक्शन में दुनिया में सबसे आगे निकल गया। मैंने

0: कोरोना महामारी के दौरान एकजुटता का संयम का आग्रह किया, देश ने एकजुट होकर उस महामारी का सामना किया। जनता ने कभी हमें निराश नहीं किया। आने वाले समय में भी इसी जन विश्वास और जन भागीदारी के साथ हमें आगे बढ़ना है।
1: आशुतोष जी, जैसा कि अभी हमने सुना, प्रधानमंत्री ने इसके अलावा हाउसिंग की बात की, वित्तीय समावेशन की बात की, सफाई का भी जिक्र किया, स्वास्थ्य का जिक्र किया। खास तौर से जिस तरह से गरीबी उन्मूलन की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं और काफी लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की कोशिश की है, इस बारे में आप हमारे श्रोताओं को और क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: न सिर्फ गरीबी से, जो 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, और साथ में उन्होंने कहा कि हमें इसका विशेष प्रयास करना चाहिए, एक साथ मिल करके प्रयास करना चाहिए कि ये फिर से उस गरीबी के दलदल में ना जाए। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है जब आप इस तरीके की योजनाओं पे काम करते हैं, स्लिपेज की बात, कि आपने कुछ चीजें ठीक की और वो फिर से धीरे धीरे वहीं चला जाए, तो वो प्रयास वहां पर विफल होता है। और देखिए, ये गरीबी की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा कारक हुआ करता था वो है बीमारी, कि एक बार कोई घर में एक बीमार हो गया किसी गरीब के घर और वो फिर से लोन और इसके दुष्चक्र में फंसता हो, वहीं जाता था। बीमारी को लेकर के सरकार ने पहले ही एक कदम उठाया, आज से 5-6 साल पहले जब आयुष्मान योजना की बात हुई थी, उससे बहुत सारी चीजें सुधरी थी। और ये जो 25 करोड़ का आंकड़ा अभी आ रहा है कि इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया गया, वो नियो मिडिल क्लास में और थोड़ा सा उससे नीचे में प्रवेश कर चुके हैं, अब उनकी आकांक्षाएं और बढ़ रही। ये आकांक्षा बढ़ना ही तो है विकसित भारत के लिए जरूरी है।
1: जी जी, और प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र भी किया कि किस तरह से कुछ समय पहले हमारी अर्थव्यवस्था उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब हम बहुत ही त्वरित गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था की स्थिति में पहुंच गए हैं। और जैसा आपने भी इसका जिक्र किया कि किस तरह से 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से निकाला है, और प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि किस तरह से एक ऐसा भारत बनाया जाए जहां गरीबों के सपने भी पूरे हो पाए। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा।
0: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: जैसा कि हमने सुना, आशुतोष जी, जो प्रधानमंत्री ने कहा, वो एक ऐसे भारत की कल्पना कर रहे हैं कि जब 100 साल पूरे हों देश के, तो एक नए तरह का भारत हो जो बहुत विकसित हो और विकसित श्रेणी और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो पाए। आप इस बारे में क्या और कुछ जानकारी देना चाहेंगे?
2: ये जो विकसित भारत की कल्पना की गई, और उसी समय ये भी है कि विकसित भारत क्या होगा। विकसित भारत का अर्थ ये है कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति के रूप में भारत खड़ा होगा, एक आत्मनिर्भर देश के रूप में भारत खड़ा होगा। भारत की तुलना आप किसी छोटे कंट्री से नहीं कर सकते। बहुत सारे विकसित देश ऐसे हैं जहां की जनसंख्या आप देख लें तो वो पूरे के पूरे भारत में समाएंगे। तो यहाँ की सोच अलग है और उसी तरीके से इसका ग्रोथ किया जा रहा है। मुझे लगता है जो उन्होंने बात कही, दिशा सही है
1: जी।
2: थोड़ी गति की बात है जो उन्होंने कही, जहाँ हमें गति और बढ़ानी है, और जिसमें सबके प्रयास की बात की उन्होंने, ये दोनों चीजें होंगी तो मुझे लगता है दिशा और गति दोनों मिलकर जो है सो इच्छित परिणाम भी देंगे।
1: आशुतोष जी, एक और महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से सरकार ने विकास के लिए जो भी जरूरी फैसले हैं वो समय पे लिए, चूंकि राजनीतिक स्थायित्व तो है और सरकार के पास ये इच्छा शक्ति है कि वो देश को विकास की ओर आगे ले जाना चाहती है। तो सुनते हैं प्रधानमंत्री ने इस बारे में क्या कहा।
0: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही, और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: आशुतोष जी, आप और क्या इसमें जोड़ना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने जो बात की कि देश हित में जो भी फैसला जरूरी होगा वो ये सरकार करेगी, जिससे कि देश विकास की दिशा में आगे बढ़ पाए।
2: मैं आपको एक तो एग्जांपल दूंगा
1: जी।
2: 370 की बात इन्होंने की, और आपको याद होगा कि जब 370 हटाया गया था तो उस समय में किस तरीके की बातें कही जा रही थी। मैं अभी अभी

0: कश्मीर से लौट के आया हूँ, बारामूला और शोपियां जैसे जिले, आप वहां भी खुलेआम घूम सकते हैं एक सामान्य नागरिक की तरीके से, वो
1: जी
0: भी कश्मीरी नहीं, आप बाहर से जाकर के घूम सकते हैं और सुरक्षित घूम सकते हैं, लोग खुश हैं उसी तरीके से। जो 3 तलाक वाली जो बात कही, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आपको नौकरी दे दे, सरकार का काम ये भी होता है कि वो इस तरीके के प्रयास करे कि समाज में भी बदलाव आए।
1: जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा करने के अवसर पर एनडीए कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, काम।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया है। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफियो रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। इसे ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी स्टेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमेरिका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रविवार को फ्रांस और स्लोवाकिया के 5 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने बताया कि प्रधानमंत्री की ये यात्रा अत्यंत उपयोगी और व्यापक होगी। श्री जॉर्ज ने बताया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर श्री मोदी 52वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी 14 जून से 16 जून तक स्लोवाकिया के दौरे पर भी रहेंगे। भारत ने मालदीव सरकार को खसरे के टीकों की 20,000 खुराक और लगभग 3 टन चिकित्सा सामग्री की खेप भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ये सहायता मालदीव में खसरे के बढ़ते मामलों से निपटने और सरकार के राहत प्रयासों को मजबूत करने में सहायक होगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है।

इस दौरान चावल और गेहूं का उत्पादन अब तक के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गया है। श्री जोशी ने कहा कि ये उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा को और सुदृढ़ करेगी, किसानों को सशक्त बनाएगी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाएगी। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का वस्त्र बाजार वर्ष 2014-15 में लगभग 8,50,000 करोड़ रुपए का था, जो वर्तमान में बढ़कर 16,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कृषि के बाद वस्त्र उद्योग देश में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आज से रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू हो रहा है। उद्घाटन मैच में आज रात 12:30 बजे से मेजबान मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला होगा। ये टूर्नामेंट 19 जुलाई तक अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में आयोजित किया जा रहा है। पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के सिंगल्स हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: गुड इवनिंग वंस मोर डियर लिसनर्स, दिस इज 102.6 आकाश टुवर्ड्स सेल्फ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है।

प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में सभी सुनने वालों का स्वागत है। सभी सुनने वालों को रीटा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी। गीत के बोल लिखे हैं नीरज ने और धुन तैयार की है एस डी बर्मन ने।

प्रेम पुजारी फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। नीरज की बोल थी, एसटी बर्मन का संगीत था। सुनना चाहा था आप सबने। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान। राजनगर मधुबनी से एक खत आया था कुशेश्वर प्रसाद गुप्ता, शारदा, रंका रानी, मौसम गुप्ता, संगीता रुद्र, रिद्धि गुप्ता का। लखनऊ से इस गीत को सुनना चाहा था मुकेश गुप्ता, रानी, कुसुम पलक और पंखुरी गुप्ता ने। राजनगर गांधी चौक कांति निकेतन से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी थी मंजीत गुप्ता, सोनाली, सूर्यांशी, कोमल, मेनका गुप्ता, माधवी, साध्वी, तमन्ना, तन्मय, राज और गुनगुन। उम्मीद करते हैं आप सब ने अपनी पसंद का गीत सुन लिया होगा। कार्यक्रम में अगला गीत आप सबकी पसंद पर सुनवाने जा रहे हैं। डबवाली हरियाणा से जेके बुगलिया, सुनीता बुगलिया, संजय अनिल और मीनू बुगलिया। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, गाव्या और सुच्चा पाठक। नयापारा भिरई से बसंत कुमार, सूर्यांशी, सरोज, ईशराज, चंद्रकांत, प्राची और ट्यूशी सूर्यवंशी। डीएलएफ कॉलोनी रोहतक से एक हत आया है महेंद्र शाह, हरेंद्र शाह, जितेंद्र शाह और मानसी शाह का। मालोट पंजाब से इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है राजकुमार इंदौरा, बिमला, गैरी, विकास इंदौरा, प्रियंका, रमन, ऋतु इंदौरा, भविष्य खन्ना, मिसेल, किंशु खन्ना और दीपांशी इंदौरा। आप सबने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में संगम फिल्म से गीत। शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

संगम फिल्म से आपने सुना मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में गीत। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं मन की आंखें फिल्म से।

मन की आँखें, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में सुना। साहिल लुधियानवी के बोलों को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म से। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रवि का संगीत है। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, अलीगढ़ अब्वाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत कौर और मनविंदर सिंह पांधा, बेरड़ी से हुकुम करमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर, आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ, शाइना और निवान शर्मा, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित, बटिंडा रोड डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू और मोहित नारंग, धामनी मनोरा से तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश, अमोल, गुलशन, आदेश, किरण डेरे और प्रज्वल, पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, महाराष्ट्र से बाबा साहेब बाड़ोदे, मीनाक्षी चरपे, रजनी, कार्तिक और युवराज, चकला बाजार सामाना से पप्पू राज खुशदिल, संगीता जिंदल और हसमुख जिंदल, मुक्तसर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर, रवनीत और निशु। आइए सुनते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म से ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनवाने जा रहे हैं खिलौना फिल्म से गीत। आनंद बख्शी की बोल है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनना चाहा है आप सबने चांडूर बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खडसे, रक्षा ताई पुणे से, पंकज वाड़ोदे आर्य, आदि शैलेश, सोनम, धनुष, बीटी वाड़ोदे, जरूर वरुण महाराष्ट्र से बाबा साहेब, मीनाक्षी चरपे, चंद्रप्रभा वाड़ोदे, न्यू मुल्तान नगर नई दिल्ली से सुरेंद्र खुराना, सुमित सुरभि, अनीता खुराना, राजीव ढींगरा और कन्हैया लाल, शेरगढ़ मलोट पंजाब से बलराज राम कालवा, भोला राम, लक्ष्मी बेबी, कुदरत, मनप्रीत कालवा, मेवा सिंह, हरप्रीत और शिवराज मान, भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा। आप सबकी पसंद पर आइए आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में खिलौना फिल्म से गीत। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। साथ ही आप जुड़े हैं न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर।

खिलौना फिल्म से आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में चिराग फिल्म से। मजरूह सुल्तानपुरी की बोल हैं, मदन मोहन का संगीत है। पसंदकर्ताओं के नाम गीत के बाद।

चिराग फिल्म से आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। कार्यक्रम में अगला गीत सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में मेरे हमदम मेरे दोस्त फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोनों गीतों के लिए मिली जुली फरमाइश आपको बता दें, प्रदा कुरासी से रोहित साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता, राधा साहू, बागपत यूपी से एहसान अली, दिल्ली से डॉक्टर सोनम अदीबा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, राज अंसारी, आसमा खातून, गुलफर राज भागलपुरी, डुमराव से वलीउल्ला अंसारी, आसमा नाज, कबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम, अमरपुर पेंड्रा से दीपक रोशन, वंशीलाल, रेखा श्रीवास्तव, श्वेता देवी, सुरुचि, दशा लंबी श्रीवास्तव, राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल अंजुलता, आदित्य कृष श्रीवास्तव, केलंगा से सुंदरपाल कौशिक, अभी निशु देबू परी पीहू पाखी कौशिक, शेरगढ़ गांव से नजीत कौर, जसबीर कौर, हसनप्रीत कौर मान, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित खुशी गोस्वामी, नया पारा भिरई से बसंत सूर्यवंशी, सरोज खांडवी, जलगांव से रामधाड़े दीपाली स्वराज धाड़े।

अराउंड द वर्ल्ड, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। शारदा और मुकेश की आवाज़ों में हसरत जयपुरी की बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

राधा और मुकेश की आवाज़ों में हसरत जयपुरी के बोल थे, शंकर जयकिशन का संगीत था। कार्यक्रम के अंत में सुनवाने जा रहे हैं आपको लव इन टोक्यो फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। दोनों गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइश आपको बता दें, रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित, खुशी गोस्वामी, वडाली देशमुख महाराष्ट्र से राजेश खोबरखेड़े, शिव सागर, इंदिरा बाई, सुनैना खोबरखेड़े, तनुजा, खांडवी जलगांव से राम धाड़े, दीपाली स्वराज धाड़े, मनोट पंजाब से छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत, गगनदीप, रौनक दीप कौर, खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोनिया, कविता विशाल, विवेक, सोनू, मोनू, रानू, अजय, अनाया, सपना, शिवी सलोनी, महोबा बुंदेलखंड यूपी से नरसिंह राजपूत, शत्रुघ्न गौरव, पत्रोड़ा अनूपगढ़ से मंगला जनागल, रोशनी अंकुर, इंदु, सुनील जनागल, सनावत से किशोर सांवले, रेखा सांवले, हिमांशु, अनुराग, सुलोचना चारवी, प्रणव सांवले, दत्रेंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि, नौरवेलाल वर्मा, साल्याखेड़ी मालवा आगर से सोनू विश्वकर्मा, मोनू विश्वकर्मा, करनाल से सुधीर नूतन, सुनीता जैन, सुनीता शर्मा, हरिपाल पोड़, मीनाक्षी तिवारी, वाशिम महाराष्ट्र से ऋचा वसंतकर, सोनाली पाठक, संगीता पांडे, अश्विन कुलकर्णी, कल्पना, सुनीता पांडे, मालती कंजरकर, संगीता, उषा रिंघाटे, छाया बोरकर, तृप्ति श्रृंगारे, विशाखा आमले, माधुरी जोशी, सोनू और जीतू। सुनवाते हैं कार्यक्रम के अंत में लता मंगेशकर की आवाज़ में लव इन टोक्यो फिल्म से गीत।

ही संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन चाहे गीत। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स, न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और ठीक 11:05 पर होंगे अंग्रेज़ी में समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अनिश्चितता के माहौल के बीच भारत की विकास गाथा विश्व को निरंतर प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने पर बल दिया और विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाने और लागू करने के महत्व को रेखांकित किया। प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पहली बार 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और प्रशासक शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्रियों की दूरदर्शी टिप्पणियों और उनके राज्यों में किए गए कार्यों से नीति आयोग को लाभ हुआ।
1: The topic for the Governing Council meeting.
2: गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें राज्यों ने अपने कामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस समावेशी मानव विकास में जीवन के चारों चरण शामिल हैं: बचपन, युवा अवस्था, कामकाजी जीवन और बुढ़ापा।
0: केंद्र सरकार और असम तथा नागालैंड ने कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन के लिए त्रिपक्षीय समझौता किया। ये समझौता नई दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। गृहमंत्री ने कहा कि ये निर्णय राष्ट्र प्रथम और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है।
3: आज हम सब एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी हो रहे हैं। से ऑयल और नेचुरल गैस की एक्सप्लोरेशन की संभावनाएं बढ़ेगी, मिनरल की भी खनन की संभावना खड़ी होती है। दोनों राज्यों ने ये निर्णय किया 50-50% कर भारत के तेल के उत्खनन में बाधा न बने, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपदा है और मुझे लगता है कि ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है।
0: भारत ने ओमान तट पर जहाज एमटी सेटेबेलो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। इसमें 3 भारतीयों की मौत हो गई थी। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस संबंध में सरकार ने अमरीका के प्रभारी राजदूत को तलब किया और कड़ा विरोध दर्ज कराया। नाविक कल्याण कोष समिति को प्रत्येक मृतक नाविक के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया गया है। भारतीय नौसेना ने यूएई के फुजैरा से निकले एक वाणिज्यिक तेल टैंकर से बिना फटे मिसाइल वॉरहेड को सुरक्षित निकालने का अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया। ये मार्शल आइसलैंड के झंडे वाला टैंकर एमटी ओलंपिक लाइफ ओमान के पास 26 मई को हुए विस्फोट के बाद कोच्चि जा रहा था। बाद में इसमें विस्फोटक पाए जाने की जानकारी मिली। भारत की अध्यक्षता में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। इस 2 दिवसीय फोरम में ब्राजील, रूस, इंडोनेशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और शहरी विकास विशेषज्ञ शहरी विकास से संबंधित प्रमुख प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए हैं। फोरम का उद्घाटन करते हुए आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये मंच शहरी मुद्दों को वैश्विक विकास चर्चा में और अधिक मजबूती से शामिल करने का एक अवसर है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2025-26 में अनाज उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान

0: In badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to the women's single quarterfinals of the Australian Open in Sydney today. Sports fans across the world are set for a month-long football spectacle as the 2026 FIFA World Cup kicks off tonight at the historic Estadio Azteca in Mexico City. In the opening match, hosts Mexico will take on South Africa in a Group A clash. The match begins at 12:30 a.m. Indian Standard Time. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज न्यूज़ ऑन एआईआर और डीटीएच पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 और 14 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।